0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। ऑगस्टो अजायल पेगेस के नेतृत्व में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल पोतवी स्थित ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। इस बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित रामनवास भी शामिल हुए। इस दौरे का उद्देश्य कस्टम्स प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना, सेवाओं की दक्षता बढ़ाना, परिचालन लागत को कम करना और ड्रग्स तस्करी, अवैध उत्पादों तथा टैक्स से जुड़ी धोखाधड़ी से सीमाओं की बेहतर सुरक्षा करना है। आईटी सेक्टर के पूर्व मंत्री दीपक बालगुबिन को फोन टैपिंग जांच के सिलसिले में समन भेजा गया है। याद दिला दें कि इस मामले में CCID की काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख और पूर्व ACP लील राम दियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। CCID का आरोप है कि लील राम दियाल ने प्रेस्ट सोल ब्रांड के एक लिसनिंग टैपिंग डिवाइस का एक्सेस कोड देने से इंकार कर दिया था। आशंका है कि इस उपकरण का इस्तेमाल बातचीत रिकॉर्ड करने की दिशा में किया गया था, जिसके कुछ अंश मुस्तास लीक्स नाम के कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के सामने आए हैं। फ्लक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। कल उद्घाटन किए गए क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य है इस इलाके के निवासियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल को अधिक सुलभ बनाना। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शिपिंग रूट्स को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए। अमेरिकी सेना ने बताया कि गुरुवार को शाम ईरान के सैन्य ठिकानों पर नया दौर शुरू किया गया। ये 13वीं रात लगातार हमले हैं। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, जबकि दोपहर को उत्तर पश्चिम दिशा में थोड़े से बादल घिराएंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे

की रफ्तार से बहेगी, प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठाएंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:43 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 5:50 पर। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 आप विस्तार के साथ प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब। Your news.

की बेला ताजगी भरी शुरुआत। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।

0: प्रणाम सुप्रभात श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए। इस समय सुबह के 6:05 हो चुके हैं। इस शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को साथ निभा रही है पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है मनुष्य के जीवन उसके निर्णय पर ही निर्भर है। जो भी आप निर्णय लेते हैं, जो भी आप चुनते हैं, उसी के आधार पर आपका जीवन चलता है। इसलिए हमेशा सही निर्णय लीजिए। आइए इसी सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सुधा वृष्टि से आइए इसे श्रवण करते हैं। हिंदू महासभा की ओर से आचार्य गिरीश जी की प्रस्तुति में
1: हिंदू महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।
2: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयुत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरिनारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज फ्राइडे 24 जुलाई 2026 के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, आषाढ़ मास के जो अंतिम दिनों होता है वह अत्यंत पवित्र, आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाले तथा भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर लेकर आते हैं। आषाढ़ मास से प्रारंभ हुई भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन रथ यात्रा का समापन आज फ्राइडे 24 जुलाई 2026 को हो रहे हैं। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान के अपने भक्तों के बीच आने का दिव्य संदेश है। जब भगवान श्री जगन्नाथ जी, भद्र जी एवं माता सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं, तब ऐसा माना जाता है

कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देकर उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि एवं मंगल का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रथ यात्रा हमें यह शिक्षा देती है कि ईश्वर किसी एक मंदिर या स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। भगवान का रथ मानव शरीर का प्रतीक है और यह हमें आत्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर करने का संदेश देता है। अतः हम सभी को भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए उनके पवित्र नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। आज रथ यात्रा के समापन के पश्चात कल शनिवार 25 जुलाई को सैटरडे 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी का पावन व्रत मनाया जाएगा। इस एकादशी को हरिशयनी, पद्मनाभा तथा आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में प्रविष्टित होकर क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इसे हरि शयनी एकादशी कहा जाता है। शयन का अर्थ है निद्रा करना, टू स्लीप। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा में से जागृत होते हैं तथा उसे देव प्रबोधिनी अथवा देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से यानी देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का भी शुभारंभ होता है। इन 4 महीनों में विवाह, उपनयन, संस्कार, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, भूमि पूजा, मूर्ति स्थापना आदि मांगलिक कार्य जो है वह सामान्यतः नहीं किया जाता है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से यह भगवान विष्णु का योग निद्रा काल माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, इनका वर्णन हुआ है। और जो भक्त जो है श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, उनकी समस्या दूर हो जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, पापों का नाश होता है तथा भगवान ऋषिकेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्रोताओं, इस वर्ष जो है, इस साल जो है, चतुर्मास 26 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो करके 21 नवंबर यानी 21 नवंबर 2026 तक रहेगा। यह 4 मास संयम, साधना, जप, तप, स्वाध्याय और सेवा के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। ऋषि मुनियों ने इस अवधि को आत्मशुद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्तम समय बताया है। इन दिनों सात्विक जीवन अपनाना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, भगवान के नाम का जप करना तथा यथाशक्ति दान पुण्य आदि करना अत्यंत फलदायी माना गया है। चातुर्मास के इस पावन अवसर पर 1.25 लाख नारायण मंत्र जाप का विशेष महत्व है। निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार चतुर्मास में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 1.25 लाख यानी 125,000 जप करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यदि इस वर्ष की बात करें तो आप रविवार 26 जुलाई से यानी संडे 26 जुलाई से फ्राइडे 20 नवंबर तक प्रतिदिन नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते हुए 1.25 लाख जप पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए पहले शनिवार 25 जुलाई को, सैटरडे 25 जुलाई को यानी देवशयनी एकादशी के दिन अपने कुल पुरोहित, मंदिर के पुजारी अथवा हमसे संपर्क करके इस जप का संकल्प अवश्य कर लें। जो साधक श्रद्धा एवं नियम पूर्वक इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करते हैं, उनके जीवन में मानसिक शांति, आध्यात्मिक शक्ति, सकारात्मकता तथा भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परिवार, समाज

0: एवं विश्व कल्याण की दृष्टि से भी यह जाप अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इसके पश्चात श्रोताओं, बुधवार को वेडनेसडे 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मनाया जाएगा। सनातन वैदिक संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन हमें अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हम सभी जानते हैं, शास्त्र में वर्णन हुआ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, हमारे गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है तथा गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे श्री गुरु के चरणों को मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र आदि वस्त्र धारण करके भगवान श्री गणेश जी, श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान तथा अपने इष्ट देव का पूजन करें। इसके पश्चात महर्षि वेदव्यास जी की तथा अपने गुरु के चरण पादुका का विधि पूर्वक पूजन करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें तथा श्रद्धापूर्वक उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आपके दीक्षा गुरु उपस्थित हो तो उनसे जाके मिलिए तथा उनकी पूजन करके यथाशक्ति अपने गुरु की पूजन करके इनकी थोड़ी सेवा करके गुरु दक्षिणा आदि अर्पण करें। श्रोताओं, गुरु पूर्णिमा के अगले ही दिन यानी गुरुवार 30 जुलाई को, थर्सडे 30 जुलाई को भगवान शिव को समर्पित पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ होगा, जो 27 अगस्त 2026 तक रहेगा। श्रावण मास भगवान शिव की उपासना का सर्वोत्तम समय माना गया है। इस माह में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, बिल्वपत्र अर्पण तथा श्रावण सोमवार एवं मंगल गौरी व्रत का विशेष महत्व है। श्रावण मास केवल भगवान शिव की आराधना का ही नहीं बल्कि श्री रामचरित मानस मास के रूप में भी विशेष रूप से जाना जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भगवान श्री राम की दिव्य कथा के प्रथम वक्ता स्वयं भगवान सदाशिव है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन किया था। इसी कारण श्री राम कथा और भगवान शिव का अत्यंत गहरा एवं अविचन संबंध माना गया है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव एवं माता पार्वती की वंदना करते हुए उनकी कृपा से ही श्री राम कथा का अमृत संसार को प्रदान किया। इसी श्रावण मास में श्री रामचरितमानस के अमर रचयिता गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की जन्म जयंती भी श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है। अतः यह महीना भगवान शिव तथा भगवान श्री राम दोनों की संयुक्त भक्ति का अनुपम अवसर प्रदान करता है। इसी कारण सनातन परंपरा में श्रावण मास के दौरान भगवान शिव की प्रसन्नता तथा भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री रामचरित मानस का मास परायण पाठ, इसका विशेष विधान बताया गया है। मास परायण का अर्थ होता है कि संपूर्ण श्रावण मास में नियमित रूप से श्री रामचरित मानस का पाठ करते हुए पूरे ग्रंथ का संपूर्ण परायण किया जाए। श्रद्धा एवं भक्ति से किया गया यह पाठ मन को निर्मल करता है, परिवार में सुख शांति एवं सद्भावना स्थापित करता है तथा साधक के जीवन में धर्म, भक्ति और सदाचार की स्थापना करते हैं। भगवान शिव स्वयं श्री राम के अनन्य भक्त है, इसलिए जो भक्त श्रावण मास में शिव पूजन के साथ साथ श्री रामचरित मानस का श्रवण, पाठ एवं परायण करते हैं, उन पर भगवान शिव तथा श्री राम जी दोनों की कृपा बनी रहती है। सो आइए इस पावन श्रावण मास में हम सभी भगवान शिव की आराधना के साथ साथ श्री रामचरितमानस का नियमित पाठ करें और अपने जीवन को मर्यादा, भक्ति, सेवा तथा धर्म के आदर्शों से हम लोग अलौकित करें। आने वाले सभी पर्व यानी देवशयनी एकादशी, नारायण जाप 125,000 का, गुरु पूर्णिमा एवं श्रावण मास के संदर्भ में हम हिंदू महासभा की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। हम सब यह संकल्प करें कि इन पावन दिनों का हम लोग आध्यात्मिक लाभ उठाएं, भगवान का नाम निरंतर स्मरण करें, धर्म के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करें। आज के कार्यक्रम को मैं विराम की ओर लेके चलूं। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वरिष्ठी।

0: L'habitude qui jamais pousse en zé, ou tea time avec Farmland.
1: Ah ben oui, Madame Sheila, ou toujours bien smart.
0: Et comme au son du travail, fait un pli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Farmland.
1: Mmh, ou fais-moi faire.
0: Astère avec Farmland Hot Chocolate, la vie encore plus tamam. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
1: Astère avec Farmland, nous gagnons encore beaucoup plus.
0: Farmland, ça même nous smart choice.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से हाईलैंड्स के रहने वाली निवासियों को खासतौर पर आउदाली लेन, मोसेलमा रहामिया और पीएचसीई मार्केटिंग के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 25 जुलाई 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
2: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
4: La Global Healing Foundation vous invite pour son prochain événement Hanuman Katha, The Ultimate Devotion. Une session de Kundalini Awakening and Healing à Rivière des Anguilles, à côté du collège Rivière des Anguilles SSS, en face de la gare. Les prières se tiendront du samedi 25 juillet au jeudi 30 juillet par le gourou Sri Suraj Bihari. Vu la grande foule qui est attendue pour cette unique célébration, vous êtes prié de vous rendre sur les lieux à 19h15 précise pour vous assurer d'une place.

श्रोताओं जुड़े रहिए हमारे साथ, 6:30 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार हम फिर से मिलेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक पूजा की ओर से आप सभी को शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। शुक्रवार 24 जुलाई 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑगस्टो अजाएल पेरेज के नेतृत्व में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल पोर्ट लुई स्थित न्यू ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। इस बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित गामनावाज भी हुए शामिल। फ्लक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। कल उद्घाटन किए गए क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य है इस इलाके के निवासियों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल को अधिक सुलभ बनाना है। 17 जून से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई हिस्सों में जलापूर्ति के लिए नए समय निर्धारित किए हैं। सेंट्रल प्लाटू इलाके इससे सबसे ज्यादा हुए हैं प्रभावित। और विदेश स्तर पर स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज के शिपिंग रूट्स को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए हैं। ये 13वीं रात लगातार हमले हैं। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल पोर्टलुई के ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ऑगस्टो अजाएल पेरेज कर रही है। इस बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित गामनावाज भी शामिल हैं। IMF के इस दौरे का उद्देश्य है मॉरिशस की कस्टम्स प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना, सेवाओं की दक्षता बढ़ाना और परिचालन लागत को कम करना।

0: इसके साथ ही इसका उद्देश्य नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध सामानों के प्रवेश और टैक्स चोरी से सीमाओं की बेहतर सुरक्षा करना भी है। IMF का मानना है कि मॉरिशस कस्टम्स पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उनकी सिफारिशों से परिचालन की दक्षता और दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार होने की उम्मीद है। सिंचा मुथु की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रतिनिधि मंडल मॉरिशस आया हुआ है। मकसद है देश में टैक्स प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकों के मुकाबले इसकी परिपक्वता के स्तर का आकलन करना। ओगुस्तो अजाएल पेरेज आस्कागा, स्टेफेन मेंडेस, आल्दो सिल्वानो और ऑस्कर अल्बर्टो नियेतो मोरा मॉरिशस के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित रामनवास की उपस्थिति में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ भेंट की। MRA के महानिदेशक ने कहा, ट्रेड फैसिलिटेशन से जुड़े खतरे पाटने के लिए और दूसरी तरफ देश में अवैध सामानों का प्रवेश रोकने के लिए वे हमारे टैक्स क्षेत्र को ज्यादा मजबूत बनाने में हमारी सहायता करेंगे। साथ ही कस्टम्स की कारगरता बेहतर करने में मदद मिलेगी। जब आयातक या निर्यातक कंटेनर मंगवाते हैं तो वे जल्द से जल्द उसे प्राप्त करना चाहते हैं। हम ऑपरेशन खर्च भी कम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष की क्षमताएं बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा। टैक्स अधिकारियों द्वारा इस मूल्यांकन के बाद एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके साथ मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी की कार्य क्षमता बेहतर करने के लिए सहायक उपाय भी शामिल होंगे।
0: और इस बीच इस शुक्रवार यानी कि आज 24 जुलाई से नए अमरीकी टैरिफ लागू हो रहे हैं। अमरीका के कुल 60 व्यापारिक साझेदार इसी से प्रभावित होंगे, जिनमें कनाडा, ब्राजील, चीन, भारत, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ शामिल हैं। अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर 10% या फिर 12.5% का टैक्स लगाया जाएगा। मॉरिशस इस सूची में शामिल नहीं है, जिन्हें इन नए उपायों के तहत लक्षित किया गया है। इसके अलावा ये शुल्क पिछले फरवरी में 150 दिनों की अवधि के लिए लगाए गए 10% के अस्थायी कस्टम्स की जगह लेंगे। ये वाशिंगटन के समयानुसार रात के 12:01 से लागू होंगे, जो मॉरिशस के समयानुसार सुबह के 8:01 तक निर्धारित हैं। सरकार की विजन 2050 परियोजना ने कल एक और महत्वपूर्ण चरण पार किया है। गवर्नमेंट मॉरिशस में देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस योजना के मुख्य निष्कर्षों की को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य है 2050 तक मॉरिशस को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 2000 मॉरिशन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले जल्द ही आम किया जाएगा। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर विवरण याचना मिश्रा का।
2: विजन 2050 पर 6 महीनों के अंतर्राष्ट्रीय परामर्श के बाद अब आने वाले दशकों के विकास को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख रणनीतियों को अंतिम रूप देने का समय आ गया है।
3: बिटवीन नाउ एंड 2050 वी विल बी लूजिंग 180,000 मॉरिशियंस टू एजिंग।
2: 23 जुलाई को सहरी लालबाग जीहोल में आयोजित बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों, आर्थिक क्षेत्र के संचालकों, शिक्षाविदों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को मुख्य निष्कर्षों पर जानकारियां दी गईं। प्राथमिकताओं में नशा और अपराध मुक्त समाज का निर्माण, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना, आधुनिक ढांचों का निर्माण, अच्छी नौकरी पैदा करना, रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सुदृढ़ बनाना तथा अधिक लचीली नवाचार आधारित और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था का निर्माण शामिल है।
3: फिफ्टी बाई फिफ्टी
2: एक ऐसी अर्थनीति जो 2050 तक 50 बिलियन डॉलर की होगी। इसके लिए काम करना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा और आश्वस्त करना होगा कि सभी इसमें भाग लें।
3: Possible, mais nous besoin travailler vers ça pour qu'il nous adresse bonne contrainte qui nous fait face aujourd'hui et nous rassurer nous qui tout contribuer dans ça pour

0: processus de développement.
1: So for me, I'm wondering.
2: वक्ताओं ने मॉरिशस के लिए ऐसी दीर्घकालिक और साझा राष्ट्रीय विजन के महत्व पर बात की, जिससे रणनीतिक बदलावों से परे जाकर आने वाली पीढ़ियों की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। हमें 2050 का मॉरिशस दिख रहा है, ये मार्ग प्रशस्त करता है। आशा है कि इसके लिए सरकार माध्यम और निवेश देगी। ये कार्रवाई पहले ही कर देनी चाहिए थी। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ठोस वित्तीय स्थिति की जरूरत है। शिक्षा को भी पर्याप्त होना होगा ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके। खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है और देखना होगा कि भूमि का प्रयोग कैसे किया जाए। सभी को इस विजन को अपनाना चाहिए, इसे अमल में भी लाया जाना चाहिए। वैलिडेशन चरण के बाद दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद चरणों में इसे लागू किया जाएगा।
3: L'avenir se prépare. Si nous pas fait ça, comme aujourd'hui nous payons à banque crise.
2: भविष्य की तैयारी चल रही है। आज जल, बिजली, बुजुर्गों की बढ़ती संख्या, पेंशन, सब प्रकार की चुनौतियां हैं, क्योंकि इसकी तैयारी या पूर्व योजना नहीं की गई थी। हम अपने बच्चों को ऐसा देश नहीं सौंप सकते हैं। इसी वास्ते विजन 2050 भले ही दूर दिखता हो, लेकिन तैयारी आज से ही शुरू है। विजन 2050 की तैयारी के तहत मॉरिशस और रोड्रिग्स में 13 परामर्श बैठकें लगाई गईं। इनमें अलग अलग क्षेत्रों से 1,500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आर्थिक क्षेत्र की प्रतिनिधियों, श्रमिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, युवाओं, शिक्षाविदों तथा अन्य साझेदारों के साथ भी विचार विमर्श हुए। अधिकारियों के अनुसार ये प्रक्रिया आने वाले 25 सालों में मॉरिशस के सतत विकास और विजन 2050 का मजबूत आधार बनेगा।
4: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। आईटी सेक्टर के पूर्व मंत्री दीपक बालगोबिन को फोन टैपिंग जांच के सिलसिले में समन भेजा गया। याद दिला दें कि इस मामले में सीसीआईडी की काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख और पूर्व एसीपी लीलराम दियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। सीसीआईडी का आरोप है कि लीलराम दियाल ने प्रेस्टसोल ब्रांड के एक लिसनिंग टैपिंग डिवाइस का एक्सेस कोड देने से इनकार कर दिया था। आशंका है कि इस उपकरण का इस्तेमाल बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था, जिसके कुछ अंश मुस्तास लीक्स नाम के कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के में सामने आए हैं। मॉरिशस अफ्रीका की सेवा में एक क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र यानी कि रीजनल फाइनेंशियल हब के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहता है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए टीडीबी यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने कल एबेन में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये एक रणनीतिक साझेदारी है जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय सेवा क्षेत्र में कौशल विकास और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि फ्लक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, कल उद्घाटन किए गए क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य है इस इलाके के निवासियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल को अधिक सुलभ बनाना है। यह केंद्र अगले सप्ताह से शुरू होगा और शुरुआती चरण में सप्ताह में एक दिन कार्य करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों और नर्सों की क्रमिक भर्ती के साथ ही यहां कंसल्टेशन यानी कि जांच की सुविधा समाप्त सप्ताह में 4 से 5 दिन उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी सहयोगी कोयल सीटल ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू से बात की। उनको सुनते हैं विवरण अशिता रघु का।
5: ला क्वीन गांव सेंट्रल फ्लक से थोड़ा कटा हुआ इलाका है और यहां से फ्लक तक जाने में वृद्ध जनों को मुश्किल होती है, इसलिए सुबह रक्त परीक्षण या छोटी बीमारियों के लिए क्यों ना यही एक स्वास्थ्य केंद्र खोलें।
4: 17 जून से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई हिस्सों में जलापूर्ति के लिए नए समय निर्धारित किए हैं। सेंट्रल प्लेटो इलाके इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसकी मुख्य वजह जलाशयों के जल स्तर में चिंताजनक गिरावट है, विशेष रूप से देश का सबसे बड़ा जलाशय मोगवाक्वा, जिसका जल स्तर गिरकर लगभग 43% के करीब पहुंच गया है। जैसा कि ऊर्जा मंत्री पत्रिक आस्यावादन ने भी कहा है, पानी के भंडारण को बचाए रखने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने दैनिक आपूर्ति घटाकर सिर्फ एक समय कर दी है। सुबह 3 बजे से रात के 8 बजे के बीच कुछ इलाकों में प्रतिदिन लगभग 6 घंटे ही पानी दिया जा रहा है। यह असाधारण कदम तब तक जारी रहेगा जब तक कि बारिश को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। हालांकि सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने ये स्वीकार किया है कि पाबंदियों को यह पहला चरण कई उपभोक्ताओं के लिए काफी कठिन रहा है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के संचार प्रमुख सुनील गोपाल को सुनते हैं विवरण अशिता रघु का।
0: Au départ, nous étions un peu de difficulté dans certaines parties de Plaine Williams. Donc, on a maintenu une crise.
5: शुरुआत में प्लेन विलियम्स के कुछ हिस्सों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। ऐसे परिवार हैं जो ऊंचाइयों पर रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके घर के ऊपर पानी का टैंक है, जैसे पहले या दूसरे माले पर। इसलिए जब ये नई समय सारिणी लागू की गई तो ऐसे परिवारों के यहाँ पानी पहुँचाने में दिक्कत हो रही है। इस स्थिति में वाल्व ऑपरेशन चला गया जिससे समान वितरण कर पाएंगे, क्योंकि देखा गया है कि एक सड़क पर एक हिस्से में पानी आता है और दूसरे हिस्से में नहीं। तब इस स्थिति में हम इन कठिन इलाकों में पानी भेजते हैं। आमतौर पर लगभग बहुत जगहों पर हमने तकनीकी कार्रवाई चलाई है। हमारी टीम मेहनत कर रही है ताकि जहाँ कमी हो रही है वहाँ उसको दूर हम कर सके।
4: इरोजन, बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण मॉरिशस के समुद्र तटों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि साल 2010 के आसपास तैयार की गई इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पहले से ही मौजूद है, लेकिन समस्या ये है कि इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही व्यावहारिक रूप से लागू किया गया। ये बात पर्यावरण प्रबंधन विशेषज्ञ प्रिसिला इराना ने कही है। उनका मानना है कि तटीय सुरक्षा के लिए एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें अधिकारियों से लेकर आम जनता तक सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी बहुत ही जरूरी है, जो कि पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखे। हमारी सहयोगी शैली नियबन ने प्रिसिला इराना से बात की है, विवरण अशिता रघु का।
6: Pour nous, il est vraiment important que quand nous pécose, c'est sur la côte.
5: हमारे लिए ये अत्यंत जरूरी है कि जब हम तटीय संचालन की बात करते हैं उसे पूर्ण रूप से देखा जाए, यानी हम इसे एक प्रणालीगत, समग्र, बहुक्षेत्रीय, बहुकालिक तथा बहुआयामी दृष्टिकोण से देखें। तटीय क्षेत्र केवल कटाव और विकास का ही विषय नहीं है, बल्कि ये पहचान, संस्कृति तथा पारंपरिक एवं पैतृक विरासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। ये सभी पहलू एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे केवल एक समस्या तक सीमित नहीं किया जा सकता और ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि एक समस्या का समाधान हो जाने पर बाकी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी।
4: ये वक्तव्य गुरुवार को पोर्टलवी में मीडिया ट्रस्ट द्वारा पत्रकारों के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान दिया गया, जो हिंद महासागर आयोग की रिकॉस परियोजना का हिस्सा था। आपको बता दें कि बजट 2026-2027 में कोस्टल इरोजन एडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए पहले ही 4 बिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि अगले 5 वर्षों में 17 प्राथमिकता वाले स्थलों पर 11.5 किलोमीटर से अधिक समुद्र तटों का रिहैबिलिटेशन किया जा सके।
7: La question qui nous est là, c'est qui s'en a décidé? Comment nous réussissons à mettre en place un système, un mécanisme pour nous décider ensemble?
5: प्रश्न ये है कि कौन फैसला लेगा और कैसे एक साथ मिलकर निर्णय लेने के लिए एक मेकानिज्म तथा प्रणाली स्थापित की जाए और तट संबंधी गतिविधियों के मामलों में उन आवाजों को अवसर प्रदान करें जिन्हें अक्सर नहीं सुना गया है। आज हम ब्लैक रिवर

0: जिले के लिए एक एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस कार्य योजना को समर्थन मिलेगा और इन बदलावों को एक साथ लाने में सभी साझेदारों का साथ व समझदारी मिले।
1: विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मर्स के शिपिंग रूट्स को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने बताया कि गुरुवार शाम को ईरान के सैन्य ठिकानों पर नया दौर शुरू किया गया। ये 13वीं रात लगातार हमले हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये हमले इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा व्यापार जहाजों को दी जा रही धमकियों को कम करने और ईरान को जवाबदेह ठहराने के लिए किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बीच ये हमले हो रहे हैं। सऊदी अरब ने बुधवार को अमेरिका के साथ एक अहम परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को असैन्य परमाणु तकनीक देगा। ये समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब पूरे मध्य पूर्व में युद्ध और तनाव का माहौल है। चीन ने गुरुवार से अपने दक्षिण पूर्वी प्रांत फुजियान के तट के पास ताइवान जलमार्ग के कुछ हिस्सों में 2 दिन का लाइव फायर अभ्यास शुरू किया। ये खबर अमेरिकी विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री के बीच कई मुद्दों पर बातचीत के एक दिन बाद आई है, जिसमें लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान भी शामिल है, जिस पर चीन अपना इलाका होने का दावा करता है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, जबकि दोपहर को उत्तर पश्चिम दिशा में थोड़े से बादल घेराएंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:43 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:50 पर।

0: चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। ऑगस्टो अजाएल पेरेस के नेतृत्व में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल पोर्टल्विट स्थित न्यू ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। इस बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित रामनवास भी हुए हैं शामिल। फ्लक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। कल उद्घाटन किए गए क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य है इस इलाके के निवासियों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल को अधिक सुलभ बनाना है। 17 जून से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई हिस्सों में जलापूर्ति के लिए नए समय निर्धारित किए हैं। सेंट्रल प्लेटो इलाके इससे सबसे ज्यादा हुए हैं प्रभावित। और विदेश स्तर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शिपिंग रूट्स को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए हैं। यह 13वीं रात लगातार हमले हैं। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम फैजान को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

आयुषोक समाचार सुनते हैं रेलवे रोड रिवे जी पुस्त में। रेलवे रोड रिवे जी पुस्त में 67 साल की 67 years old की श्रीमती ललिता बिया सिंह, श्रीमती ललिता बिया सिंह पैदाइशी नाम गणपत और जिन्हें सब लोग बिमला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री गिरीश बिया सिंह के घर रेलवे रोड रिवेजी पुस्त से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगाबू रिवेजी पुस्त कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 11 AM। ओबिलक स्ट्रीट ब्रांच रोड नोवेल फ्रांस में, ओबिलक स्ट्रीट ब्रांच रोड नोवेल फ्रांस में 78 साल की 78 years old की श्री राजेंद्र प्रसाद चौतन जिन्हें सब लोग राजेन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह साढ़े नौ बजे उनके बेटे श्री विशाल चौतन के घर ओबिलक स्ट्रीट ब्रांच रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गामजिन नोवेल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 9:30 AM। रॉयल रोड बैलेंस सूरीनाम में, रॉयल रोड बैलेंस सूरीनाम में 79 साल की 79 years old की श्रीमती सावित्री रामतोहल पैदाइशी नाम सिरतन और जिन्हें सब लोग साबित के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर रोड बैलेंस सूरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर एफ फ्री Avenue Cardinal Cité Beau Séjour 4 Bonne Main. Number F Free. Avenue Cardinal Cité Beau Séjour 4 Bonne Main. 84 Salki, 84 years old ki. Shumati Kunti Ramson. Paidashi naam Sabnot. Aur jinhen sab log Parbha ke naam se bhi jante the. Unki mrityu ho gayi hai. उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर नंबर एफ्री एवेन्यू कर्जिनल सिटे बोसेजो कैथ्रो बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कुदिगा किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM। गाजादा स्ट्रीट स्टैनली रोजेल में 91 साल की 91 years old की श्री मुतुकापेन जिन्हें सब लोग कैद्रेस के नाम से भी जानते थे और जो लाशुमिया के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उन्हीं के घर गाजाडा स्ट्रीट स्टैनली रोजेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोंटे मोंगोश किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 2:30। सर एडवर्ड हार्ट स्ट्रीट उलिये कैथ्रो बोन में 53 साल की 53 years old की श्रीमती तजीना गंगा बिसुन पैदाशी नाम रूपचंद और जिन्हें सब लोग वीनू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उनके पति श्री स्वराज दादू गंगा बिसुन के घर स्ट्रीट उलिये कैथ्रो बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 2:30। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों का औपचारिक उद्घाटन समारोह कल लगा। ओवो हाइड्रो इंडो अरेना में स्पेक्टैकुलर ऐतिहासिक ओपनिंग रही। किंग्स चार्ल थर्ड और क्वींस कमीला की उपस्थिति में ओपनिंग हुई। 3000 एथलीट्स, 215 गोल्ड मेडल्स, 10 खेल होंगे। आज से खेल शुरू। बाउल्स और पारा बाउल्स से फिर 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग और बॉक्सिंग होंगे। एमबीसी 11 पर ये खेल आप देख पाएंगे। हमारे एथलीटों पर खास प्रसारण होगा। आर्सेनल प्रीमियर लीग चैंपियन अपने टाइटल को बचाने के लिए सज हैं। द गनर्स 70 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर न्यूकासल यूनाइटेड से ब्रूनो गुमारेस के लिए तैयार हैं। गुमारेस भी आर्सेनल में जाना चाहता है। अभी कौन सा आर्सेनल का फर्स्ट चॉइस डिफेंसिव टारगेट है? जूलियन अल्वारेज द गनर्स का ड्रीम टारगेट है, पर अल्वारेज बार्सिलोना में जाना चाहता है। आर्सेनल ने ग्रीस के इंटरनेशनल खिलाड़ी क्रिस्टियोस जोलिस को साइन कर लिया है क्लब ब्रूज से 34 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर। रियल मैड्रिड ओरेलियन चुआमेनी को मैनचेस्टर यूनाइटेड से बेचने के लिए तैयार हैं। द रेड डेविल्स एएस रोमा के मिडफील्डर मानु कुने और ब्राइटन के मिडफील्डर कार्लोस बालेबा को भी साइन

करना चाहता है मिडफील्ड को कंसोलिडेट करने के लिए। वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड आज रोजनबर्ग के खिलाफ अपना प्री सीजन का मैच खेलेगा, फ्रेंडली मैच है। इस मैच के लिए 15 साल के युवा खिलाड़ी जे गैब्रियल को सीनियर स्क्वाड में रखा गया है। जे गैब्रियल प्रीमियर लीग का अंडर 18 प्लेयर ऑफ द सीजन बना था जब वो केवल 14 साल का था। पिछले हफ्ते फिनलैंड में रेक्साम ने 1-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था, मतलब रोजनबर्ग के खिलाफ ये दूसरा फ्रेंडली मैच है। प्री सीजन फ्रेंडलीज में आर्सेनल खेलेगा जिरोना के खिलाफ 1 अगस्त को, फिर 5 अगस्त को रियल बेटिस के खिलाफ मैच, 9 अगस्त को बोरुसिया डॉर्टमुंड, 3 दिन बाद कोमो और 16 अगस्त को ट्रेडिशनल कम्युनिटी शील्ड, यह है मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ। लिवरपूल के लिए 25 जुलाई को कल सन्डरलैंड के खिलाफ मैच है, 4 दिन बाद रेक्साम, 2 अगस्त को लीड्स, फिर 9 अगस्त को मोनाको और 16 अगस्त को कोमो के खिलाफ मैच, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड आज रोजनबर्ग, फिर 1 अगस्त को मैड्रिड, पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ मैच है 8 अगस्त को, 12 अगस्त को लीड्स और 15 अगस्त को एसी मिलान। यूईएफए यूरोपा लीग सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में कल कुछ मैच खेले गए। काराबाग 0 CSKA सोफिया 0, दिनामो केव 2 PAOK के 3, हमाबी 1 आंदेलक 1, शेरिफ 0 मकाबी तेल अवीव 5, क्रोमजो 0 राडेक क्रालोवे 1, बेसिकतास 1 मिडजिलान 0, सेंगालेन 2 बेनफिका 1, ट्वेंटे 1 फेरेनवारोस 2 और हाशडुक स्प्लिट 2 पाफोस 0। साइकिलिंग टू डे फ्रांस स्टेज 18 यानी 18वें चरण में कल इक्वाडोर के रिशा कारापाव की जीत हुई। लीडर तादेज पोगाचा अभी तक 4:32 से आगे हैं। क्रिकेट में मार्च महीने में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कल भारतीय टीम की पहली जीत हुई। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। वैभव सूर्यवंशी की हाफ सेंचुरी रही। इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक यानी हाफ सेंचुरी बनाने वाला सबसे जवान खिलाड़ी बना वैभव। मयंक यादव और प्रिंस यादव 2-2 विकेट ले पाए। और मॉरिशस में भी अगले हफ्ते से आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा शुरू होगा, इस पर आपको जानकारियां देते रहेंगे। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए, इस समय 7:12 हो चुके हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती है पूजा। इस शुक्रवार को कहा जाता है कि जीवन हर सुबह एक नया पन्ना खोलती है, कहानी वही यादगार बनती है जो हौसले की साई से लिखी जाती है। और कहा जाता है सकारात्मक सोच के साथ जो भी अपने दिन की शुरुआत करता है, उनका जो भी काम है वो बनते ही जाते हैं। मुस्कुराइए और हमारे साथ निभाइए। और चलिए इसी विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं चिंतन से। आइए इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी जमन जी की प्रस्तुति में।

0: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: दुख वेदना ही मनुष्य जीवन में कठोर तपस्या का रूप धारण कर लेती है। यह तपस्या जिसकी सार्थक होती है, उसकी आत्मा तपाए हुए सोने के समान निर्मल, निष्कलुष और उज्ज्वल हो जाती है।

मंजिल कितना भी दूर क्यों ना हो पर हम पहुंच ही जाते हैं। और जो भी लोग अभी रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं बड़े प्यार से और साथ निभा रही है मौदाल बेसी अनिता जी और साथ में है गायत्री जी नुवेल फ्रांस से, शैला जी हैं ग्रैंड रिवियरा से और साथ निभा रही है सुबह से ही जुड़ गई है माला सुमारू जी और सुनीता जी हैं ग्रैंबे से। और जो भी लोग अभी ड्राइव करते हुए हमें सुन रहे हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं। कुछ पुराने गीतों के दौर आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार जी के आवाज़ में जीवन के सफ़र में राही। और हम सभी तो राही ही हैं, बस चलते ही जाना है चाहे मंजिल कितना भी मुश्किल क्यों ना हो पर कठिन समय गुजर ही जाता है और हम अपने मंजिल की ओर बढ़ ही जाते हैं मेहनत से। तो चलिए मेहनत के साथ और सकारात्मक सोच के साथ आप चलते रहें।

चलिए श्रोताओं, एक नज़र डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर। और अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम, 7:30 बजे चंद पॉपुलर गीत आप सभी के नाम, और 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे, और समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम, और नाश्ता के बाद 8:50 पर आप हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी जी द्वारा एक कार्यक्रम सुनेंगे, और आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत, और 9 बजे फिर से समाचार होंगे। समाचारों के उस पार 9:05 पर आज की चर्चा कार्यक्रम वेदिता की ओर से 10 बजे फिर से समाचार होंगे। समाचारों के उस पार भक्ति कार्यक्रम भक्ति धारा रोशनी द्वारा, फिर 10:50 पर आप भक्ति शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, और 11 बजे फिर से समाचार होंगे। समाचारों के उस पार 11:03 पर उर्दू कार्यक्रम सायदा की तरफ से, और 12 बजे तेलुगु

भाषा में कृतिका द्वारा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दिन के 1 बजे। तमिल भाषा में आप कार्यक्रम सुन पाएंगे 1:45 पर रंगारंग कार्यक्रम लेकर आएगी रत्ना जी, और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे गुजराती भाषा में 2 बजे। आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे होंग होंग के साथ, आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर आएगी सुमिता, और आपके ही पसंद के गीत 4028085 पर आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और आपकी पसंद कार्यक्रम फिर से आप सुन पाएंगे। और सुपहर के 3 बजे समाचार होंगे, समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा।

0: 3:45 पर उर्दू कार्यक्रम आप सुन पाएंगे अनवर की ओर से, और सुपहर के 4:40 पर आप अनवर की ओर से उर्दू कार्यक्रम सुन पाएंगे, और शाम के 5 गीत और गज़ल कार्यक्रम परवेज़ा की तरफ से, और शाम के 6 आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। 6:20 पर फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉर्शस की लहरों पर, और 6:30 आप चाइनीज़ कार्यक्रम सुन पाएंगे जिन की ओर से, और रात के सात बजे तमिल भाषा में आप कार्यक्रम सुन पाएंगे, 7:30 तेलुगु भाषा में विश्वा द्वारा आप कार्यक्रम सुन पाएंगे गीत गंगा कार्यक्रम बापू की ओर से, मराठी भाषा में आप इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे 7:50 पर, और 8:10 पर भक्ति कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम अलका जी द्वारा, फिर आप महफिल शब कार्यक्रम परवेज़ा की तरफ से 8:40 पर सुन पाएंगे, 9 फिर से समाचार होंगे, 9 आप भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुन पाएंगे सुरेखा जी की ओर से, और 11 सुनहरे पल कुछ पुराने दौर के गीत लेकर आएगी गिनेशा, और 11 से लेकर 6 तक चन प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर।
1: रेडियो मॉरिशस
2: झलकियां
0: भाई। कहा जाता है कि हमारे इंडियन सिनेमा ने हमें ऐसे ऐसे गीत दिए हैं, ऐसे ऐसे गायक दिए हैं जो हमारे बीच तो ना रहे, फिर भी आज भी उनके गीत उतने ही सुनहरे हैं, और आज भी जब भी हम सुनते हैं और उन गीतों की पहचान ही कुछ अलग है, और आज भी ये गीत उतने ही प्यारे हैं। चलिए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, और गीत है फिल्म ट्रेन से। एक फकीर के पीछे भागते भागते एक ऐसा गायक जी, जिन्होंने बस इंडियन सिनेमा को ऐसे ऐसे गीत दिए हैं जो आज भी यादगार है।

0: कहते हैं, है ना?
1: हाँ जी, प्यार के बिना ये जीवन कुछ भी नहीं। सजादा जी हैं त्रियुले से और साथ निभा रही हैं गीता जी कुंफे से, कमला जी हैं मोताबा से।

0: कहते हैं ना कि संघर्ष के बाद अवश्य कुछ अच्छा होगा ही, क्योंकि संघर्ष के बाद ही, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। तो आइए अब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: कथोबोन के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर रावीनी डेका और रगुत ग्वायाल बिलगोज और चाइनीज एम्बेसी के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 25 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: डेपी प्रोमियर जो नू फिन टू जो ला आ ज़ूट लिकूट आ ज़ूट कोटे आ साक मोमेंट इम्पोर्टेंट डी ज़ूट ला वी नू एक्स्ट्रा हैप्पी ट्रूव ज़ूट टू लेस जो कनेक्टे ग्रैंडी एपानुई एंड एंसेंबल नू पी कंटिन्यू Continuez, causer, riez, potaser, sauter, piler, danser, amuser, rêver, vibrer. Zodi, nous encore plus confiants pour dîmer. Côte sac nouveau technologie qui nous peut amener. Pour faire sac mauricien, vivre ban l'expérience, encore plus, mighty CIA. Et c'est qu'ici, nous pour la même, à ce côté. Zodi, dîmer, vive-li avec mighty.
3: Yo, yo, yo, yo.
4: कभी सोचा है
5: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
4: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
5: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
4: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
5: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
4: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
5: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
4: वीडियो हो सकता है हिंदी,

0: भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26 जुलाई। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वंदे आजी। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस
2: सुबह का नजराना, लाए खुशियां हजार। रेडियो मॉरिशस पर।

आप लोग साथ हैं तभी तो हम चले आते हैं साथ नभाने के लिए वीडियो मॉशस के लहरों पर। और अब हम भरेंगे कुछ 90s के गीत जहां पर केवल रोमांटिक ही गीत बनते थे उस समय। आइए कुमार सानू जी की आवाज़ में इम्तिहान फिल्म से इस तरह आशिकी का साथ निभा रही है मुंजी ख्वायो से इंदिरा लौटन जी हैं।

किसी ने सच ही कहा है ना कि असर तभी पड़ता है जब हमारा कर्म अच्छा हो। और कहा जाता है जो भी आप करते हो आपको हमेशा याद रखा जाता है। आशा जानू जी हैं कुतेज से और अपनी मामा कुमारी जी के लिए, और नेफ्यूज़ हैं शुभम ऋषभा और दीदी आरती जी जो राज हैं, और उनके सभी जानू परिवार और साथ निभा रही है मुंजी इक्वायर से, और साथ में है उषा जी हाईलैंड से। आप सभी का दिल से स्वागत करती है पूजा। आइए एक और सुंदर सा गीत सुनते हैं, फिल्म है साजन और SP बालासुब्रमण्यम जी की आवाज़ में। आप लोगों से बड़ी तमन्ना है मिलने का, तभी तो चले आते हैं।

0: सगा नजराना लाए खुशियां हजार रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो चलिए श्रोताओं, इसी के साथ हम सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं और रात बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे अभी द्वारा। तो तब तक के लिए आप सभी के नाम है जुनो न्यूयॉर्क फिल्म से और आप सभी को पूजा की ओर से शब्दन।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घरी मिला ले जाए ई बखत फजर के 8 बजल बा। सब कोई के नमस्ते और वादा फजर के 8 बजे की भोजपुरी समाचार सुन जा। ओगिस्तो अजायल पेगैजा के नेतृत्व में IMF माने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एगो टीम काल बिफे के पोतली के ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात कर लन। ई बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने के महानिदेशक रोहित रामनवाज भी शामिल रहलन। एकर उद्देश्य है कस्टम्स प्रक्रिया के मूल्यांकन करी के सेवा के दक्षता के बढ़ावे के ड्रग्स तस्करी अवैध उत्पाद और टैक्स से जुड़ल धोखाधड़ी से सीमा के आरजस्ती निमन सुरक्षा करी के। IMF ई बोलन की मॉरिशस के कस्टम्स विभाग अघी से ही निमन प्रदर्शन करता। फ्लाक इलाके में अब बर्जना लोगन खातिर एगो नवा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध बाती। काल बिफे के उद्घाटित करल गल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट के उद्देश्य है इलाका के रहे होला बर्जना लोगन खातिर चिकित्सा देखभाल के आर जस्ती सुलभ बनावे की। ई केंद्र आवत सप्ताह से शुरू हो जाए और पहल का चरण में 21 दिन काम करी। 17 जून से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी देश के कई गो हिस्सा में जलापूर्ति खातिर एगो नवा समय सारणी निर्धारित करलन। सेंट्रल प्लाटो इलाका एकर से जस्ती प्रभावित होला काहे कि मुख्य जलाशय के जल स्तर में चिंताजनक गिरावट होला। खासकर देश के सबसे बड़का जलाशय माने मऊवाकवा जेकर जल स्तर गिर के लगभग 2.3% के भेरी पहुंच गल बाती। जैसा कि ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादन भी ई बात बोलन। पानी के भंडारण के बचाय खातिर सेंट्रल वाटर अथॉरिटी दैनिक आपूर्ति के घटा के खाली 21 बखत के कर दिलन। फजर के 3 बजे से रात के 8 बजे के बीच 2-3 इलाका में रोज के रोज लगभग 6 घंटा ले पानी देवल जाए। तो दूसर देश में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शिपिंग रूट्स के लेके जस्ती तनाव के बीच अमेरिका ईरान पर फेनों से हमला कर दिलक। अमेरिकी सेना ई बतैलन कि बिफे सांझ के बखत में ईरान के सैन्य ठिकाना पर ही नवा दौड़ शुरू करल गल। ई 13वा रात लगातार हमला होते जाता। तेकरवे संगे हमने की भोजपुरी समाचार समाभल। ध्यान देवे खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: Our morning cover soon, Aja. Obilac Street Branch Road, Nouvelle France, mein. Obilac Street Branch Road, Nouvelle France, mein. 3 kori 18 baris ki, 78 ans ki, Shri Rajendra Prasad Chaitan, Shri Rajendra Prasad Chaitan, जिनकरा सब लोग राजन के नाम से जस्सी जाना थलन जा, उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज फजर के 9:30, आज फजर के 9:30 उनकर बेटा श्री विशाल चौतन्य के घरे उबिलक स्ट्रीट ब्रांच रोड नोवेल फ्रांस से उठा के क्रियाक्रम खातिर गामजिन नोवेल फ्रांस के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रमेशन टुडे

at 9:30 a.m. Railroad Ballon Suriname में, Railroad Ballon Suriname में 3 crore 19 lakh के 79 के श्रीमती सावित्री रामतोहल, श्रीमती सावित्री रामतोहल पैदाइशी नाम से रतन और जिनकरा सब लोग साबित के नाम से जस्सी जाना थलंजा, उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दिन के 11 बजे, आज दिन के 11 बजे उनकर घरवे से माने रॉयल बैलों सुरिनाम से उठा के क्रियाक्रम खातिर सुया के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टुडे एट 11 a.m. नंबर एफ फ्री एवेन्यू कार्डिनल सिटी बसेजू 4 बोन में, नंबर एफ फ्री एवेन्यू कार्डिनल सिटी बसेजू 4 बोन में 4 crore 4 lakh के 84 की श्रीमती कुंती रामसन, श्रीमती कुंती रामसन जिनकरा सब लोग सबनोत के नाम से जस्सी जाना थलंजा, जिनकरा ओकर पैदाशी नाम सबनोत हवन और जिनकरा सब लोग प्रभा के नाम से जस्सी जाना थलंजा, उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे, आज दिन के 1 बजे उनकर घरवे से नंबर एफ फ्री एवेन्यू कार्डिनल सिटी बसेजू 4 बोन से उठा के क्रियाक्रम खातिर कुदिगा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 p.m. गजाधर स्ट्रीट स्टैनली रोजिल में, गजाधर स्ट्रीट स्टैनली रोजिल में 4 crore 11 lakh के 91 के श्री मुतु कर्पन, श्री मुतु कर्पन जिनकरा सब लोग कादरेस के नाम से जैसी जाना थलंजा और जिन जे लाशमिया के एगो माली रहलन, उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दिन के दोपहर के 2:30, आज दोपहर के 2:30 उनकर घरवे से गजादर स्थित स्टैनली रोजल से उठा के क्रियाक्रम खातिर सैमौते मौश की शमशान भूमि ले जावल जाए। फ्यूनरल टूडे एट 2:30 p.m. Sir Edward Hart Street, Ollier 4 Bonne Main. Sir Edward Hart Street, Ollier 4 Bonne Main. 2 crore 13 lakh. 2 crore 13 lakh, 53 ans que, Shrimati Tazina Ganga Bisun. Shrimati Tazina Ganga Bisun. Paidaishi naam Rupchan. Aur jinkara sab log Vinu ke naam se jassi jana thalanja. Unkar mriti ho gal bate. Unkar maati. Aaj dupair ke 2:30. Aaj dupair ke 2:30. Unkar pati. श्री स्वराज दादू गंगा बिसुन के घरे सर एडवर्ड हॉट स्ट्रीट उलिये 4 बोन से उठा के क्रियाक्रम खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट फ्यूनरल टुडे एट 2:30 p.m. और रेलवे रोड रिवेजिपस में, रेलवे रोड रिवेजिपस में 3 crore 7 lakh के 67 ans के श्रीमती ललिता बिया सिंह, श्रीमती ललिता बिया सिंह पैदाशी नाम गणपत और जिनकरा सब लोग बिमला के नाम से जस्ती जाना थलंजा, उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी काल दिन के 11 बजे, काल सामदी के दिन के 11 बजे उनकर बेटा श्री गिरीश बिया सिंह के घरे रेलवे रोड रिवेजिपस से उठा के क्रियाक्रम खातिर कोंगाबू रिवेजिपस की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 a.m. ते जितना जन परिवार दुख में होवन जा, दुख के ई बखत में एमबीसी के बगल से सब कोई के हमनी सहानुभूति प्रकट करत है सर।

सभी को एक बार फिर से नमस्कार। गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती है पूजा। कहते हैं जिंदगी खेल है, तो चलिए इस खेल को खेलते हैं। और इसमें तो हार जीत होते ही रहते हैं, पर फिर भी पछतावा नहीं होनी चाहिए कि आपने भाग नहीं लिया। चलिए, भाग लेने के लिए आपको डायल करना है 4028085 पर 402-8085 पर आप भाग ले सकते हैं। और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने।

दो चीज का नाम बताइए, दो चीजों का नाम बताइए जो इंसान को इंसान से अलग करता है। दो चीज का नाम बताइए जो इंसान को इंसान से अलग करता है। 4028085 पर दो चीज का नाम बताइए जो इंसान को इंसान से अलग करता है।

0: तो चलिए लाइन पर बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनको अवसर देते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। आइए स्वागत करते हैं धनेश्वर जी, नमस्ते।
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: मैं तो ठीक हूँ।
0: और आप भाग ले रहे हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में, और आप हमें बताएं कि आपके पास क्या जवाब है।
1: मेरा विचार से अहंकार और क्रोध।
0: अहंकार और क्रोध, नहीं, गलत जवाब धनेश्वर जी, फिर भी आपने कोशिश की उसके लिए धन्यवाद और शुभ दिन आपको। ध्यान से सुने, दो चीज का नाम बताइए जो इंसान को इंसान से अलग करता है।

0: तो चलिए लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो
1: हेलो पूजा जी।
0: नमस्ते बीना जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा यही करती हूँ कि आप भी ठीक ही होंगी।
0: धन्यवाद। और आप भाग ले रही हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में वीना जी, और वीना जी आपके पास क्या जवाब है?
1: ऐसे हम देखेंगे तो मनुष्य में बहुत सारे दुर्गुण है।
0: हाँ,
1: उन दुर्गुण, ये भी एक दुर्गुण ही जैसा है, एक दुर्गुण ही है जो क्वालिटी ही है मनुष्य की।
0: हाँ,
1: जो मनुष्यता से हमें गिरा देता है।
0: हाँ,
1: बहुत सारे है, तो उसमें से मैं ये, मेरा दिमाग ये कह रहा है अभी के लिए कि वो शायद धन होगा, और या तो हमारी जो बोली है, हमारी जो वाणी है, हमारे जो शब्द है, हमारी जबान है, यही है। क्योंकि कभी हम उस पर आदमी किसी को, हम देखो हिंसा कई प्रकार के होते हैं, सिर्फ तलवार अस्त्र शस्त्र से नहीं होता, जबान से, मुंह से, वाणी से भी होती है ना। जब हम किसी को कुछ बोल देते हैं इससे उसको चोट लगती है गहरी, जो जीवन भर भरता नहीं है, तो ये भी एक प्रकार का हिंसा ही है। तो यही मैं समझती हूँ कि मेरे, और एक एक दूसरी है कि जब जिसके पास बहुत धन होता है तो वो किसी दूसरे को अपने आगे वो कुछ नहीं समझता।
0: आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और समझाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सही कहा, वो पैसा है और हमारा खुद का जो है वाणी, जुबान।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभ दिन।
0: शुभ दिन आपको भी वीना जी, और कहेंगे इस

0: और हंसती रहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए, बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, बढ़ते हैं जो हैं तीसरे सवाल की ओर। प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं, आप ध्यान से सुने।

वह क्या चीज है जो सबको दिखता है लेकिन किसी को नहीं सुनता? वह क्या चीज है, वह क्या है जो सबको दिखता है लेकिन किसी को नहीं सुनता? 4028085 पर। व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: चलिए सुनते हैं कि इस प्रश्न के लिए हमारे साथ जो श्रोता है उनके पास क्या जवाब है। हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप? इतनी प्यारी प्यारी आवाज है आपकी, आप नाम तो बताइए। अमृता जी ओकुले से, और आपका हार्दिक स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद आपको।
0: और अमृता जी आपके पास क्या जवाब है?
1: शायद समय।
0: शायद नहीं, ये तो आपने सही जवाब दे दी। आपको बधाई हो अमृता जी, और आपको कहेंगे शुभ दिन।
1: आपको भी धन्यवाद।
0: धन्यवाद बाबा, यूं ही हंसते रहे।
1: फिर
0: से मिलेंगे जी, अवश्य। बाय।
2: जवान जान मत

चलिए एक और प्रश्न आप सभी के नाम। ऐसी क्या चीज है जो किसी भी दबाव से छुपाया नहीं जा सकता? ऐसी क्या चीज है जो किसी भी दबाव से छुपाया नहीं जा सकता? 4028085 पर।

0: चलिए मैं देखती हूँ कौन सी जो है शिकारी आ गई है हमारे साथ। आशा जी आपका स्वागत है, नमस्ते।
1: हेलो, नमस्ते पूजा जी, आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं अच्छी हूँ, और ऐसे सुहाने मौसम में इतनी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीतों को सुनकर और भी अच्छी हो गई हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी जिस प्लेलिस्ट जो है आपको पसंद आ रही है और आप इसका आनंद भी उठा रही हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपके पास क्या जवाब है?
1: पता नहीं सही है या गलत पूजा जी, कोशिश कर रही हूँ, शायद सच,
0: शायद की जो है कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपने जो है सच कहा है।
1: सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या कहा आपने, फिर से दोहराइए।
1: क्योंकि सच आप कितने भी दबाव डालो, सच सामने आ ही जाता है। उसे आप लाख छुपाना चाहे, वो हम छुपा नहीं सकते,
0: छुपा नहीं सकते, छुपाया नहीं जा सकता। और आपने सही जवाब दिया है, आपको बधाई हो। और बढ़ेंगे एक और प्रश्न की ओर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय आशा जी,
1: शुभ दिन।
0: शुभ दिन आपको भी।

चलिए बताइए, डूब कर भी नहीं मरता, फिर से बाहर निकल आता है, बताइए क्या है वह? डूब कर भी नहीं मरता, फिर से बाहर निकल आता है, बताइए क्या है वह? 4028085 पर।

0: जाओ ढूंढ के लाओ।
1: मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं देखूं उसको इधर उधर। मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं देखूं उसको इधर उधर।
0: ढूंढ कर लाइए मुझे जवाब तो चाहिए।
1: नहीं मेरे आ जा।
0: 4028085 पर
1: कमो तू जलवा अपना दिखा जा,
0: जलवा दिखाइए। दिमागी कसरत की जलवा, चलिए बताइए। हेलो नमस्कार।
2: नमस्ते सुजा जी।
0: नमस्ते, कैसी हैं आप देवी जी?
2: ठीक है
0: ठीक है ठीक है। बताइए आपके पास क्या जवाब है?
2: जवाब है शायद बलून।
0: बलून? नहीं नहीं नहीं जी, गलत जवाब। कोई बात नहीं, आपको कहेंगे शुभ दिन। शुभ दिन, बाय।

मस्ती भरा समा है और अभी गर्मा गर्म नाश्ता है। लाइन पर एक और श्रोता, आइए उनको सुनते। हेलो, क्षमा कीजिए, शायद फोन

0: इधर उधर मेरा दिल ले।
1: हेलो
2: हेलो,
1: नमस्ते जी।
2: नमस्ते पूजा जी, हम तारा हैं।
1: तारा जी आपका स्वागत है। और तारा जी के पास क्या जवाब?
2: वो है शक्ति।
1: शक्ति नहीं, ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं, तारा जी आपको कहेंगे शुभ दिन और बाय
2: बाय।

0: तो इसलिए मैं ही जो है जवाब दे देती हूँ, और किसी ने सच कहा है और किसी ने अभी सही जवाब ही दिया है, और वो है इंदिरा लौटन जी व्हाट्सएप के माध्यम से, और उन्होंने कहा है सूरज। जी हाँ, ये सूरज ही है। और अभी जो है बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख़ास तौर पर उषा ग्रिडार जी हैं ब्रह्मस्थान से, और हमेशा हमारे साथ दे रही है, और मदामाजो से वुडलैंड परिवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में जिन जिन लोगों ने साथ लिए हैं, भाग लिए हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं।
1: गर्मा गर्म नाश्ता।
0: चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर, किरण जानकी जी की प्रस्तुति में। फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे समाचार पढ़े जाएंगे, समाचारों के उस पार आप आज की चर्चा कार्यक्रम सुन पाएंगे वेदिता की ओर से। और तब तक के लिए पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। अभी 26 जुलाई के हमने एगो अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाई ला जा, और वो अंतर्राष्ट्रीय दिन विरासत से जुड़ल बा, एगो प्राकृतिक विरासत, और वो है मैंग्रोव मोगलिए। 26 जुलाई के वर्ल्ड मैंग्रोव डे मनावल जाला। मैंग्रोव समुन्दर के किनारे जमीन के भीरी वो छोटा छोटा पौधा और गांची है जो हमने के इकोसिस्टम खातिर बहुत ज़रूरी है। मैंग्रोव के एगो महानायक के रूप में देखल जाला, सुपर हीरो, कहे कि एकर अनेक गुण बा। हमने के जोन बायोडाइवर्सिटी बा, यानी कि विविध प्रकार के जीव जंतु, ओके जिंदा रखे में, मौसम के संतुलन के बराबर रखे में, समुद्र तट के तूफान सुनामी और इरोजन से हिफाजत करे में, और समुद्र के पानी के स्तर के ऊपर बढ़े से बचावे में मैंग्रोव के बहुत बड़ा हाथ है। एकर से बहुत बढ़िया लकड़ी भी मिलेला। इस सब गुण के बावजूद मैंग्रोव इतना तेजी से ई पृथ्वी पर से खत्म होता सकब जा बोले जितना तेजी से दुनिया के जंगल बर्बाद होता, ओकर से 5 गुना जस्ती। मैंग्रोव दुनिया भर में 5 गुना जस्ती तेजी से समाप्त होता, और एकर से हमने के पर्यावरण और हमने के इकोनॉमी अर्थतंत्र बहुत गंभीर असर के सामना करी। मॉरिशस जैसन छोटा टापू देश के समुद्र तट के सुरक्षा खातिर मैंग्रोव

जागरूकता और भी जरूरी बा। मैंग्रोव दिवस के अवसर पर यूनेस्को एगो जागरूकता अभियान पर जोर देवेला, जेकर तहत मैंग्रोव और हमनी के इकोसिस्टम के महत्व पर जोर देवल जाए और मैंग्रोव के जोन संचालन बा, जोन सस्टेनेबल मैनेजमेंट बा, यानी ऐसन संचालन जोन लंबा समय तक बरकरार रही और ओकर सुरक्षा के बढ़ावा देवल जाए। मैंग्रोव जोन इतना जरूरी है, वो दुनिया भर के ट्रॉपिकल जंगल के खाली 1% प्रतिनिधित्व करेला, ओके रिप्रेजेंट करेला। कितना वनस्पति और जीव जंतु जैसे मामल, चिड़ई, इंसेक्ट, रेप्टिल, मच्छी इत्यादि मैंग्रोव पर ही निर्भर हवन सा। मंगलिए कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लू कार्बन के भी भारी मात्रा में पीले वेला। एगो साधारण गांछी जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप सोबे करेला, मैंग्रोव ओकर से 5 गुना जस्ती कार्बन पिएला। सोचत होइबा कि ब्लू कार्बन अब है का चीज। ब्लू कार्बन ऊ गैस है जोन समुन्दर तट और इकोसिस्टम में जमा होवेला और कितने दशक तक, सकब्जा बोले हजारन बरिस तक ऊ सकी जमा रहे। मैंग्रोव या दलदली इलाका ई सब जोन कार्बन के गैस बा ओके पी लेवेला और मौसम परिवर्तन के बुरा असर से पृथ्वी के बचावेला। मॉरिशस में सकब्जा बोले कि 1.6 square kilometers मैंग्रोव बा। फिशरीज और मरीन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पर्यावरण और मछली उद्योग मंत्रालय वो सब जन समुदाय के सहयोग से मैंग्रोव रोपत हवंजा, जे लोग मछली मार उद्योग से हवंजा और वो लोग के आजीविका कमावे के एगो साधन है मछली। एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लुमोन में सकब्जा बोले कि 50,000 से जस्ती मैंग्रोव रोप लेबा। उधर कैत्सुय पुथुदो, ब्लैक रिवर, कैसनोयाल और गांसाबल में भी ये गतिविधि चल रहा। मैंग्रोव इकोसिस्टम के सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय दिन यूनेस्को इस बात पर बहुत जोर देवेला कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस पर इस बात के एहसास करेगे कि मैंग्रोव के बचावे के कितना जरूरी बा और ई दिन ई बात पर सोच विचार करे के चाहिए कि मौसम और विविध जल जीव जंतु के सुरक्षा खातिर हमने व्यक्तिगत रूप से कैसन योगदान सकब से देवे। याद रखिए, हर एगो व्यक्ति के एगो योगदान है दुनिया के विनाश से बचावे खातिर। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: नमस्कार। घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के 9 बजे है। आए मिलते हैं अभी उदयी से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार अभी।
2: नमस्कार वेदिता, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब, दर्शकगण को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। ऑगस्टो अजाएल पेरेस के नेतृत्व में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक प्रतिनिधिमंडल ने कल पोर्टलुई स्थित न्यू ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। इस बैठक में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित रामनवाज भी शामिल हुए। इस दौरे का उद्देश्य है कस्टम्स प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना, सेवाओं की दक्षता बढ़ाना, परिचालन लागत को कम करना और ड्रग तस्करी, अवैध उत्पादों तथा टैक्स से जुड़ी धोखाधड़ी से सीमाओं की बेहतर सुरक्षा करना। IMF का मानना है कि मॉरिशस का कस्टम्स विभाग पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मॉरिशस अफ्रीका की सेवा में एक क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र यानी कि फाइनेंशियल रीजनल फाइनेंशियल हब के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहता है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए TDB यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने कल इबेन में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये एक रणनीतिक साझेदारी है जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय सेवा क्षेत्र में कौशल विकास और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। फ्लक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। कल उद्घाटन किए गए क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य है इस इलाके के निवासियों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल को अधिक सुलभ बनाना। 17 जून से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई हिस्सों में जलापूर्ति के लिए नए समय सारणी निर्धारित किए हैं और सेंट्रल प्लेटो इलाके इसी से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसकी मुख्य वजह जलाशयों के जल स्तर में चिंताजनक गिरावट, विशेष रूप से देश का सबसे बड़ा जलाशय मोहवाक्वा जिसका जल स्तर 43% के करीब तक पहुंच गया है। जैसा कि ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादन ने भी कहा, पानी के भंडारण को बचाने की दिशा में सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने दैनिक आपूर्ति घटाकर केवल एक ही समय कर दी है यानी कि सुबह के 3 बजे से रात के 8 बजे के बीच कुछ इलाकों में प्रतिदिन लगभग 6 घंटे तक पानी दिया जा रहा है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका ने भारत के आयात से होने वाले सामान पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये फैसला आज से लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने फोर्स लेबर से बने सामान के आयात को लेकर 60 देशों पर कार्रवाई की। आपको बताते हैं कि भारत के अलावा ब्रिटेन, कैनेडा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेक्सिको, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों को 10% टैरिफ वाले समूह में रखा गया है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। अभी को दीजिए अनुमति, नमस्कार और आदाब।
3: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: सभी दर्शक लोग की, सभी श्रोता लोग की विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्ते। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओं, हम जब भी इस कार्यक्रम के साथ आते हैं शुक्रवार के दिन, हम यहाँ पर कानून से जुड़े काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं। और आज का हमारा जो कार्यक्रम है, आपको पता ही है कि हर शुक्रवार को जब हम कानून के बारे में बात करते हैं तो हमारे साथ हमारे वकील कपिल देव रघुनंदन जी हमारे साथ होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए उनसे मिलते हैं और आज की चर्चा इस कार्यक्रम में जानते हैं कि आज का हमारा जो विषय है उस पर हम आज क्या चर्चा करने जा रहे हैं। तो वकील बाबू जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी,
0: कई सेवा समाचार?
1: भगवान की कृपा से चलाता ठीक।
0: कार्यक्रम में स्वागत एक बार फिर से। आज के हमने के जो शीर्षक बा कि माँ बाप के ओकर लड़का पर कौन अधिकार है,
1: हाँ जी,
0: एकर पर हमने चर्चा करब
1: जा।
0: हमने के जितना भी अभी दर्शक लोग श्रोता लोग हमने के कार्यक्रम में

0: उनके साथ देवत हुन जा, वो लोग भी सोचे जा तो माँ बाप की वो लड़का में कौन हक है, सब हक है। लेकिन आज ये जो विषय लेकर आने जा एक पर हमने विस्तार से बात करब जा और हमने जानब जा ऑथोरिटे पारेंटल कौन ची है।
1: जैसे हमने बोले सा पारेंटल ऑथोरिटी अंग्ले में ऑथोरिटे पारेंटल फ्रांसे, ये हमने के कुछ सिविल मोशन ये गुवेने करेला। जैसे हमेशा बोल ले ऐसा लिखल कानून है और हमने के कब मेम की लाकूर में आवेला मजिस्ट्रा होई वकील होई कुछ चीज होई यही कुमा जे अप्लीके करेला डिसीडे करेला। तनेला हमने सब कोई हमेशा सोची ला सर माँ बाप होते हुए कि हमने के लड़का में हमने के सब हक बा।
0: हाँ
1: आदमी नहीं बोले ला हमारी ये हमर लड़का है आले जो कुछ करब हम ओके चाहे ला सुने के
0: हाँ।
1: और ओके कुमा जी हम देखब ओके ओकर पोजिशन कैसे बाकर देवो हमर देवो कौन ची है लैकुआ में। माँ बाप सोचे ला कब ये ऐसा हमर बात देवो हमर चीज करे के तो हमने सकब सब कुछ करे ऊ लैकुआ से
0: हाँ।
1: अभी देखब सब कौन प्रॉब्लम होए ला।
0: अच्छा
1: और कैसे हमने सोची ला सा हमने के सब बा हक ऊ लैकुआ में हमने के देवो बा हमने के ड्यूटी बा हमने के लैका में और ओब्लिगेशन बा कौन ची करे के चाहे ला ऊ लैकुआ में कब देखब कानून ही बोले ला ऊ जोन हक बा हमने में ऊ सब ले लेवे ला लैकुआ के कुमा जे हमने के हक नहीं रहेला।
0: अच्छा
1: सब आदमी बोले ला अरे ये तो हमर लैका हमर हक बा ओकर में कानून में बा बोले असम एगो दुआ एगो देवो एगो माँ बाप के ओकर लैका के ओकर लैका जैसे हमने बोलिया सा और ऊ लैकुआ के चाला एगो लैका जो मिनेर है जे ओकर तब ओकर माँ बाप ओकर दुआ बा ऊ तब तक ले मिनेर रही ओकर दुआ बा ऊ लैकुआ में कैसे होल एगो मजे है लैका एगो जिजुत हो गल सब जे माजे हो गल तो माँ बाप वही तक के ऊ लोग के दुआ नहीं बा ऊ लैकुआ में इतना याद करे के चला माजे हो जाइल तो तू आ कर अपन मानियर माँ बपुआ द्वारा नहीं सकी कुमा जे जिकते करी कौन ची करी ओकरो न देवो बा बस के तू तो बड़ा हो गई ल जिजुतां तो कुमा जे माजे है तो माजे बोले लंसन उ एगो आदमी इंडिपेंडेंट है तो सब जे माँ बपुआ के अब ओकर के कुमा जे नीचे तू नहीं हो।
0: हाँ लेकिन जब हमने बोली ना जब लड़का के जब जिजुता हो गल जब माजे हो गल 18 साल के बाद इंडिपेंडेंट सकी रहे लेकिन 18 साल के लड़का लोग तो अभी भी कॉलेज जाता लिकुल जाता तो माँ बाप की तो जिम्मेदारी रहेला लैकुआ पर ना।
1: हाँ मिसल में हमने उससे नहीं दिक्कत है सर ये खूब बोले थे ठीक ठीक सौंपू सौंप कर एक बार मिसल में यही हमने के कानून कब बोलेला तो एक आदमी माजे हो जाला तो नहीं ओकर माँ बाप कब ओके जाता लिकुल सिपाही यूनिवर्सिटी तो ओकर में इन पर्सन जैसे हमने बोले सर ओकर दुआ बा आ रहा ही नहीं ऊ पढ़ाई के लेकुल के जाए के ओकर दिवो करे के ओके मन हो तो सकी लैकुआ के बोले बू अब हम तुके तुके कुमा जब भेजा था यूनिवर्सिटी या नहीं भेजा था तो लैकुआ नहीं सकी कुछ करे। हाँ अरे एगो लैका के बोझो हमारे एगो लैका बा जिजुत बा कल हमारे यहाँ लिए मुआइए नहीं बा हम बोले जाने वो बोलते जाने बा हमके मन बा यूनिवर्सिटी जाए के सिपा हमके मन बा अनंगलितर जाए के वकील करे के हम लिए करे बस की हम ही तो अच्छे से अपन जिजुत में कर दे ले रही एक बार लैका बाई से तो जिजुत हो गल माजे हो गल पैसा बबुआ के नहीं बा तो हुई फिजे तो नहीं करी ओकर जो चीज कमुआ करे के चाहे ला मेम के ओकर इच्छा बा ओ लैकुआ के ओके मन बा कुमा जा कुछ न कुछ बने के पैसा नहीं बा आले एगो दूसरा चीज हम कौते करते हैं अभी हम सीजियो में आवत हैं तमने के भाई जोन कोसो में हुआ बा एगो जोली चीज हमके बोले कौन चीज में बतियाई बा हम बोले ओतो उते पारेंटल तो हमके बोला तो ओतो उते पारेंटल बोले खोजत हो कि एगो लैका एगो मिने ओकर माँ बाप ओकर कुमा जे सब कुमा जे धोआ बा ऊ लैकुआ में हम बोले अरे का बोले थो तो बोले मुझे थोड़ा एगो कहानी का कौन देखल तुम कि जोली एगो लिग्जाम्प दिलक अरे वही लिग्जाम्प अभी हम यहाँ बतियात हैं एगो बाप बा ओकर एगो बेटा बा
0: हाँ।
1: बेटा आर दोनों को मजा लड़का मिने बा है बेटुआ अरे बेटुआ को मजा बपुआ ओके कुछ बोलक
0: हाँ
1: कैसे बोलक ओके का बोलत हुआ बेटुआ को मजे ओकर लाल सी बुझो सेजन होल बा हाँ। सिफा कैंसन आज के कैंसन के लड़का तो देखो नजीक बड़ा 25 नियर बरिश से लौकता

0: ওর গেলে গাল বাদ বলে
1: লাইকুয়া
0: লাইকুয়া
1: ও মিনে বা
0: হ্যাঁ মিনে বা
1: আপন বাপকে ডোঁটা তা
0: হ্যাঁ अब ओके लगल बात बोले
1: हाँ।
0: तब हुकमा जब बापा बोले ए ऐसे उसे उम्र से नहीं बच्चे हैं हम तो तोर बाप हैं बोले तू कहाँ हमार बाप होवे हमार बाप होवे बस बपुआ एक छटकन मर लग हई लैकुआ के
1: हाँ।
0: बोले मरले हमके आतान कर अभी हम तो बताइला का करे के चला मोबाइल ले लग टेलीफोन कर लग ला पुलिस के हाँ बोले ला पुलिस के ओकर बाप मारा था ला पुलिस साल ला पुलिस होके देखे बोला था यहाँ एगो हकमा जम के एगो कंप्लेंट मिलल है कि बोला था हई एगो लैकुआ तोर बेटवा कि ओके मरला है ओके दो तीन थप्पड़ नहीं छला खूनवे निकले के तब
1: मरलक
0: मरलक आसोल जैसे नहीं बोले सर या भुआ तो मरलक ला पुलिस बोले चल लंकित लिप सर के साल लाकुर में पुष्पीप कर लग
1: लैकुआ
0: हाँ तो लैकुआ सके नहीं ला पुलिस पुष्पीप करी मैं लैकुआ तो थी मुँह तो लैकुआ आके लाकुर में एक्सप्लिके कर लग कि हाँ इका मर बाप हुआ मरलक हमके तला कोई बोला मान दे दिला देखला अपने लैका कौन तोहर दे वो बा कौन चीज करेगी अरे वो दूसरा मजे एगो कहानी का कौन ते करेला एगो है पति पत्नी शादी कर लन सन पति पति कब शादी कर लन सन तो एगो लैका होल अब एगो लैका होल बस कुमा जे एगो दू बरिस होल पति पत्नी नहीं सकलन सन कुमा जे जिए बीस बरिस जिले रहन सन संगे बस देखन सन तब पत्नी बोले जाने ले हम नहीं सकब अब से तुर से जिए जैसे तुर का आगते रहने होने बा हम जीवोश मांगब तो मांगलक जीवोश ओके कुमा जे है छोड़ दिलक मैं मऊआ लैकुआ लेके चल गल
1: हाँ
0: लैकुआ लेके चल गल बस बकोर संगे रह के जाना ना आली ई कौवा में कैसे जीवोश मिलल लैकुआ जोन रहल अपन लैका रहल बपुआ मऊआ के दोनों के लैकुआ अपने
1: हाँ, अपन लैका
0: हाँ, लागत मिल गल मऊआ के मऊआ चल गल ओकर लैकुआ के लेके बपुआ के दिवुआ कभी अपन लैका के गलहे नहीं देखे जोन दिन से कुमाजे से पारे खोल माँ बपुआ लैकुआ कुमाजे चल गल कुमाजे मऊआ संगे दू बरिस के
1: यानी कि हाँ जोन बपुआ बा अपन लैका के जब से लैकुआ गलबा नहीं दिखले बा
0: हई का दू बरिस से कब कुमाजे जीवोश मिल गल चल गल ओ कभी नहीं कुमाजे लैकुआ के गल देखे कोनो लै तेरे नहीं लेलक लैकुआ के कोनो मानिए फिनेंसियर एगो दे के
1: कुछ एगो नहीं
0: पैसा ओकर लेजिकासियों के खाई पियाई के ओकर बीएनएत के कुछ नहीं कभी ओकर लैका के एगो कादो लाने या एगो लानी वे से या कुमा जो कोनो चीज के लोकाजियों में कब आल न ओके जाके देखलक न रेंकोंत्रे करलक उ लैकुआ के
1: यानी कि उ लैकुआ कर खातिर एग्जिस्टिव ही नहीं रहल
0: हाँ और ओ कोनो उ लैकुआ तो औसन हो गल इमोशनल बा नहीं बा उ प्यारुआ भाव भव्य नहीं बा बपोए तो कभी ऐसन करलक अजी को के एलवाई हो गल के भूला गल अभी पहुँचवे नहीं यहाँ ऐसन कावा में तो का होल जीज एगो जीज म दिलक मऊआ अप्लाई करलक एगो एप्लीकेशन करलक जीज घई में लाखू सिप में बोले हमके मन बा ओतोरिते पारंटल हमरे सिर्फ मिले के और ऊ मिशिवा के ओकर पति के जोन रहल जीवोशो के ओके नहीं कुछ कुमाजिया ओके नहीं कुमाजिया
1: यानी कि जितना भी फैसला लेके रही ऊ लैकुआ के ऊ सब ऊ माँ ले
0: हाँ माँ ले ऊ तो पहले शुरू दे देलक नहीं यहाँ तो बपुआ ओ तो इते पारंटल मतलब पारंट के होते हुए ओकर तो लैका का जन्म से ओकरे लैका का ऊ लैकुआ के जोन ओकर धुआ बा ही भाई बपुआ के रहल से तो जे जोन धुआ हुआ और ओकर ओब्लिगेशन हो लैकुआ में कानून निकाल दिलक बोले आज से तू कुछ नहीं होवे ओ है लैकुआ बगल बस कि काहे कोनो लै तेरे नहीं
1: दिखल
0: हाँ तो देखल यहाँ पारंट है आको रीते पारंटाल जोन रखल ओ एक्सक्लूसिव दिलक जीजुआ मावा के
1: काहे कि जब जीवोस हुएला तो एगो माँ बाप लैकुआ कहूँ रही आज मान ला पिता के संगे बा तो माँ के लैकुआ के मिले की ओके दुआ रहेला और जब लैकुआन माँ के संगे हुआन तो पिता के दुआ मिलेला जैसे कोंजे में
0: वीकेंड
1: सब कुछ रहेला कहूँ जाए के रहेला तू दूने जना के परेला सीए करे के
0: ओतो
1: हिते उधर तो पासपोर्ट परेला सीए करे के लेकिन जब अभी जैसे बोलला कि अब लैकुआ के नहीं दिखत हुआ नहीं मिलत हुआ कुछ नहीं करत हुआ तब ऑटोमेटिक माँ यहाँ पर जितना दुआ बा वो सब मावा की मिल गल यानी अब लैकुआ के लेकुल जाए के घूमे के कुछ डिसीजन रही वो खाली ओकर माँ ले
0: जरूर देखला कैसे शुरू करे सब कोई बोले माँ बाप के हक बा वो लैकुआ में अपन लैकुआ में कुछ करे के ओकर दे बहुत

0: उल्लैकवा के ओकर बाधवा कभी नहीं देखले हुआ एगो घर में कबतिया लेन सन दोनों आदमी तो एगो है सिबोस एगो बात बोलक है बपुआ है लैकवा के मामा के बात ए सिर्फ तोर लैका नहीं है हमरो लैका है ये कभी सुन ले हुआ तो सिंह कब ओतोगीते एक नाम ओतोगीते पारंताल जबकि कम क्वा जैसे आदमी बोले ना कौन ची है ओतोगीते पारंताल ये एगो मजे ओतोगीते है एगो माँ बाप दोनों आसम दोनों के संगे संगे ओकर देवो आर ओकर ओब्लिगेशन ओ लैकवा के पाछे समझ ले ना अभी कैसे तू मा जैसे बुझो है शादी कर ले हो तोहर है चार गो लैका बा चारो लैकवा में हक तोहर बा ओकरो बा है पति के मैं देख लही हाँ ऐसन काम में होल जहाँ छीन लेलक हम बोलते उदवा जोन रहल ओतोगीते पावा तलवा के लाकुर बस की बोले ये लैकवा के तोर देवो तोर ओब्लिगेशन कौन से कर ले न कभी गैले न कोई ज्वाइन कर ले न कोनो लामू माँ बहिया में मैं पूता पुस्तक में है ओकर ओतोगीते पारंताल आली अब हमने देखी रहा सा एगो ओतोगीते पारंताल एगो माँ बाप के ओकर लैका में कौन कौन चीज है
1: हाँ
0: पहला हमने देखी रहा सा ओ माँ बाप के चाहेला देखे के सिक्योरिटी ओकर लैका के आर ओकर डेवलप में पहला ओके देखी कि हमर लैका अरे एगो एगो सिक्योरिटी में बा ओकर एजुकेशन के देखे हमेशा सब कोई नहीं माँ बाप तो बोले सर नहीं हमके चाहला हमर लैका के पढ़ाई की
1: सब माँ बाप पहला यही सोचेला कि ओकर लैका जोन बा सबसे पहले ओकर पढ़ाई लिखाई पूरा हो जाए बाद में देखम सर
0: ई पहला चीज देखे लन सर ओकर एजुकेशन ओकर सिक्योरिटी अनमन के ऊ लैका कोरे के बा न कुमा जे खुशी बा एगो प्रॉब्लम हो या एगो दौजी में हो नहीं सकता जिए तो ई हमने ओकर डेवलपमेंट करे के ऊ लैकवा के ई एगो माँ बाप के एगो दुआ है एगो माँ बाप एग्जैसे करे लन सन अपन दुआ लैतेरे लैकवा के ओकर लैतेरे में नहीं कि कच कर बक मजे एगो लैतेरे कोट लही ओ लैकवा के तक मजे कोरे के नहीं बना सब चीज करे के चाहेला एगो माँ बाप के ओकर बेनिफिट के ओकर लैतेरे के ओकर लैकवा के आलो काल दे बक मैं कुछ खरीदब खरीदब या कुछ बनेब तो लैकवा के दिक्कत धो न कौन चीज करे के चाहेला कि ऊ लैकवा कुमा जे लिमन से जीही या ओकर देखभाल करब आलो तो ई हमने देखेला सबने के कानून में कुछ सिविलवा जो लिखल है बोलेला दोनों के हक थ माँ बपुआ के देखे के ओकर लैका के ओके एना ओकर दुआ है अली काल तो जनबे करेला एगो मिनी कब है एगो लैका रही ओकर माँ बाप सिंह करेला ओकर खातिन ओकर माँ बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी
1: हाँ, ओकर लिखल रही ओकर पहुंचे के रही ओकर कुछो चीज रहला सब कुछ ओकर माँ बाप सिंह करेला
0: अली तो हिया देखेला एगो लैका कब लेजिटिम रही लेजिटी मतलब है माँ बाप के अपन लड़का
1: अपन हाँ।
0: आज जोन अपन लड़का के डिक्लारे कर ले वंसन तो वो बोले रंसन बायोलॉजिकल कुमाजे वो लड़का ओकर है बस ओकर माँ से नहीं होल बार ओकर बाप तो बाप हुई है तो हिया एगो लड़का ए लेजिटिम है तो अब हमने देखे ना सा एगो है लड़का कब नेचुरल है तो हिया देख बो मेम की वो मैडमवा जियता एगो दूसर आदमी से मैं वो आदमी से शादी नहीं कर ले बा अभी तो दुनिया आजकल मॉडर्न बा आदमी तो मजा कब शादी भी नहीं करता तो दूसर संगे रहता तो जब वो लैकवा ओके कुमा जे ओकर माँ से बोझो डिक्लारी कर ले रहा बसी बपुआ बोले हमारे लैका नहीं बा हम नहीं मानते हैं सब देख सब पितारान सब पोगा में अध्ययन सब कैसे होल जला तो हियाँ बोला था वो एगो लैका नेचुरल है बपुआ डिक्लारे नहीं कर ले बा मऊआ डिक्लारे कर ले बा बपुआ नहीं रिकोनेट करता कि वो कर लैका है मैं मऊआ गल बा लेता सिविल में ओकर लाग देने सांस में बा वो लैकवा ओकर नाम में अकेले ओकर नाम में तेरे ही हमने बोला सर ई एगो लैका जो नेचुरल बा जब वो लैकवा जो नेचुरल बा जो अपने मऊए डिक्लारी कर ले बा और बपुआ नहीं है कर ले बा तो ऑथोरिटे पारंटल जो ओकर हक बा बपुआ में नहीं बा सीधा ओकर लैका है नहीं है ना वो तो डिक्लारे ही नहीं कर ले बा ओकर लैका
1: ओकर नाम तो नहीं बा ना
0: ओकर लैका जोली ओकर त नमोए नहीं बा उमे तो कैसे सकी बोले ई हमर लैका है तो वो नहीं सकी कहूं जाई ओके ओकर लाग देने सांस में देखियन से ओकर नाम
1: खाली माँ के नाम बा
0: खाली माँ के नाम तक बोले से नहीं तू तो तोर बाप तो के डिक्लारे नहीं कर ले बा तू नहीं सकबे कुछ करे तोर बपुआ तोर खड़ा रे नहीं कुछ नहीं हाँ डिक्लारे कर ले बा वो हकवा वो डिवुआ हुआ ओब्लिगेशन हुआ मऊआ के है

0: देखा ऑथोरिटी पारेंटल कैसे ही हैं ये गुलाइ का लेजिटिम बा और ये गुलाइ का होगल बा नेचुरल जो उके डिक्लारे कर ले बा वही सकी कुमाजे सब ले
1: उगर डिसीजन ले उगर डिसीजन ले रेस्पॉन्सिबल पार्टी सबर सिया ची उगर सब जितना कुछ रहे सब
0: हाँ तो ही यहाँ मेम की दोनों संगे रहत वंशन सिर्फ मावा के देवों बा उगर हक बा उले को हमें तो यहाँ ऑथोरिटी पारेंटल नहीं बा दोनों इके गो बा मावा बा बफुआ नहीं बा मेम की वो मानता उकर बाप हो मेम की कभी हाँ बायोलॉजिकल ही उकर बपुए हो डिक्लारे नहीं कर ले बा ना बपुआ
1: से होल बाकी नहीं डिक्लारे कर ले बा
0: हाँ नहीं डिक्लारे कर ले बा जिसने बोला बाप ने बोला लाख देने संस्वाम में तो उकर नाम नहीं बा एक बार बाप नहीं बोले हम नहीं एक्सेप्ट हैं ही अमर लड़का हो मेम की तो उसे शादी कर ले हाँ बस का करे कब गलता सिविल करे तो हुआ खाली मऊआ के ना मुआ बा वो डिक्लारे कर लग बपुआ नहीं डिक्लारे
1: ऐसे ऐसे मोरिस मैसन का होल बा
0: अरे बाप हम यहाँ अब ये वो प्रोग्राम साझा साझा हुआ वाला तो हमने बोला अब सब कैसे रिसेस द पैटर्निटी एक रे नाम रिसेस द पैटर्निटी कब एक बार किस बा है ला कुछ पॉइंट में हमने जे है प्रोग्राम दूसरा लाभ सा तुम दे साइड ई में आप सा रिसेस द पास कैसे एगो टेस्ट कब एगो बाप बोले ये हमर लड़का नहीं है ये दिखल गो दूसर कमी है आपसे में ये बोली हमार लड़का नहीं है तो मामा बोली तोर लड़का नहीं है हम तो बोलते हैं ये तोरे लड़का है बस की काहे हम तो जाने ला हाँ ये तो नहीं करे अरे गो माँ ही जाने ला उपमा जे ऊपर लड़का है कि नहीं तो बोली तो हमार लड़का वो बोले नहीं है मानव हम तो का करी मेम की ओकर लाग देने सांस में बाव कर न मुआ बपुआ के बोले नहीं तो मामा बोली सैप हम एगो केस दहाजका हम एगो केस मजे दलब लाकुर में हुआ रिसेस दे पाते नहीं थे देखब से कानून से मांगब हम कि ओ तो के रिकोनेट करे के ई तोर लड़का है तो ओ आई लाकुरवा में बोले बोले नहीं हम नहीं रिकोनेट करत हैं ई की हमर लड़का है ई रिसेस दे पाते नहीं थे मैं आपसा आ तो हाइप सा अभी ओ तो इते पाते नहीं में तो यहां देख ला ओ कब जब एगो कुमा जे माई मां बाप एगो लड़का के कुमा जे ओकर ऑथोरिटी है बा पारेंटल उ का करेला डिसीडे करेला उ ऑर्गेनाइजे करेला उ डिटरमिने करेला कैसे मोडालिटी ओकर से भी करी ओकर ला मतलब मेगो माँ बाप कब एगो लड़का ओकर कुमा जे मिने है उ डिसीडे करेला लैंटेरे उ लड़का के कौन कौन चीज करेगी कौन कौन चीज नहीं करेगी मैं एक बार चीज है एगो देखबा माँ बाप बोले जाने ले हम बड़ी खुशी रही तू एगो दुखतेर बनते ओकर लड़का के बोला था वो लड़का बोले जाने ले पा हम नहीं आते कैसे हाँ दुखतेर बने के बस हम तक कभी ओकर फिकिर हुए देखे ला गिर जाइला सबको ने सांस अब कैसे तू हमके बोला तू ये करे के मैं देख ला बपुआ देसी दे कर ले बा मोदालिते कौन ची करे के ओकर बेटुआ के बनाई के डॉक्टर मैं हिया तो बेटुआ बोला था नहीं
1: ओकर ओकर लाइन तेरे नहीं बाप कर
0: नहीं बा आले तो हिया बपुआ के जोन ओकर दिवार लोकर कुमा जे हक रहल वो नहीं सकक सेरवी करे उ लड़कवा में बस की एगो चीज एगो एग्जाम्पल देव एक बान ऐसे बा कि वो बोलता वो नहीं जोन बपुआ बोला था वो नहीं करी वो अपन मानियर से अपन चीज करता मिसलमा हमेशा जीज दिखेला लैतेरी लड़का के कभी गो केस आवेला वो जोन माँ बपुआ बोले बा ठीक बोले बा मैं वो लड़कवा के लैतेरी कहाँ बाई में जोन माँ बपुआ बोला था तो नहीं देखा था कब नहीं बा तो वो डिसीडे करेला जीजवा कि ऑथोरिटी पारेंटल वो आदमिया जो ओकर लड़कवा के ओके सेवेये करता ओकर लैतेरे आर ओकर एंट्रेचिया बोले को जाते ओकर खाई पी आयु के सबके
1: जितना जिम्मेदारी ओकर
0: जिम्मेदारी ओकर ले जिकाशियों के वो लड़कवा के जीज डिसीडे करेला कभी ओके सावेला लाकुर में ये देखे ला ऑथोरिटी पारेंटल समझ हमने के कॉन्सेप्शन हम माँ बाप बोले ला सर हमेशा ए तू तो तो के हम के चाहना सुन हम तोर बाप आर है माँ है सर तू नहीं तो के तो के चाहना सुने के इधर देखते है चल है ऐते रहे ला आली इधर देख ले ली सर कभी गुलाई का है कहा ऑथोरिटी पारेंटल ये गुलाई का लेजिटिम ये गुलाई का नेचुरल कौन कौन चीज कैसे हुए ला अब हमने देखा सर ऑथोरिटी पारेंटल पंदो मोयाज शादी में रल बा तू तक किसी को भी माँ हुआ है अब्बा हुआ है पति उक्तर दोनों के हक कौन सी हो उलाइकुआ में जब शादी में तारेल देखा सब डिवोर्स में और कैसे हो तो देख लीजिए कोई तारेल वाला डिवोर्स में मैं वहाँ देखता है हिया बोले ला जब एगो माँ बाप शादी कर ले हो वंशन पंदो मोयाज

0: के धोआ बा देवा बा उल्लैक्वा के देखे के और एक जैसे करे के दोनों संगे
1: हाँ
0: ओकर कौन ची करी लैक्वा
1: दोनों जो हम सा लैक्वा के जितना ओकर ओकर खाए पिए के घूमे फिरे के लेकुल के ओकर सब कोई के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हाँ लैक्वा के
0: हाँ
1: माँ बाप दोनों उठावे
0: हाँ एक अब शादी कर ले हो अनसन दोनों हाँ। एक बार तो दिख लो है बाप बोले बोले तू का जाने ले माँ के बोले तू कुछ नहीं जाने जो तू तो बोले तू हमके देखो था नहीं ठीक बा कुमार जी सबसे जाने ला सभी चीज तो ओकर कुमार जी हिया हई माँ के कुमार जी कोट नहीं लेता मैं कानून जो बा वो तो हुई पहाताल जब शादी कर ले बा एगो खूब शादी में वो लैकवा पैदा होल बा शादी में अभी सिपाही नहीं होन सर दोनों के हक बा कौन ची करे के ओके मिशवा सकी देखे कि जोन मदमुआ बोला था कोरे के नहीं बा मैं ओकरो बा एगो लुपिनियो कि सकी वॉइस करे सकी बोले कि जे जोन तू बोला था वो नहीं अच्छा बा पस हम देखते हैं मर लैका ऐसे बा हम जानी ला लैकवा एक बान चीज का पहुँचे करी मैं कानून बोले ला एक बान है देख बा जोन आवेला शादी कर लेला बपुए से तू आके बोले ला वो मजा उदे सीधे करी
1: हाँ.
0: बोले तू का जाने ले हम देसी दे कर
1: बोले सर मैन ऑफ द हाउस
0: हाँ मैन ऑफ द हाउस या कुछ भी हुई भैया मैं अभी कोनो तो बोला खंबा घर के पति है ना तो ये सब हम या बाप हुई या कुछ हुई मैं सेलमा हमने के उतो हुई थी पागताल दोनों के हकवा बा वो कुछ सकी बोला था अभी डिसीजन देख सर मैं ओकरो एगो धोआ बा ओकर लोपिनियो दे के कौन सी ठीक बा कि नहीं बा ये ओकर माँ के भी है आर कब देखब त लिमन से एगो माँ कह सब पहले नियर हमने के कब कब हम नहीं रही सब माँ बाप साइट नहीं लिकोल घर अलंसन सिपा कुछ तो हाँ तो सकेल हमर है बपवास तनी जस्ती माले रहे
1: हाँ।
0: जी काशो में बोला हाँ,
1: हाँ,
0: हाँ। मऊआ से तो सकी
1: आगे तो महिला लोग के लिकोल नहीं जाता जना ढेर पढ़ाई लिखाई नहीं करते ला तो लोग के काम रहल घर पे रह के लड़का लोग के देखे के खियाए के पकाए के नितवायु करे के लेकिन अभी के महिला तो कंधा से कंधा मिलाकर सब कोई काम करता था
0: पति के सेवा करे के
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: अभी तो अवसर नहीं बाले
1: अभी नहीं
0: इससे मैं एगो एगो चीज है एगो अच्छा है हम नहीं बोल अभी इक्वल बा
1: हाँ
0: मिशे हो मैडम हो ओकर दुआ बराबर हक बराबर अरे वो सब नहीं आप मैं हिया देख लो कब शादी हो एगो माँ मेम की पढ़ल बा या पढ़ल नहीं बा मैं अभी तो सभी कोई पढ़ल बा तो ओके देख बा वो धोआ बा ओके बा कौन सी बोले के पौधा सदिया में जब शादी में अरे ये तो देख ली सर अभी को पति पत्नी होवन सन मामा पापा होवन सन अब वो लोग जीवोसे कर होवन सन जीवोसे हो गल कौन ओकर धोआ बा उल्लै कुआ में अरे तरीलवा देख ली सर जहाँ एगो है पत्नी एगो केस कर ले रहा लाकू में जैसे बोली ना कब जीवोश हो गल यही जीवोश में बात करब सर हो गल वो कभी अपन लड़का के कुमा जे लेते हुए नहीं रहल तो जीजुआ बोले हाँ आज से तू एगो मदमो एगो केस कर ले वो तो हुई थे पागताल बोले खाली ओकरे दे के मदमोए के ओकर बपुआ के ओकर पति आज तब पति तब नहीं रहल तब जीवोश हो गल तब बोला था कि कम को हमके दे तो के कानून बोले हाँ ऐतेल खुते बा लालुआ में बा कब अप्लाई कर लब तो बोले हाँ साचिस में गई कि ई मिशेवा के अब उल्लै कुआ में कोनो हक नहीं बा ई दिख ले रही जीवोसुआ में अभी दिख रहा सगो जेनेगाल एगो जेनेगाल जब एगो कुमा जे माँ बाप बा दोनों जीवो से होल बा या सिपाही जिको एगो प्रोग्राम भी आनब सामने सिपाशो जिको हमेशा देख बद तीन कार आदमी बतिया ल जीवोश के विषय में
1: हाँ।
0: बोले हम तो सिपा रहे हमर भाई से हई बस हम जीवोशे हो गल नहीं हाँ एगो दूसरा एगो बड़का जी फेमस बा सिपाहियों जी को पति पत्नी सिपारे रहता मेम घरवा में नहीं रहल बा मैं सदिया ही बा
1: अच्छा
0: ये भी है
1: हाँ।
0: एक बार आदमी मतलब वो खाली दंडित मो काम नहीं बोले खोजाते हैं एक बार तो छोड़ के चल दला बोले तुर से हम सब नहीं दिक्कत नहीं सकब जिए हम जाते हैं सिपारे रहे मैं सदिया नहीं जी वो से कर ले बा सदिया टूटल नहीं बा
1: हाँ।
0: खाली सिपारे बा वो एक दूसरा है हम नियानब सर
1: सिपारे वो होगा तो उकरो में भी जो माँ बाप पा अभी ले दोनों के पूरा हक बा बस की जब जीवो से वे हो जालन जा तब जैसे बोलनी कि माँ बाप के दोनों के हक रहला लड़का पे तो यहाँ पर तो खाली सिपारे हो गल तो यानी कि जो भी लड़का के फैसला रही मैं सिर्फ एक बात बताओ अब लड़का जो बा अपन माँ के संगे बा न तो ज्यादातर डिसीजन जो है

0: कमाल मिला ना।
1: अब
0: पिता के संगे रही तो ज्यादातर डिसीजन पिता वो अपन बगल से ले। तो एकर में कभी हो ना कि जैसे कि माँ बाप को मामा एगो फैसला लेलक लड़का ओकर संगे बा तो पिता जो बा ऑब्जेक्टिव होल या तो फिर पिता एगो डिसीजन लेलक और माँ ऑब्जेक्टिव होल।
1: हाँ एगो जोली है प्रश्न बोल रहा है मैं एगो चीज है हमेशा लड़का जोन संगे रहेला माँ संगे रही तो जो मामा बोली वही सुने पकड़े पहला चीज बोली तू तो हमार बाप हुए कौन ढैले तेरे हमके बतैले हुए तू हमके खुशी हुए या हमर कुमा जे तू हमर लिए कुछ कर ले हुए हमके तो तेरे से नहीं रह जी तू हमार माँ सब चीज कर ले बा वो मन ले बा खाई के पिए के यारे जीवोस्वामी आई सन यही में भी सब बोलती सन नहीं।
0: हाँ।
1: तो देख यहाँ तक जीवो से हो गल बा ओकर संगे लड़का सिपाही हुआ था। हाँ हिया उतोते पारंताल मेम के जीवो से हो गल बा राइट कब जीवोश हो गल बा लाकू दे दे बा आज से पति पत्नी नहीं हो सन जीवोश फिनाल हो गल बा तो हिया लाकूर में कब किसुआ आवे तो माँ तब पूछी कर ले हुई बपुआ के तो बोली ना हाँ जीवोश करते हुए हम आर तू भी तो के चाहे ला हर महीना के ओकर प्रणतवा में मांगे ला ओकर आप वो ड्राफ्टे करू देवे ला में बोले ला हम चाहत है ये लड़कवा के जो तोर लड़का है एगो पोंछों आली माते मतलब एगो पोंछों कर खाई पियाई के तो के दे के चाहे ला। हाँ तो कर लड़का है तो हिया मेम के जीवोश से होल बा ओकर बपुआ नहीं रहता संगे जीवोश बा सदिया नहीं बा अब कुमार जो उमे मेकअप कानून बोले कि तोरा चाहे ला है लड़कुआ के ओकर देखभाल करे के ओकर खाई पियाई के एगो पोंछों दे के पोंछों ही एगो पैसा है ओकर लिजिकाशियों के ओकर खाई पिए के ओकर कपड़ा उदे ओकर बियानित के सब चीज के कुमार जे चाहे ला दे के आर बोली ऐतिल मिला गद दे फवा जे के दे के कुमा जे मवा के लागत बा बस उकर संगीत लैकवा बा तब न कुमा जे हई बपुआ उके दे के चला त हिया देखल मेम कि कुमा जे दोनों कुमा जे हई बा एगो हई अभी जीवो से हो गल बा बपुआ के उतो हई बा कि चाहेला उ लैकवा के दे के एगो पोंछो तरे लो एगो चीज बोलल हिया शादी करलन सन जीवो से हो गलन सन अब ऐसा का में बपुआ के तक कुमा जे हग बा उ लैकुआ में की जीवोज बा अब एगो अब ओके मन बा मऊआ के सिबोजो जाए के नंगले तेर एगो पासपो निकाले के।
0: हाँ
1: अब कुमा जे एगो पासपो निकाले के नहीं मऊआ अकेले मेम के ओके लागदुआ मिलल बा बिना ऑटोरिजेशन बपुआ के सियाचिया के पासपोवा में नहीं सकेले के लैकुआ है जाए के पहला तो है ये पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जैसे ऑफिस बोलेला वही तक कब ओके फॉर्मा रंपली करब तो बोलिए अरे उकर बाप से तो हाँ जीवो से मजे तो हो गल मैं उसकर बाप है उकर दुआ बा इ लैकवा एगो मिने रह जे माजे रह तो वो तो अपने पासपोर्ट अपने निकाल देत तो हियाँ देख ल मेम की कुमा जे हियाँ गो का जीवोश बा ओकर ओब्लिगेशन बा मऊआ के ओकर बाप के जोन रहल शादी कर ले रहो कर से ओकर लड़का का ओकर पासपोर्ट ओकर सियाचिया चाहे ला तब एगो पासपोर्ट ओके मिली तो हियाँ देखे ला जब कुमा जे माँ और बपुआ जोन हुआ रही तो ओके चाहे ला देखे के ओकर लड़का कौन ची कर था ओकर लड़का की देखभाल सावेज ई कभी देखब त लिमन से नहीं सकब कुमा जे कब शादी कर ले लो हाँ बुढ़िया से तो ओके कुमा जे बुला जे बचल गल बा मे ई ओक तोहर गासिन है उ लैकवा त चाहेला ओके असम दोनों माँ और बाप देखे के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के उ लेग्जेसिस जो हम नहीं बोले सा वो तो हुईते मजे पाताल एगो चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है देख ल आज एक बार आदमी शादी कर ले बा सोचता अरे हम तो शादी में हई मैं सिपारे हई।
0: हाँ
1: हम सिपारे ओकर से तो हाँ एक बगल हई तब तो सदिया तो नहीं फिनिवल बा याद करे ओकर नाम सिपारे खाली उस दूसर साइड हई घर में रहता ई दूसर घर वा में रहता मैं सदिया तो ही है बा बपुआ के या मऊआ के है बाप के बोते बोले मऊ के बोले थे मैम साफिर ओकर धक बा उ लैकवा में तब ले कानून नहीं छीन ली ऊ है नहीं छीने वो निकाल दे कुमाजे है ऊ तो गीते पाख तलवा हऊ लई कुआ के कुमाजे बगल से हाँ तब बपुआ कुमाजे कुछ नहीं सकी करे मेम

0: की जाना था कि ये हमारे लड़का
1: एगो और सवाल बा
0: हाँ, बोले
1: मान ला कि एगो एगो जो पति पत्नी हम वंशा जीवोसे उगल वंशा लड़का जो बा अपन पिता के ही यहाँ बा
0: हाँ।
1: अब माँ शादी नहीं कर ले बा लेकिन पिता शादी कर ले बा दूसर एगो आंद ले हम पत्नी तो जैसे बोला था कि हई दू गो जो तीन गो या चार गो या कितनों लड़का रही या एगो लड़का रही मान ला हो लड़कवा जो बा अपन पिता के संगे रहता तो शादी के बाद जो रेस्पॉन्सिबल रहन से वो अभिले और पिता के और हाउ जो माँ जन्म दिले बा लोग के बीच में रहला और है जो शादी करके नया नया आलवन का ओकर हक रहला लड़कवा पे
0: अरे पहला चीज है जो पहला शादी कर ले रहल से बोसो पतिया आय तो पतिया कब शादी कर ले रहल ओकर रिलेशन बा ओकर लड़कवा से बस ओकर देवा ओकर लड़का है। दूसरा चीज ई बोली मेम की जीवोस हो गल बा बपुआ आर है मऊआ अन मन ओकर हक बा उ लैकवा में टबलेट माजे नहीं हुई समझ लो ना तो उषा भेजा बपुआ मेम की मऊआ से पारे हो गल सन लीगल में जीवो सो हो गल बा मऊआ के लैका हो मऊआ के नाम में दिखलारे कर लेबा हाँ बपुआ दिखलारे कर लेबा ओकर नाम में टबलेट उ लैकवा जिसविता नहीं हुई ओकर माँ बपुआ नहीं सकी करे के कुछ करे के काल एगो चीज माँ जो कर लैती गई उ लैकवा के जो उ है बा तो ओके मन बा कुमार ऐची दे करे के कुछ बपुआ के चायला पूछे के है मऊआ से कि देख ई लैकवा के ऐतिल ऐतिल का जिस नहीं बोली पसपुआ चाही तो यहाँ तो मैम की जीवो से हो गल बा मैं लैकवा ते गुमिने बा वहाँ तो को अभी सदी ओकर माँ दिखला रही कर ले बा ओकर लाग देने सांस में बा तब जाई पासपोर्ट एंड ऑफिस में मांगे पासपोर्ट तो वहाँ देख बा फोमा में दूरों के जाना भरे की दूनों के नहीं कि बपुआ उठा के लैकवा से बोलो दूसर लगल बिना परमिशन है के
1: यानी को जो नया पत्नी बा ओ नहीं घुसे रह कर
0: में अब यही में हां अब ओ नया पत्नियां जो शादी कर ले बा कुछ नहीं बा ओ कर दुआ उ लैकवा में बस ही वो कर लैका ही नहीं हो समझ ले कैसे माफ करियो तोहर लैका बा हम तो मजे इतना से हैं कौन दुआ बा हम हम के तोहर लैका में कुछ नहीं बा तो ऐसने मैम की उपतिया शादी कर ले बा एगो दूसर मैडम से अब वो हो गल बा ओकर मैडम में कभी नहीं ओकर गाँव प्लासे सकी हुई ना अपन मऊआस के नियर तो ओकर हक कानूनों के कुछ नहीं देवेला कही कुमा जे है ओकर
1: डिसीजन
0: डिसीजन लेके या फैसला जैसे बोले थो लेके उ लैकवा के बस की उ लैका ओकर लैका नहीं है जब लैका ओकर नहीं है तो कुछ नहीं सकी करे और मजे काल सकी अभी आजकल के लैका ऐसे रह सकी बोली हाँ वो तो हमारे बाप के मजे तू शादी कर ले हुए मैं हमार माँ तो तू नहीं हुए ना तो फिर नहीं देख ला ही ओकर मजे खेल मजे है हो जाला मैं एक बार तब कोट ले हुए तब हम सब नहीं दिखी ला सर आले हियाँ हमने दिखी ला सर अब एगो माँ वो तो हुई थे पारंताल में एगो माँ बाप के कुमा जे ओकर है देवो है कि ओकर लैका के चाहेला ओकर सिक्योरिटी देखे के ओकर लाशांते देखे के कि एगो दौजे में नहीं बा और उ लैकवा के चाहेला जन्मा के बड़ा करत एगो मोगालिते में एगो चीज ओके सिखावा कैसे कुमा जेल अरे माँ बाप लोग नहीं बोले जान रे बेटा सीबा बेटी नहीं जो पूजा कर ऐसे करो एगो मोगाल कुमा जे एगो बनाई अपन लड़का के कैसे कुमा जे है जिए के कैसे गांजे करे के है बड़ा करे के तो उम्मीद देख ओकर ओकर दुआ है। अब एगो बाप सिपोजो या एगो माँ वो को डाने हो गल बा एगो मूवी ट्रीटमेंट उ लैकवा में कौन डाने होल बा अरे तरलुआ बोली ना पहला शुरू कि ऊ बपुआ एक छटकन मरलक भाई छोकड़वा के अब छोकड़वा चल गल ला पुलिस के देखे तो ला पुलिस देख लगे केस करलक अब बपुआ के मजे एगो लामान मिलोल एक नमक कौ डाने तब हियाँ देखलक अब ऊ कौ डाने हो गल मुवेज थ्रेटमा के तकल जाए जे मऊआ ओके नहीं चाहता कि फिर से ओकर लड़का एगो विक्षिम बने तकी मांगे जैसे वो तो वही थे पाता लाकू के कि देख हम लैका हम अपन से देख कब लाकू भी सब सब देखी तो ओके सकी निकाल दी ओकर लैकवा ओके नहीं दे हियाँ हमने के देखी ला सर हर बाप हर माँ चाहे ला वो तो वही थे पाताल में नहीं एगो चीज करे के कि एगो क्रीम करे के कि कौन डाने हुई अपन लैका एगो जमाना रहा जब गांव में रही बा एगो बाप बलाकार कर दे ओकर बेटी से बाप बपुआ के सकते मुआ नहीं।

0: एगो चीज अच्छे चीज है हमारे लिए पूछबत एगो बाप के नहीं चाहेगा ऐसे करे के मेरे बाईसन का वो बोले हम एक पुतक को मजा पैदा कर ले हैं लड़का के वो पैदा कर ले तो हमारे मजा हक बाकर में मेरे बाप के हक नहीं बा कि ओकर बेटी से बलात्कार करे के ओकर बेटी की सेरवी करे के एगो दिली है एगो से ही है ऐसा ऐसा का रहल पहले रहल अभी अभी तक मज अभी बा में बा बा न ये है
1: आप जन बाप तक लाकुर में रहला आप जन बा
0: हाँ है अखबार में नहीं तो जाने हमें स्वीप कर लिया सा कभी हमके तो कोई शो कुछ नहीं हुई तो हम साकी जाकर बैठा नहीं लकुरवा में सुनत एगो ऐसा एगो का कब अलबा पसी काहे हर समय के आँचे जुन जुन केस आई लाकुर में तोहरा जान जाइब तो खाली तुहरा देख के पढ़ के जाना कौन काल देख के जाए को जत या नहीं जाइब या पढ़ ले होइब तो एगो बाप जहाँ एगो बलात्कार कर दिल हो अपने लड़का से तो उल बपुआ के कभी ओके उतोगी ते पाहताल नहीं मिली ओके तो आपो से ही नहीं होई सकी लड़कुआ के एगो सेतेन जिस्तवा के आर ओकर लड़कुआ हमेशा आई करी हेठ करी अपन बाप के कैसे जैसे बड़ा होते जाए रही बस वो जाने ला कौन सुफे अरे सबसे मूवी चीज कि कुमा जी बा हमने के क्रिम के कुमा जी क्राइम बोले को जता हमने के पुस्तक में लिखल बा तो देख लो हियाँ हर एगो है बाप जहाँ ओकर एगो कुमा जी मोचिव घाव बा कुछ जिस्टिफिए करेला कि ऊ लैकुआ के कुमा जी निकाले के ओकर माँ बाप संगे तो ये देख बसन कौवा में लैकुआ कुमा जी हमेशा पास मिजर वेला और ओके ओतोगी पाहताल नहीं मिलेला पूछो आदमी बोलेला ये हमार लड़का है हम करब जैसे हमके खुशी रही हम सब पकड़ के मारे पहले को जमाना अभी तो लड़का बा है के कुमा जी
1: देख अभी तो नहीं सकवा लड़का लोग के मारे
0: हाँ ही बोलते ना हाँ हाँ तो पहले तो मार कभी एगो चीज मारे के विषय में जाने ना एगो लड़का के सगब मारे कोईजे करे ओके कोईजे करे के या के बोले के कि ये देख कैसे करते हुए नहीं जमा दो तीन थप्पड़ तो कुमा जी मारे ला हाँ मारे के ऐसन एगो ओके कोईजे करे के मैं नहीं मारा कि खून निकाल या कुमा जी वो चीज नहीं करे के चाहे ला एक्सेस कुमा जी है एगो है एगो चीज करब तो हमें सब चीज तो लाकुर वो भी कौदा नहीं करे ला आलो तो ये एगो चीज मेय चीज है मार नहीं बैठ के बतिया एगो कुमा जी कैसे ओकर संगे जिए के
1: चाहे हाँ लेकिन जब एगो लड़का जब एगो कैसा सेजा हो ऐसा निकाल से बतिया के तरी मुश्किल हो जा रहा लेकिन तरी पैसे रिबेल हो जा रहा सा
0: नहीं कभी अपने हाथ है छोड़ दे रहा सा माँ बकवा में ये खूब बोल रहा है
1: आजकल के लड़का लोग तो अपन माँ बाप के
0: कैसे गदाने लंसन नहीं
1: हाँ और नाम से बुलावे लंसा
0: हाँ हाँ सिल्मा वो जाने ला का है एगो एगो एगो चीज है लाफोंस में कब पहला शुरू हो रहा मॉरिशस हुए में भी तो देखब आदमी बोले अपन बाप के ऊ बोले अंको ऊ पे आले
1: हाँ
0: तो हाँ, हाँ, हाँ. अब का बोलन सन अंको तो पे आले
1: हाँ
0: तो एगो चितवाये है तो चितवाये के मजे बोलन सन जोन एगो आदमी भीरी बा अरे तो पत्नी में घरवा में अपने पति के बोलेला अंको तो पे आले
1: हाँ.
0: तो आ तो पे आले तो ऊ तो बड़ा हुआ था
1: तो सुन के बड़ा हुआ था
0: हाँ, तो कौन सी बोली हूँ वो बोले खुद तो प्याले
1: हाँ
0: वो बोली कुमार जी
1: हमने के हमने हमने के सिखावल कर रहल कि जब हमने छोटा रहली सा कि हमने रे जे बड़ा होन सा माता पिता दादा दादी चाचा चाची सब कोई के जब बतिया था आप बोले के तू नहीं बोले के
0: हाँ ये एगो दूसरा चीज बड़ा चीज पहले रहल जने बड़ा आदमी के कब देखब मौसी हुई दादी हुई या कोई भी भाई हुई पहला चीज ओकर पाँव गिरत रही सा
1: हाँ
0: प्रणाम है ए तेल सिपाही तेल चाची कैसे हो ठीक हो न गोड़ में गिर के आशीर्वाद ले हुआ अब कहाँ दू लाजू में चुमा ले बल्लता एगो एगो एगो मानियर कैसे सोसिएते मजे है ये बोलिए हो गल कैसे सांस बोल नहीं तब देख ही कर बते तनी अच्छे ही बा मैं नहीं कि मारो पीटो
1: लेकिन ये से तो शुरू हुए ना कि बचपन से जब लड़का के आप सिखावत हो उनको अब बोलत हो कि बड़ा लोग की इज्जत चाहना करे के चाहना आप बोले के तू नहीं बोले के
0: मोगालिते थे
1: इज्जत दे के तभी जाके तोहर इज्जत बढ़ेला जैसे हमने के गुरु जी हवन हमने के प्रोफेसर लोग हवन जाके से जब बतियाए ला जा तो हमने आप करके बतियाए ला जा तो हम यही बोलब कि चाहे ला लड़का लोग की बचपन से सब सिखाए के तभी जाके बड़ा होके लैकवन जो भवन सा वो तनिक इज्जत करिय सा और एक पुलिस बुलाए के नहीं पड़ी काहे कि जब माँ बाप कुछ बोल दे तो अभी बोल ले ना।

0: कि लड़का लोग तो ला पुलिस के बुला देवत हो जा, केस कर देवत हो जा, ये तबे होला जब लड़का अपन माँ बाप के प्रति इज्जत नहीं रहेला ना, तो इज्जत चाहना सिखाए कि तभी ना लड़कवन के जब कुछ छोटा रहे आंसर कुछ डांट देबा कुछ बोल देबा तो कम से कम लड़कवा सीखी और ऐसा केस नहीं हो जब एगो लड़का के पड़ी अपन माँ बाप के ला पुलिस डाले के।
1: खूब बोला, आज जैसे तू अपन लड़का के सिखेबा वही सीखी
0: बस की अपनो लड़का के वही सिखाई।
1: हाँ वही अपनो लड़का के मजा। अरे देखा पहले हमने के है माँ बाप का करे जाए के कहूँ लेकुल जाइब या कुछ या मजा खाई के गाड़ी बोले जो गोड़ लग के आओ भगवान के कुमा जे है तब आइए तब बैठ के खाइए। अरे तो उ जाए लेकुलो अपन भगवान के आगे कुमा जे झुकी तो कुमा जे है तब वहाँ से अपन जाए। मैं आजकल के कहाँ बा भाई माओ बपुआ नहीं इसलिए कहता। दूसरा चीज देखबा अभी है हमने के सोसाइटी जहाँ ही अबा अभी एक बार माँ बाप का करे पहले अपन लड़का के ले जाए सिवाला में। बोले आज बड़का पूजा हुआ था चल चल चल। बोले नहीं हम के ले सो भाई या ले कोल। बोले नहीं आओ तू भगवान के नाम सुनिए। अभी खाली देखियो एगो सिवाला में या एगो जहाँ पूजा हुआ था कितना लड़का नहीं बा आर के बा एगो माँ बाप जोन चीज सिखावेला ओकर लड़का के ओकर लड़का उही स्वीप कर ले जाला। आली ई त हमनी देख लेला सर अभी हमनी देख लेला सर एगो लड़का ओकर ओतोविते पारंताल कौन चीज है एगो लड़का जोन अबंडोने हो गेल बा। ये भी हम के सोसाइटी में बा एक बार लड़का के माँ बाप कोते ही नहीं ले ले बा नहीं बताए कि पैदा होल बा सीमा में वो लड़का नहीं वो दूसर के बात के है। मैं ही यहाँ अपने लड़का के एगो है बा नहीं कोट नहीं ले होता अभी तो देखब शेल्टर में कितना लड़का बा हुआ लड़का बा माँ बापा जे लिमन रह जानत अपन लड़का के देखे ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जानत तक आज तो शेल्टर में नहीं रहना दूसर जगह वो लड़का का बड़ा हुई तो कौन माँ बापुआ के कुमा जे ओकर गदानी बस वो तो कुमा जे माँ बापुआ के प्यार मोहब्बत तो कभी मिले ही नहीं बा। तो ऐसन ऐसन कौवा में हमने देखिला सर वो लड़का जोन अबंडोने हो गल बा एगो लंबा पेयोद के तो वो लड़का के ओकर है प्यार मोहब्बत जोन ओकर माँ बाप के चाहत तो वो लोग कुमा जे वो लोग नहीं है कुछ है करी ओकर लड़का के कब जाए ओकर ओटोईते पाताल में जो हुआ शेल्टर में बा हर डिसीजन जो ले के बा के ले होता
0: ओकर जो गार्डियन हुआ
1: है का या गार्डियन नहीं था जो हुआ बा वो शेल्टर हुआ में गो बोली के वो हुआ ले होता
0: लड़कवन के गार्डियन वही वही रहे
1: वही अब वो ले हुआ था डिसीजन ले हुआ था इमें कौन सी है कौन सी करे यहाँ तो कर्मा बाप बा आली एक बार कोई देखब ओकर लड़का अबंडोने हो जाला जब कुमा जे वियोलेंस सर्वी कर ले बा कुमा जे वियोलेंस फिजिक साइकोलॉजिक सेक्सुअल ये सब सब कब होवेला खाई पियाई के नहीं दे ले बा अंतरिक्षण नहीं कर ले बा ओकर लेजिकाशों के नहीं दे ले बा ओकर मोरालिटी के नहीं देख ले बा कुछ नहीं देख ले बा उ लड़का के तो उ लड़का कब देखब बड़ा हुई तो उ लड़का एगो इतरांजे ही नियर कुमा जे रही पहिया बपुआ के कुछ करी बपुआ या मऊआ हल्ला करी कुछ बोली लिस तुमा बात मार के बताई कि देख तू तो हमार लड़का आवे बपुआ बोली आज तक हम तुके कुछ ही नहीं जानी ला तो कि हम को नीति ही नहीं करी ला तो बोले कैसे तो बोले कहाँ हम जीते ले हई कहाँ के हम के पूछ ले बा हम घर में रही तो बोले हम तो शेल्टर में हुआ रही
0: तो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बा लड़का के माँ बाप नहीं आवे लॉकर में आज अबोधे नहीं कर देला लड़का के वो शेल्टर में चल गल तो कर जे उकर गार्डियन रहेला
1: हाँ।
0: जो लोग के देखेला वो शेल्टरवा में
1: हाँ।
0: सब जितना फैसला बा वो लोग लेवेला
1: देख ला हिया यही बोला जला उतुईते पागों ताल एगो माँ बाप के हक बा उकर लड़का के जब उकर लड़का के अबोधे कर दिले बा तो वो देखे बा ओकर खकुआ उमें कम हो जाला तो आज देखिला सर अब हमने एगो है आदमी मन बा ओके मांगे के एगो कुमा जे आक्षों और दिशाओं जैसे हमने जैसे बोलेला तो उस सकी एगो आक्षों आने लाकुर में जैसे पहला चीज हुआ हमने देख ले से मदम हुआ मांगे कि देखा ये बपुआ के कुमा जे अब ओकर देव नहीं बा कुमा जे हम बोते पस की कोनो कोट नहीं लेवेला मांग कर थे स कि ओके निकाले के लेकुआ बा माँ बाप

0: Dounon. Nan man wan enterese ba, nan bop wan enterese kar ba, otorite parental servi kare ke o kar hay lay kwa me. Hmm. Ke servi kare? Ter lo ou ta shelter meral teral. Ekre nam ha, ou lay kwa, se ki ego troisième personne. Ni troisième personne ma hindi ma bout pou li wa mene wata. Ego tisra admi, joun ham ni boli la sa. Ego chiter. Ego chiter sa ke la ego famiye me bi hoye ego admi. Ya ego ego dousar admi. Joun okar hay deki. Okar hay dek balde par responsabilite deki. Ou sa ki kouma je man kare la kou ke. Ki I bapwa ke arma wa ke nai. Kouma je ham ke da. Na kouro ou me minister publik ou sa ba we la. Ego posedji ha. Chiter de kap se gedin kese we la. A chiter, chitel. Te houma kara we la. Ou responsabilite ou lay kwa ke. Kuma jia mang kare.
1: La kuwa me jake kisi.
0: La kuwa ki haan.
1: Bachan ne velansa ki ham lekwa ki dikha.
0: Haan. Ek baan hai bhi ba. Dadi nahi kuma jia. Mausiu sa bhi hoi dadi yo bhi ba. Mausiu sa bole la. Kavulo khara rehen. Ego mam de fami jisa mne basa. Sakhi go chite bane. Ta ho dekba huma bole jake. Oke hai lekwa ke. Okar dek bhal kare ke. Okar responsabilite. Ab ham le. नहीं कि उकर माँ बाप उसको माँ बाप अब उधर नहीं कर दे
1: अबे गो माँ बाप जोन बा वो लोग गरीब हो वंश है गो लड़का के नहीं सकते वंश पोसे पहले से लोग के दो दिन गो लड़का बा अबे गो लड़का हो गल बा तब मान ला एको ऐसा परिवार जिकर लड़का नहीं बा वो लड़का के आदुप्ति कर ले ला तो जोन समय वो लड़का के आदुप्ति कर ले ला तो जोन बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो वंश जैसे बोला जन्म दे ले बा वो लोग के हक हो वो लड़का पर कि सिर्फ जोन आदुप्ति कर ले वन वो लोग के हक रहे ला
0: जब कुमार आदुप्शन में भी आप सब कोनो बा अडॉप्शन सें अडॉप्शन प्लेनेयर जब एगो कुमा जे है आदमी कुमा जे जोन के लड़का नहीं रहल अब वो मांग करलक उ जाके एगो है हो गल कुमा जे ओके अडॉप्ट कर देलक जब अडॉप्ट कर देलक बा उ लड़का के ओकर हक बा उ लड़का में मेम के ओकर बायोलॉजिकल मम एंड डैड बा उ लोग के हक नहीं बा लड़का में
1: यानी कि जन्म सकेला देले हुआ
0: हाँ।
1: लेकिन एक बार लड़का के आदुप्ते करल गलबा लड़का आदुप्ते हो गलबा दूसरे को फामी से हाँ। यानी कि जब वो आदुप्ते करत वन से तो वो लोग बोलत वन से वो लोग लड़का के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवत वन से ओकर खाए के पिए के कपड़ा के घूमे के ओकर ले जिकाशों के सब कुछ वो लोग देवता
0: हाँ
1: यानी कि अब जोन बा हो जोन माँ बाप पैदा कर ले हो मन जा वो लोग के एक को हक नहीं है जे आदुप्ते कर ले बा खाली वो लोग के हक है वो लड़का पर जितना डिसीजन लियन जा वो लोग लियन जा
0: अरे एगो चीज बोल दे नहीं तो
1: हाँ जाए से आगे अभी देख समय में देखते
0: हैं मैं एगो देख सब चीज यहाँ लड़का के है मिलल बा जो नवा मवा बा मैं हर चीज जमीन से विषय जीबीए लड़का के हक बा ओकर हो पहला जो बायोलॉजिकल मोमेंट डाल रहा है
1: बहुत खूब बहुत बढ़िया तो हमने के जो कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त हो जाता आज हमने देख लीजा माँ बाप के अपन लड़का के प्रति कौन अधिकार रहेला और हमने के संगे हमने के वकील कपिल देव रघुनंदन जी हमने के संगे हवन ये कार्यक्रम के लिए हमने के इतना कुछ बताए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद वकील जी
0: ठीक ठीक
1: तो चल एक साथ हमने के आज के जो कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुआ था हमने के पूरी टीम की तरफ से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शुभ दिन
0: नमस्ते

0: तथा टैक्स से जुड़ी धोखाधड़ी से सीमाओं की बेहतर सुरक्षा करना। आईएमएफ का मानना है कि मॉरिशस का कस्टम्स विभाग पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उनकी सिफारिशों से इनकी कार्य कुशलता और सेवा की गुणवत्ता में अधिक सुधार होने की उम्मीद है। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि किसी पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत पर तेजी से पूरी स्वतंत्रता के साथ और ठोस सबूतों के साथ कार्रवाई हो। आईपीसीसी यानी कि इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन ने नए अध्यक्ष सतीश फुगु के सामने ये एक मुख्य चुनौती है। पूर्व अटॉर्नी जनरल और पूर्व मंत्री रह चुके सतीश फुगु ने इस सप्ताह 4 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली। आईपीसीसी मुख्य रूप से पुलिस बर्बरता, अधिकार के दुरुपयोग और हिरासत में होने वाली मौतों के आरोपों की जांच करता है। हालांकि कुछ जांचों को पूरा होने में कई साल लग चुके हैं, ऐसे में मामलों के निपटारे में तो तेजी कैसे लाए जाए, शिकायतकर्ताओं को बेहतर जानकारी कैसे दी जाए और जनता का भरोसा फिर से कैसे कायम किया जाए, सतीश फुगु आज सुबह लिंटरव्यू डे ला मैटिनल कार्यक्रम में हमारे सहयोगी एड्रियन वालिया के मेहमान थे। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर के पूर्व मंत्री दीपक बालगोबिन के बारे में, जहां पर फोन टैपिंग जांच के सिलसिले में उन्हें समन भेजा गया है। याद दिला दें कि इस मामले में सीसीआईडी की काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख और पूर्व एसीपी लील राम दियाला को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। सीसीआईडी का आरोप है कि लील राम दियाला ने प्रेस्ट सोल ब्रांड के एक लिसनिंग टैपिंग डिवाइस का एक्सेस कोड देने से इंकार कर दिया था। आशंका है कि इस उपकरण का इस्तेमाल बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था, जिसके कुछ अंश मुस्तास लीक्स नाम के कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग के सामने आए हैं। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि भारत में मानसून की भारी बारिश जारी है। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं। शुक्रवार को राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। शुक्रवार को 54 जिलों में बारिश का अलर्ट है। असम में बाढ़ से 6.53 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर F3 एवेन्यू कार्डिनल सिटी बुसेजू 4 बोन में, नंबर F3 एवेन्यू कार्डिनल सिटी बुसेजू 4 बोन में 84 साल की 84 years old की श्रीमती कुंती रामसन, श्रीमती कुंती रामसन पैदाइशी नाम सुबनोत और जिन्हें सब लोग प्रभा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर नंबर F3 एवेन्यू कार्डिनल सिटी बुसेजू 4 बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कुडेगा के श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल बैलेंस सुरीनाम में, रॉयल बैलेंस सुरीनाम में 79 साल की 79 years old की श्रीमती सावित्री राम तोहल, श्रीमती सावित्री राम तोहल पैदाइशी नाम सिरतन और जिन्हें सब लोग साबित के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर रॉयल बैलेंस सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। ऐसे भी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 10:05 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और कार्यक्रम है भक्ति धारा। सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। तो चलिए, इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम के अंतर्गत चन्न भक्ति गीत आपकी सेवा में, और आज जो है आपके लाए हैं शास्त्र नवनीतम। ये कार्यक्रम आप डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे। तो चलिए श्रोताओ, कहते हैं भक्ति वो मधुर संगीत है जो आत्मा के तारों को छू लेता है। जब दिल में प्रभु का नाम बसता है तो जीवन की हर सुबह उम्मीद और हर पल शांति से भर जाता है। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

0: तो चलिए श्रोताओ, 10:12 हो चुके हैं, समय हुआ है शास्त्र नवनीतम का। ये कार्यक्रम डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।
1: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।
2: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्ते। आज का विषय भूमि के महत्व पर आधारित है। अथर्ववेद 12वां कांड 1 सूक्त 22वां मंत्र। ओम भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञम हव्यम अरंकृतम भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयान्ने नमर्त्याः सानो भूमिः प्राणम् आयुर्दधातु जरदष्टिम् मा पृथिवीम् कृणोतु। इस मंत्र का एक एक शब्द पर विचार करेंगे। भूम्याम, जिस भूमि में, देवेभ्यः देवों के लिए, मनुष्याः मनुष्य, हव्यम हवि आहुति, अरंकृतम, अरंकृतम का अर्थ है सजाया हुआ, सुंदर और शक्तिशाली बनाने के लिए, यज्ञम देव पूजा दान संगतिकरण, ददति देता है, भूम्याम भूमि पर, मर्त्या मनुष्य, स्वधया अपनी धारण शक्ति से, अन्न से तृप्ति, आत्मतृप्ति के साधन से, अनेन जीवन्ति अन्न के द्वारा जीवन पाते हैं, सा भूमि नह प्राणम वह भूमि हमारे प्राण, आयु दधातु आयु को धारण करती है, पृथ्वी माँ वही पृथ्वी वही धरती वही भूमि, जरदृष्टिम कृणोतु बुढ़ापे तक पहुँचने वाली लंबी आयु प्रदान करे। जिस भूमि पर मनुष्य देवों के लिए सुसज्जित तरीके से यज्ञ करता है, यज्ञ द्वारा हवि अर्पण करता है, और जिस भूमि पर मनुष्य अन्न और अपने कार्य शक्ति के बल पर जीवित रहते हैं, वह धरती माता हमें प्राण शक्ति और दीर्घायु प्रदान करें तथा हमें वृद्धावस्था तक सुखमय जीवन दे। कथित मंत्र में मातृभूमि की महिमा गाई गई है। जिस भूमि पर मनुष्य देवताओं के लिए यज्ञ और सुसज्जित हवि प्रदान करते हैं और जहां सभी मरणशील मनुष्य अन्न और अपनी आत्मशक्ति से जीवन जीते हैं, वह भूमि हमें प्राण और लंबी आयु दे तथा हमें

पूर्ण आयु तक पहुंचाने वाली धरती माँ दीर्घायु प्रदान करे। भूमि केवल मिट्टी का ढेला नहीं बल्कि जीवन और ऊर्जा का आधार है। प्रत्येक जीव भूमि के साथ अपना तालमेल बिठाकर अपनी शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। जिस भूमि पर मनुष्य उत्तम गुणों की वृद्धि के लिए यज्ञ और परोपकार के कार्य में संलग्न हो जाते हैं, धरती माँ हमें प्राण शक्ति और लंबी आयु प्रदान करती है। प्रार्थना की गई है कि पृथ्वी हमें बुढ़ापे तक अर्थात लंबे समय तक शक्तिशाली बनाए रखें। भूमि केवल मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि करोड़ों जीवों और प्राणों का आधार है। धरती पर असंख्य जीवों का जन्म होता है। धरती जल को अपने ऊपर और अपने अंदर धारण करती है। जल में हो या धरती में सब पर जीवों का वास होता है। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन चार प्रकार के जीव जल और धरती के ही आश्रय लेते हैं। अंडज अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, पिंडज गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव जैसे कि मनुष्य, हाथी, स्वेदज पसीने व मल से उत्पन्न होने वाले जीव जैसे कि जू, कीटाणु, उद्भिज धरती को फाड़ कर या धरती से आने वाले जीव जैसे वृक्ष इत्यादि। देवेभ्य का अर्थ है देवताओं के लिए। संस्कृत निरुक्त शास्त्र के अनुसार देवता किसे कहते हैं, देवता कस्मात्? उत्तर है दानात् वा द्योतनात् वा दीपनात् वा द्युस्थानो भवत इति वा। अर्थात देवता की उत्पत्ति और परिभाषा मुख्य रूप से दान देना, द्योतन अर्थात प्रकाशित करना, दीपन चमकना, द्युस्थान द्युलोक आकाश में निवास करने के कारण होती है। महर्षि यास्क रचित निरुक्त में देवता व देव शब्द की चार प्रमुख व्युत्पत्तियां दी गई हैं। प्रथम दानात् दान देने के कारण, जो हमेशा जीव मात्र को कुछ न कुछ प्रदान करता रहता है, जैसे कि सूर्य अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है, वायु प्राण देता है, जल जीवन देता है, शीतलता प्रदान करता है, अग्नि प्रकाश और गर्मी देती है, धरती सबको आश्रय और जीवन प्रदान करती है, इसलिए ये सब देव कहलाते हैं। दूसरा है द्योतनात्, प्रकाशित करने के कारण, जो स्वयं प्रकाशित है और पूरे संसार को ज्ञान व प्रकाश से आलोकित करता है। तीसरा है दीपनात्, चमकने के कारण देव कहलाते हैं, जो स्वयं प्रकाशित है, जो अपने दिव्य आभा और तेज से सदा चमकता रहता है। मनुष्य में सोचने, समझने, करने की विशेष शक्ति है, उसमें स्वतंत्र इच्छा की शक्ति विद्यमान है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो अपने कर्मों के अनुसार बंधन या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, अपनी आत्मा को उन्नत कर महापुरुष बन सकता है। चेतना, कर्म और चिंतन मनुष्य में निहित रहता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है जब वह किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने से पहले परिणाम तक अवश्य विचार कर लेता है, फिर चाहे परिणाम विपरीत या प्रतिकूल निकल आए व्यथित नहीं होता। चौथा है द्युस्थानो भवति तिवा। द्युस्थान अर्थात द्यु लोकवासी होने के कारण जिनका निवास स्थान आकाश या दिव्य लोक में होता है, वह भी देव कहलाता है। मंत्र में मनुष्या शब्द आया है। मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य कस्मात्? तो उत्तर है मत्वा कर्माणि सिव्यति। मनुष्य वह है जो मननशील होकर वा सोच समझकर बुद्धिमानी के साथ अपने

0: कर्म पिरोता है। मनुष्य तभी मनुष्य है जब वह किसी भी कर्म को चिंतन तथा मनन पूर्वक करता है। वह अपनी बुद्धि और विवेक के कारण विशिष्ट है। जिस भूमि में बार बार अन्न बोए जाते हैं, जिस भूमि पर प्राणधारी जीव जंतु चलते फिरते हैं, वह धरती हम सब का पालन पोषण करने से माँ कहलाती हैं, देवी कहलाती हैं। भूम्याम अन्नेन जीवंती का अभिप्राय है, भूमि में जो अन्न बोए जाते हैं और अन्न पाए जाते हैं, वही अन्न प्राणियों के जीवन की रक्षा करता है। धरती की उपजाऊ क्षमता से जीवनदायी अन्न, औषधि, वनस्पति और खनिज की प्राप्ति होती है। धरती अन्न धन देने से देवी कहलाती है। अपने गर्भ से प्राणियों को जन्म देने एवं धारण करने से धरती माँ कहलाती है। भारतीय संस्कृति में मातृभूमि सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो बताती है कि मेहनत से धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। परिश्रम से धरती से भरपूर अन्न पाया जा सकता है। भूमि वह देवी है जो अन्न, जल और खनिज धारण करती है। भूमि परिश्रम का संदेश देती है। भूमि की सेवा करने से भूमि हमारी सेवा करती है। खेती से प्राप्त पहली फसल का अग्नि और अन्य जीवों के साथ साझा करने की परंपरा है, अर्थात प्रथम अन्न अग्नि के लिए और बाकी अन्य जीवों के लिए और मनुष्यों के लिए। ऋग्वेद के अनुसार जो अनाज खेतों में पैदा होता है उसका बंटवारा तो देखिए, भूमि से चार अंगुल भूमि माँ का गेहूं के बाली के नीचे का पशुओं का है। पहला फसल की पहली बाली अग्नि की है। बाली से गेहूं अलग करने पर मुट्ठी भर दाना पंछियों का है। गेहूं का आटा बनाने पर मुट्ठी भर आटा चींटियों का है। चुटकी भर गुथा हुआ आटा मछलियों का है। फिर उस आटे की पहली रोटी गौ माता की है। पहली थाली घर के बुजुर्गों की है, फिर हमारी थाली और अंतिम में आखिरी रोटी कुत्ते की। ये हमें सिखाती है कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है। इस कारण से भूमि को माँ की संज्ञा प्राप्त है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, भूमि हम सब की माँ हैं और हम सब उनके संतान हैं। आज की वार्ता यहाँ विराम लेती है। अब आचार्य सुनील को अनुमति दीजिए। ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो चलिए श्रोताओं, 10:24 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक। शुक्रवार का दिन है आज श्रोताओं, और शुक्रवार का दिन पावन दिन है। आज हम माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान करते हैं। तो चलिए चंद भक्ति गीत उनके नाम हम करने वाले हैं। वैसे श्रोताओं, जब आत्मा में श्रद्धा का फूल खिलता है तब जीवन प्रेम और आनंद की सुगंध से भर जाता है। तो चलिए कुछ ऐसे प्यारे प्यारे भक्ति गान जो है आपकी सेवा में हम प्रसारित करने वाले हैं।

श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम आपके लिए हम प्रसारित कर रहे हैं। वैसे हम कहते हैं कि भक्ति में दिखावा नहीं है, भावना का महत्व होता है। एक सच्चे मन की पुकार ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। तो चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

चलिए श्रोताओ, भक्तिधारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चंद भक्ति गीत इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं माँ दुर्गा पर आधारित। और आपको पता है कि माँ दुर्गा जो है शक्ति का प्रतीक है, और आज का दिन जो है बहुत सारे भक्तगण जो है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, व्रत धारण करते हैं और अनेकों उपाय करके उनको हम प्रसन्न करते हैं। तो चलिए, इन दिनों जो है गुप्त नवरात्रि चल रही है, जितने भी लोग जो है जितने भी भक्तगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ है।

वैसे श्रोताओं, कन्याओं का पैर धोकर तिलक लगाकर भोजन कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद हमें प्राप्त होती है। और कहते हैं छोटी कन्याओं को निर्मल और पवित्र माना जाता है, उनकी पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो चलिए श्रोताओं, 10:50 हो चुके हैं भक्ति धारा कार्यक्रम की अगली भेंट में। आज का दिन जो है हम माँ संतोषी को भी पूजते हैं, विधि विधान के साथ, नियमों के साथ जो है हम उनकी पूजा अर्चना आज का दिन भी हम करते हैं।

चलिए श्रोताओ, जाने का समय आ गया है। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। विलाज डे कॉन्ट शॉल शेमे कहने और रिविये डे गाले के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 26 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए भक्ति धारा कार्यक्रम का समापन एक आरती के साथ करेंगे। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। आप सभी को शुभ दिवस। 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों जो है उसके बाद आप उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में आप सुन सकेंगे। आप सभी को शुभ दिवस।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे अभी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मॉरिशस अफ्रीका की सेवा में एक क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र यानी कि रीजनल फाइनेंशियल हब के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहता है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए TDB यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने कल एबेन में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये एक रणनीतिक

एक साझेदारी है जिसका मुख्य उद्देश्य है वित्तीय सेवा क्षेत्र में कौशल विकास और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। आईटी सेक्टर के पूर्व मंत्री दीपक बालगोबिन को फोन टैपिंग जांच के सिलसिले में समन भेजा गया है।

0: ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। सीसीआईडी का आरोप है कि लील रामदील दियाल ने प्रेस्ट सोल ब्रांड के एक लिसनिंग टैपिंग डिवाइस का एक्सेस कोड देने से इनकार कर दिया था। आशंका है कि इस उपकरण का इस्तेमाल बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था, जिसके कुछ अंश मुस्तास लीक्स नाम के कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग में सामने आए हैं। 17 जून से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने देश के कई हिस्सों में जलापूर्ति के लिए नई समय सारिणी निर्धारित की है। सेंट्रल प्लाटू इलाके इसी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसकी मुख्य वजह जलाशयों के जलस्तर में चिंताजनक गिरावट, खासकर देश का सबसे बड़ा जलाशय मोहवाक्वा, जिसका जलस्तर गिरकर लगभग 43% के करीब पहुंच गया है, जैसा कि ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादन ने भी कहा है। पानी के भंडार को बचाए रखने के लिए CWA ने दैनिक आपूर्ति घटाकर केवल एक समय कर दी है, यानी कि सुबह 3 बजे से रात के 8 बजे के बीच कुछ इलाकों में प्रतिदिन लगभग 6 घंटे ही पानी दिया जा रहा है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये फैसला आज से लागू हो गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने फोर्स्ड लेबर से बने सामान के आयात को लेकर 60 देशों पर कार्रवाई की है। अमेरिका ने इन देशों पर 10 से 12.5% तक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेक्सिको, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों को 10% टैरिफ वाली समूह में रखा गया है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। Sir, it was hot, straight, ulier quatre bonnes mais. Sir, it was hot, straight, ulier quatre bonnes mais. 53 साल की, 53 years old की, श्रीमती तजीना गंगा बिसुन, श्रीमती तजीना गंगा बिसुन, पैदाइशी नाम रूपचंद और जिन्हें सब लोग वीनू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उनके पति श्री स्वराज दादू गंगा बिसुन के घर सर एडवर्ड हॉट स्ट्रेट उलिये कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स के श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 2:30 PM गजाधर स्ट्रेट स्टैनली रोजिल में, गजाधर स्ट्रेट स्टैनली रोजिल में 91 साल के, 91 years old के श्री मुतु कर्पन, जिन्हें सब लोग कैड्रेस के नाम से भी जानते थे और जो लाशोमिया कंपनी के पूर्व माली थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उन्हीं के घर गजाधर स्ट्रीट स्टैनली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौते मोहुश किशमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 2:30। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: जुम्मे का मुबारक दिन है आप तमाम सुनने वालों को। हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए, आमीन। आज की इस उर्दू नशरियात में हर जुम्मे की तरह आप समात फरमाएंगे। सबसे पहले सूरह अल-कहफ़ की तिलावत, हम्द, नातो सलाम और आपके पैगामात। ताख़ीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं सूरह अल-कहफ़ की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

सदक अल्लाहु अज़ीम। अभी आप समात फरमा रहे थे सूरह अलकहफ की तिलावत। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को मकबरे ना बना लो, यानी जिस तरह कब्रिस्तानों में ज़िक्र तिलावत नहीं करते और उसकी वजह से कब्रिस्तानों की फ़िज़ा ज़िक्र तिलावत के अनवार आसार से खाली रहती है, तुम इस तरह अपने घरों को ना बना लो, बल्कि घरों को ज़िक्र तिलावत से मामूर रखा करो, और जिस घर में ख़ास कर सूरह अलबकरा पढ़ी जाए उस घर में शैतान नहीं आ सकता। बहवाला जामाए अल तिर्मिज़ी शरीफ।

मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:38 हो चुके हैं। जुम्मे का मुबारक दिन है, जुलाई की 24 तारीख है और इस्लामी साल के दूसरे महीने माह सफ़र की आज 9 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। आइए इसी के साथ समाप्त फरमाइए एक ऐलान। कल 25 जुलाई सुबह 10 बजे शान रसूल मस्जिद लागी लौश पोर्ट लुइस में आलिमा सैयदा उनाजा फ़ातिमा की सरपरस्ती में 11वीं शरीफ के ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है।

मौज़े सामीन, जुम्मा ईमान वालों के लिए रहमत, बरकत और मगफ़रत का दिन है। जो शख्स जुम्मे की कद्र करता है, अल्लाह ताला उसके हफ्ते में बरकत अता फरमाता है। जुम्मे का दिन अल्लाह के ज़िक्र, दुरूद शरीफ और दुआ से भरपूर होना चाहिए। जुम्मा सिर्फ़ एक दिन नहीं बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करने का बेहतरीन मौका है। जिस दिल में जुम्मे की मोहब्बत हो वो अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार रहता है।

मौजूद सामेईन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। इस वक्त परवीज़ा हमारा साथ दे रही हैं, जिसके लिए हम उनके बेहद शुक्र गुज़ार हैं। और सब्र जमील की गुजारिश की गई है। जी हाँ, मरहूम ग़िज़ा बरहू शरीक हयात, उनकी अफसाना बरहू और उनकी बेटी ज़फ़ीरा और पूरी रामपत और बरहू फैमिली के लिए सब्र जमील की गुजारिश की जा रही है। तारिक दुमन हमसे एक कलाम की फरमाइश कर रहे हैं, जिसे आप थोड़ी देर में समाअत फरमाएंगे। और बंधु और कुरमली फैमिली कियोले से जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं तमाम सुनने वालों को। और सैंपल से रेहाना हुसैन बुकस अपने शौहर रियाज के लिए दुआए शिफा की गुजारिश कर रही हैं। और तमाम मरीज़ों के लिए भी दुआगू हैं कि अल्लाह पाक सबको शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन। इसके अलावा वालदा के लिए वाकवा से इसरा दुआगो हैं। वालदा का नाम तो नहीं बताया, लेकिन इसरा दुआगो हैं कि उनकी वालदा को पाक परवरदिगार सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी और दुनिया व आखिरत की खुशियां अता फरमाए। और दुआए मगफिरत की गुजारिश की जा रही है मरहूम दुलमीर साहिब, मरहूम मंगरू फारूक, हाजी इमरान मंगरू, मरहूमा बीबी दुलमिया जज्बिया, मरहूम जनाब अनवर मालिक के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश की जा रही है। इसके अलावा दुआए मगफिरत की गुजारिश है मरहूम और मरहूमा अफरोज़ अबू बकर, रुखसाना, हमजा विदेसी, फ़ातिमा, आपा जी और तमाम मरहूमीन के लिए दुआगू हैं कि अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और उनकी मगफिरत फरमाए। और ये दुआएं भेजी हैं युश्रीन ने। जी हाँ, इसके अलावा हमेशा की तरह न्यूकोव से फ़ातिमा भी हमारा साथ दे रही हैं।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, आज के मुबारक दिन में जितनी भी इबादात हों, दुआएं हों, उन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: दिन के 12 बजे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से सुनिए एक विज्ञप्ति। कांशालो, शुमा ग्रेनिये और रिविया दिगाले के निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 26 जुलाई 2026 की सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जो ही मरम्मत कार्य पूरे होंगे, बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सामान्य पर ला दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। तो ये थी एक विज्ञप्ति सीबी की ओर से।

दशमुख कंपन बड़बाकृत बड़बाणल कृत बहुभस्मार्चन।

शतयोजन शतशतयोजन शरधियोजन शरपरिलङ्घन हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुखकम्पन बडवाकृत बड बडवाकृत बडबाणलकृत बहुभस्मार्चन जय

0: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: समय थे जब पूर्ण पूर्ण आवे
2: मौजीला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

大家好，我是歌手庞龙，欢迎来一听音乐网，试听我最新专辑的首播单曲《校花》，希望大家也能支持我的最新EP专辑《校花》。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। शुक्रवार 24 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और रेडियो मॉरिशस पर हम भी आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। कैसे हैं आप सभी? ठीक है ना? शुक्रवार है और शुक्रवार को हर एक का मूड जो है बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि पता है कि आने वाले दिनों में वीकेंड है, सप्ताहांत है, और सप्ताहांत यानी कि थोड़ा सा आराम करने को मिलेगा, फैमिली के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर इस समय को हम भी यादगार बनाते हैं, आपके पसंदीदा गाने आपके लिए, आपके अपनों के लिए चलाएंगे। 4028085 है नंबर हमारा, साथ ही 5251700005 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो हिना फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए देर तो हम भी बिल्कुल नहीं करते हैं, जब भी वक्त होता है प्रोग्राम का समय पर आ ही जाते हैं, ऐसे तो समय के पहले ही आ जाते हैं। चलिए आज जन्मदिन की शुभकामनाएं यहाँ पर ढेर सारी हमें मिल रही है। सो जितने भी सुनने वाले आपके परिवार के सदस्य आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर नमस्कार सुमी जी, मादल बैसे अनिता, आज मेरी सहेली की सालगिरह है, नाम है उनका कविता हरहंगी। कविता जी आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, आपकी प्यारी सहेली अनीता की ओर से और साथ में पूरे परिवार की ओर से। कश्मीरा है, यहाँ पर तृप्ति है और सभी हरहंगी परिवार की ओर से और गबरन परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं यहाँ पर आई हैं। और यहाँ पर आज ही एशले अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। एशले आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं आपकी पत्नी सोनम की ओर से, साथ में आपकी फूफू सुनीता की ओर से, ग्रांगुप से जो आपको शुभकामनाएँ दे रही हैं। फिर केशु है,

श्वेता है, यानिश है, सत्यम है, नील है, पूरे परिवार ने आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। तो चलिए, जितने भी लोगों का जन्मदिन है, जन्मदिन का मौका अपने आप में बहुत ही खास होता है और अपनों के साथ इसे जब मनाते हैं तो खुशियां और भी बढ़ जाती हैं।

0: तो एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी को जो मना रहे हैं अपना जन्मदिन
1: आपकी पसंद।
0: और चलिए यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो छुट्टियों पर हैं, तो ऐसे में अगला गाना जो है जाता है कवि के नाम, कृषि के नाम और हंसवी के नाम, जो इस समय अपने जो है पेरेंट्स के साथ अपने वेकेशन को मना रहे हैं और घूमने निकले हैं। तो आप लोगों के नाम इस गाने को हम करते हैं। और घूमने की बात हो ही रही है तो क्लैपॉस के सीनियर सिटीजन्स के सभी सदस्य इस समय समुन्दर किनारे में जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पिकनिक मनाने गए हैं और हमें सुन रहे हैं। तो आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार। विश्वानी दुमन जी की ओर से गाना जाता है आप सभी के नाम और सभी दुमन परिवारों के नाम। जी हाँ, छुट्टियों का वक्त है और समुंदर का किनारा है, तो ये गाना आप

0: की पसंद।
1: परिवार के साथ, अपनों के साथ घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है, और इससे छुट्टियां जब मिलती है तो अपनों के साथ थोड़ा सा अच्छा वक्त हमें बिताना ही चाहिए। चलिए अभी के लिए यहाँ पर खूबसूरत गानों का जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। अगला जो गीत है यहाँ पर कागज़ के फूल फिल्म का तराना है, और ये जाता है वाकवा की उषा की ओर से उनकी बहनों के लिए। शोभा है, मेधा है, कामिनी है, उनके सभी भाइयों के लिए, और ख़ासकर उनकी भाभी इंद्राणी के लिए, और उन सभी के नाम जिन्हें ये गाना पसंद है, गीता दत्त जी की आवाज़ में।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: और श्रोताओं, इसी गाने के साथ, इसी छोटे से एक गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं 3 बजे के समाचार की, और समाचारों के उस पार आपके पसंद प्रोग्राम ये जारी रहेगा, चलेगा 4:15 बजे तक।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। दो वर्षों तक चले नवीनीकरण कार्य के बाद पोर्ट लुईस के जीतू अस्पताल का शवगृह दोबारा संचालित होने लगा है। इस अवसर पर देश के 8 सार्वजनिक शवगृहों की कार्य प्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया है। इन शवगृहों में पार्थिव शरीरों के सुरक्षित संरक्षण, विभिन्न अस्पतालों के बीच उनके स्थानांतरण तथा लावारिस शवों के रखरखाव और अंतिम व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि ये सेवा सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी कार्य प्रणाली आम लोगों की नजरों से प्रायः दूर रहती है। मॉरिशस के पूर्व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री आईसीटी मंत्री दीपक बालगुबिन आज सुबह लगभग 10:30 बजे पोर्ट लुईस लाइन बैराक्स पहुंचे। उनके साथ वकील गवी गिगादू और सुदेश कालीचंद भी मौजूद थे। दीपक बालगुबिन से सीसीआईडी कथित टेलीफोन जासूसी मामले में पूछताछ कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इसी मामले की जांच के सिलसिले में इससे पहले सीसीआईडी की काउंटर टेररिज्म यूनिट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर लीलाराम दयाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने एक ऐसे निगरानी उपकरण के एक्सेस कोड उपलब्ध कराने से इनकार किया जिसका इस्तेमाल कथित रूप से टेलीफोन वार्तालापों को अवैध रूप से रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। इन रिकॉर्डिंग्स को मुस्ताश लिंक्स के नाम से सार्वजनिक किया गया था। स्कॉटलैंड की ग्लासगो स्थित ओवियो हाइड्रो अरीना में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों की रंगारंग मार्च पास्ट रही। 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले इन खेलों में इस बार 74 देश और इलाके भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में लगभग 3,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मॉरिशस के करीब 40 खिलाड़ी भी शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमेलिया भी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका ने अपने 60 व्यापारिक साझेदार देशों पर नए शुल्क लागू कर दिए हैं। ये कदम अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता

में लौटने के बाद फिर से शुरू हुए व्यापारिक विवाद को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। नए शुल्कों के दायरे में ब्रिटेन, चीन और यूरोपीय संघ समेत कई देश शामिल हैं। इन देशों से आने वाले लगभग सभी सामानों पर 10 से 12%

0: जबरन मजदूरी की समस्या से निपटने में पर्याप्त कदम नहीं उठा पाई है। हालांकि अमरीकी व्यापार विशेषज्ञ ने कहा है कि ये कदम जबरन मजदूरी से संबंधित नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप शुल्क लगाने के लिए एक कानूनी आधार तलाश रही है। इस साल की शुरुआत में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आपातकालीन शक्तियों के तहत वैश्विक स्तर पर लगाए गए कई शुल्क कानूनी रूप से लागू नहीं किए गए थे। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: घड़ी मिला लीजिए 3:05 होने को है। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। सैंकवा के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, सैंकवा के खासकर रुई मारियामेम टेम्पल, देबुशे, लातानिए, लाप्रेरी, कैनल बाथ्रस्ट, हिगिनसन, आपौतेया, आले पियालावाल, उदीन लेन, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर शनिवार 25 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे के बीच, यहाँ पर शनिवार 25 जुलाई को यानी कि कल सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही लावोच्य, पेचित्रित्रित, ग्रॉन्द्रित्रित, पोब्लॉ, बनाकेई, बेलवी, आलेंदी, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहक खासकर सुहातु पोल्ट्री, एमटेल, लावांचिया, इस्कॉन बनाकेई, पोस्ट ऑफिस बनाकेई, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आते रविवार 26 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य सम्पन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। तो ये थी कुछ विज्ञप्तियां सीईबी की ओर से।
4: एक हसीन सफर रेडियो मॉरिशस
3: आपकी पसंद। चलिए आपकी पसंद इस प्रोग्राम में एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए यहाँ पर गानों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। और अगला जो गीत है मिलन फिल्म का ये तराना है, सावन का महीना पवन करे शोर। ये खूबसूरत सा तराना जो है मुकेश मोहन जी की ओर से जाता है देवयानी के नाम, अयता के इनके सभी मोहन परिवार के नाम, अयता वाकवा से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही यही गाना ज्योति जी आपके नाम हम करते हैं शाते बनारस से हमारा साथ दे रही है। यही गाना जाएगा सभी मदब फैमिलीज के लिए। आशना है, रेखा है, सुरेखा है, सभी बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: की पसंद।
1: चलिए इन गानों को सुनकर दिल जो है झूम ही उठता है ना, इसमें कोई शक नहीं है। और अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। रिहाना इस समय फिनिक्स से बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और मैं हूँ ना फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है, इसके गाने की फरमाइश इन्होंने की है अपने लिए और जितने हमारे सुनने वाले हमारा साथ दे रहे हैं सभी के लिए। यहाँ पर अगला जो मैसेज है वो आया है यहाँ पर अनीता जी की ओर से, जो फ्लिक फ्लाक से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेरे बहुत प्यारे गाने चल रहे हैं हमेशा की तरह, तेरे एक गाना हो जाए इनकी भतीजी अंजू के नाम, उनकी बेटी वालेना के लिए जो आज यूके से यहाँ पर मॉरिशस आई है छुट्टियाँ मनाने। सो यहाँ पर वालेना आपको हैप्पी हॉलीडेज हम विश करेंगे। वैसे यहाँ पर भी छुट्टियों का ही मौका चल रहा है, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स है वो छुट्टियों पर हैं। तो ऐसे में अगला गाना जो है जाता है आपके नाम वालेना, साथ में अनीता जी आपके लिए, आपकी ओर से हमारी पूरी टीम के लिए और उन सभी के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का गाना जितना कमाल का था, फिल्म भी उतनी ही कमाल की थी, है ना। 3:20 ऑलरेडी, और बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। उपकार फिल्म का जो अगला गाना है, माया जी आपके नाम हम करते हैं, मुताय ब्लाउज से हमारा साथ दे रही है, और यही गाना आपकी ओर से जाता है आपके पूरे परिवार के नाम जो इस समय हमें सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और चलिए यहाँ पर हम अगले गाने की ओर बढ़ेंगे, और ये गाना जो है सभी बंधु परिवार के नाम करेंगे जो इस समय ट्रियोले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: की पसंद।
1: चलिए आज के गाने बड़े कमाल के हैं, बड़े ही खूबसूरत हैं और कुछ गाने ऐसे हैं जो बहुत से लोगों के दिल के बहुत ही करीब है, है ना। चलिए ऐसे में अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो तराना है यहाँ पर जाता है, आज बहुत सारे लोग जो है अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सो प्रणाम दी, मैं हूँ बौशेरी से ज्योति, प्यारी श्रेया सुखा अपना जन्मदिन मना रही है। श्रेया जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खासकर आपके पूरे परिवार की ओर से बेस्ट विशेस, पापा सचिन, मामा उषा, बहन सनाया, दादी माँ बसंती और पूरे परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं श्रेया आपको। और आज ही जन्मदिन है मॉम शहनाज का, शहनाज जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं इसरा की ओर से, साथ में अनवर जी की ओर से, लाकावेन वाकवा के आपके पूरे परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई आपको। और जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के लिए।

चलिए पसंदीदा गीतों का जो प्रोग्राम है आप साथ दे रहे हैं और अब बढ़ते हैं खामोशी फिल्म के इस गाने की ओर। किशोरदा और साथियों की आवाज़ों में बड़े ही प्यार से माधुरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना जाता है आपके नाम, आपकी ओर से आपके सभी सहेलियों के लिए, सभी दोस्तों के नाम और सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए। चलिए कोई खूबसूरत सा तराना आप सुनना चाहते हैं या किसी के नाम करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 4028085, या तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं ऑन 5251700 पर। 5251700005 है नंबर हमारा।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए शुक्रवार 24 जुलाई और यहाँ पर अगले गाने की ओर अब हम बढ़ते हैं। बॉर्डर फिल्म का जो अगला तराना है घर कब आओगे, यहाँ पर कविता जी ने इस गाने की फरमाइश की है जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। कहती कि काफ़ी दिन हो गया उन्होंने ये गाना नहीं सुना है तो उन्हें बहुत मन कर रहा है, तो चलिए आपकी फरमाइश पर ये गाना बस चलने को ही है। हमने सोचा कि इसी गाने में हम हमारे उन तमाम सुनने वालों के नाम जोड़ दें जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, जैसे कि आफिस जी जो लावेनिया से हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं, फिर माला जरी जी जो हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहती हैं, माला सुमारू जी आपको भी हम नहीं भूले हैं, शोभा जी आप भी बड़े ही प्यार से हमें सुनती हैं। और चलिए इसी के साथ अगला गाना जो है यहाँ पर वीना जी आपके लिए भी हम करते हैं।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ जो है आपकी पसंदीदा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। आपको तो पता ही है हर शुक्रवार को 4:45 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। 4:45 बजे फिर समय होगा गुलदस्ता उर्दू इस प्रोग्राम का, जिसे आप सुन पाएंगे निसार की पेशकश में। तो इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार आप सभी को। और ये जो आने वाला सप्ताहांत है, वीकेंड है, वो बहुत अच्छे से बीते आप सभी के लिए। और रेडियो मॉरिशस पर ऐसे ही आप साथ देते रहिए। धन्यवाद।

0: मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मोहतरम मोहतशिम सामईन, तमाम मुहिब्बान उर्दू का निसार अख्तर की तरफ से आदाब व तस्लीमात कबूल हो। आपकी समागतों की नज़र हैं गुलदस्ते उर्दू, वो दिल पज़ीर उर्दू प्रोग्राम जो उर्दू स्पीकिंग यूनियन की पेशकश है, जिसका मकसद उर्दू ज़बान की खुशबू को आप तक पहुँचाना है। सामईन, आज के अदबी गुलिस्तान का आगाज़ हम एक ऐसे शाहकार से कर रहे हैं जिसे उर्दू शायरी का एक दरख्शंदा नायाब नगीना कहना बिल्कुल बजा है। साहिर लुधियानवी की नज़्म ताजमहल, वो नज़्म जिसमें उन्होंने मोहब्बत के इस अजीम यादगार को महज एक रूमानी अलामत के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उसके पस मंज़र में छुपी इंसानी मेहनत, महरूमियों और बेज़बान कहानियों को बड़े बेमिसाल अंदाज में उजागर किया। तो आइए इस नज़्म से लुत्फंदोज होते हैं।
1: ताज तेरे लिए एक मज़हरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या माना, सब जिस राह में हूं सदवत शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या माना, मेरी महबूब पसे पर्दा तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनकी, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारात मकाबिर, ये फसीले, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहनशाहों की अजमत के सुतून, सीना नहर के नासूर हैं कोहना नासूर, जज्ब है इनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून।

मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम नमूर, आज तक उन पे जलाई ना किसी ने किंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने

उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम और नमूर, आज तक उन पे जलाई ना किसी ने किंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने

0: कहता है, बच्चों से बात कैसे की जाए कि वो सुने समझे और दिल पर बुरा भी ना लगे। इसी हवाले से सामईन अब पेश खिदमत है एक मुख्तसर पैगाम, जिसमें बताया जाएगा कि बच्चों को बगैर डांटे किस तरह उनको समझाया जा सकता है, कैसे उनकी तरबियत दिलावेज अंदाज में की जाए। आइए ये मानी खेज पैगाम मुलायजा फरमाइए।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात माने, वो भी बगैर मार पीट के, तो ये 6 ताकतवर राज आपकी जिंदगी और तरबियत दोनों को बदल देंगे। दोस्तों याद रखें, बच्चा एक खाली कागज की तरह है, आप उस पर जो लिखेंगे वही उसकी शख्सियत बन जाएगा। अगर आप मोहब्बत, हिकमत और समझदारी से तरबियत करेंगे तो आपका बच्चा ना सिर्फ आपकी बात मानेगा बल्कि कल को एक मजबूत, बाएतमाद और कामयाब इंसान बनेगा। तो पहला राज है तारीफ की ताकत। जब आप बच्चे को बार बार डांटते हैं तो उसकी जिद और बगावत बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही आप तारीफ करते हैं उसके दिल का दरवाजा खुल जाता है। बच्चे हमेशा उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं जहां उन्हें हौसला अफजाई मिलती है। याद रखें, तारीफ हमेशा दिल से और खास होनी चाहिए। मसलन, मुझे खुशी है कि तुमने आज वक्त पर अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया, तुमने आज अपने छोटे भाई की मदद की, ये तुम्हारी बड़ी खूबी है। ये छोटे जुमले बड़े नताइज पैदा करते हैं। जब बच्चे को लगे कि उसकी छोटी कावश को भी वालदैन ने नोटिस किया है तो वो ज्यादा मेहनत करेगा ताकि अगली बार फिर तारीफ पाए। दूसरा राज, इनाम और नतीजों का सिस्टम। बच्चों को यह समझना जरूरी है कि अच्छे और बुरे अमल का फर्क क्या है। इसके लिए घर में एक वाज़े और मुसलसल सिस्टम होना चाहिए। याद रखें, इनाम हमेशा महंगी चीज नहीं होता। कभी इनाम सिर्फ ये होता है कि उसे खेलने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाए, उसकी पसंदीदा डिश बना दी जाए, या आपने सिर्फ इतना कहा कि शाबाश, मुझे तुम पर फख्र है। तारीफ के साथ साथ इसी तरह गलत रवैये की भी निशानदही करनी चाहिए, मगर नरम रवैये के साथ, नरम लहजे के साथ। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा बार बार होमवर्क नज़रअंदाज करे तो उसके खेलने का वक़्त थोड़ा कम कर दें। जब बच्चा देखता है कि अच्छाई पर इनाम और गलती पर सजा मिलती है तो उसकी सोच अपने आप बदलने लगती है। तीसरा राज, सही वक़्त का इंतखाब। बच्चे को उस वक़्त ना समझाएं जब वो जिद या गुस्से में हो, क्योंकि उस वक़्त उसके दिमाग में सुनने की सलाहियत बंद हो जाती है। ऐसे लम्हों में आप जितना समझाएंगे उतना ही वो रद्द करेगा। बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आप खामोश रहें, उसके जज्बात को ठंडा होने दें और फिर जब उसका मूड बेहतर हो जाए उस वक़्त उससे प्यार से बात करें। बेटा, याद है तुमने कल जो जिद की थी? सोचो, अगर तुम पुरसकून रहते तो हम सब कितने खुश होते। ये तरीका बच्चे को सोचने पर मजबूर करता है और आपकी नसीहत उसके दिल में बैठ जाती है। छठा राज, फौरी नहीं, सही वक़्त पर मसले का हल। याद रखे, हर मसला फौरी हल करना जरूरी नहीं होता। कभी बच्चे को खुद सोचने और गलती को समझने का मौका देना चाहिए। अगर आप हर बात पर फौरन टोकेंगे तो वो थक जाएगा, मजाहमत करेगा। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा किसी दिन पढ़ाई छोड़कर खेलने में लग गया है तो फौरन उसे डांटने की बजाय शाम में या अगले दिन सुकून से बात करें। यह तरीका बच्चे को सिखाता है कि मसाइल को सही वक़्त पर और सुकून से हल करना ज्यादा मौसर है। पांचवां राज, छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें। वालदैन अक्सर छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांटते हैं, जैसे पानी गिरा देना, खिलौने इधर उधर छोड़ देना या छोटी छोटी शरारतें। दोस्तों याद रखें, ये छोटी गलतियां बच्चों के बचपन का हिस्सा हैं। अगर आप हर बार टोकेंगे तो उसकी खुदएतमादी टूट जाएगी। उसकी बजाय ये सोचें कि क्या ये गलती वाकई नुकसानदेह है, और अगर नहीं तो उसे छोड़ दें, नज़रअंदाज कर दें। जब बच्चे को लगता है कि वालदैन उस पर भरोसा कर रहे हैं तो वो खुद बेहतर बनने की कोशिश करता है। ये रवैया उसे एक समझदार और जिम्मेदार इंसान बनने में मदद देता है। छठा राज, वालदेन का पुरसकून रहना, ये बात सबसे ज्यादा अहम है। अगर वालदेन हर वक्त

0: गुस्से, दबाव और तनाव में रहेंगे तो बच्चा भी यही रवैया अपनाएगा। बच्चे वालदैन के अक्स होते हैं, इसीलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना और पुरसकून रहना सीखें। गहरी सांस लेना, चंद लम्हे खामोश रहना या थोड़ी देर के लिए माहौल से दूर जाना, ये सब चीज़ें आपके मिजाज को बेहतर बनाती हैं। जब आप पुरसकून होंगे तो बच्चे भी आपके रवैये से सुकून सीखेंगे। दोस्तों, याद रखें, बच्चे की तरबियत ताकत या जोर का खेल नहीं है, ये मोहब्बत और हिकमत का खेल है। जितना आप बच्चे के साथ एहतराम, मोहब्बत और हौसले से पेश आएंगे, उतना ही वो आपकी बात दिल से मानेगा। आप अपने बच्चे का सिर्फ आज नहीं बल्कि उसका कल भी तश्कील दे रहे हैं।
1: सामईन ज़ीवकार, इस वक्त आप उर्दू स्पीकिंग यूनियन का पेश करदा प्रोग्राम गुलदस्ते उर्दू समात फरमा रहे हैं। इससे पहले आपने एक फिकरंगेज पैगाम समात फरमाया। वाकई हमारे बच्चों के दिल कच्चे होते हैं, एक नरम लफ्ज उनके अंदर एतमाद जगा देता है और एक सख्त जुमला तकलीफ दह साबित हो सकता है। तरबियत सिर्फ अल्फाज से नहीं लहजे से होती है, सिर्फ हिदायत से नहीं मोहब्बत से होती है, सिर्फ रोक टोक से नहीं एहसास से होती है। गुफ्तगू के ख़त्म हो जाने पर आया ये ख्याल, गुफ्तगू के ख़त्म हो जाने पर आया ये ख्याल, जो ज़बां तक आ नहीं पाया वही तो दिल में था। मोहतरम सामईन, वक्त बड़ी खामोशी से अपनी चादर समेटता हुआ इस बज़्म सुखन के अख्तिताम तक हमें ले आया। उम्मीद है आपने आज के गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम को पसंद फरमाया। ये प्रोग्राम आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकता था। अब निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। आइए आखिर में मेहदी हसन साहब को खैराज तहसीन पेश करते हुए जनाब मोहम्मद अली की आवाज़ में ये कलाम सुनते हैं। अब अगले जुम्मे को मिलेंगे। खुदा हाफिज़।

जुम्मे का मुबारक दिन है, मुबारक साते हैं, मुबारक लम्हात हैं, कबूलियत वाला दिन आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 9 तारीख 1447 हिजरी और 24 जुलाई 2025 जुमतुल मुबारक के इन पुरनूर सातों में सामीन रब ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आप और आपकी अहलो अयाल को अपनी रहमतों के साए में रखे और हर शर और बुराई से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। क्या लोगों को ताज्जुब हुआ कि हमने उन्हीं में से एक शख्स को हुक्म भेजा कि लोगों को डर सुना दो और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो कि उनके परवरदिगार के यहाँ उनका सच्चा दर्जा है। ऐसे शख्स की निस्बत काफिर कहते हैं कि ये तो खुला जादूगर है,

0: तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ, वही हर एक काम का इंतजाम करता है, कोई उसके पास उसकी इजाजत हासिल किए बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है तो इसी की इबादत करो, भला तुम गौर क्यों नहीं करते।
1: إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ

उसी के पास तुम सबको लौट कर जाना है। अल्लाह का वादा सच्चा है, वही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, ताकि ईमान वालों और नेक काम करने वालों को इंसाफ के साथ बदला दे। और जो काफिर हैं, उनके लिए पीने को निहायत खौलता पानी और दर्द देने वाला अजाब होगा, क्योंकि वो कुफ्र करते थे।

वही तो है जिसने सूरज को खूब रोशन और चांद को भी मुनव्वर बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया है, समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है। रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और जो चीजें अल्लाह ने आसमान और जमीन में पैदा की हैं सब में डरने वालों के लिए निशानियां हैं।

जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं और दुनिया की जिंदगी से खुश और उसी पर मुतमईन हो बैठे और हमारी निशानियों से गाफिल हो रही हैं, उनका ठिकाना उन आमाल के सबब जो वो करते हैं दोजख है।

और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको उनका परवरदिगार उनके ईमान की वजह से जन्नतों में पहुंचा देगा, उनके नीचे नेमत के बागों में नहरें बह रही होंगी। जब वो उनमें उनकी नेमतों को देखेंगे तो बेसाख्ता कहेंगे सुभानअल्लाह, और आपस में उनकी दुआ सलामुन अलैकुम होगी, और उनका आखिरी कौल ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द और उसका शुक्र है।

और अगर अल्लाह लोगों की बुराई में जल्दी करता जिस तरह वो तलब खैर में जल्दी करते हैं तो उनकी उम्र की मियाद पूरी हो चुकी होती। सो जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं उन्हें हम छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए गए हैं।

और तुमसे पहले हम कई उम्मतों को जब उन्होंने जुल्म किया हलाक कर चुकी हैं, और उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आए मगर वो ऐसे न थे कि ईमान लाते। हम गुनहगारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। फिर हमने उनके बाद तुम लोगों को मुल्क में खलीफा बनाया ताकि देखें कि तुम कैसे काम करते हो।

हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं वो कहते हैं कि या तो इसके सिवा कोई और कुरान बना लाओ या इसको बदल दो। कह दो कि मुझको इख्तियार नहीं है कि इसे अपनी तरफ से बदल दूं, मैं तो उसी हुक्म का ताबे हूं जो मेरी तरफ आता है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े सख्त दिन के अजाब से खौफ आता है।

0: ये भी कह दो कि अगर अल्लाह चाहता तो न मैं ही ये किताब तुमको पढ़कर सुनाता और न वही तुम्हें इससे वाकिफ करता, बस मैं इससे पहले तुम में एक उम्र रहा हूं और कभी एक जुमला भी इस तरह का नहीं कहा, भला तुम समझते नहीं? तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुठलाए? बेशक गुनहगार फलाह नहीं पाएंगे।
1: सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन, अभी आप सूरा यूनुस की चंद आयत मुबारक की तिलावत से अपने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे। सूरा यूनुस कुरान मजीद की 10वीं सूरत है जो मक्की सूरतों में शामिल हैं और इसमें 109 आयात हैं। और इस सूरत का मरकज़ी पैगाम तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान को मजबूत करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें अपनी कुदरत की बेशुमार निशानियां बयान फरमाता है और लोगों को गौर फिक्र की दावत भी देता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया भी इस सूरत का में जिक्र है और मरकज़ भी है, जिससे ये सबक मिलता है कि सच्चे दिल से तौबा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने वाला कभी भी महरूम नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयतों के सुनने का सवाब हम सबको अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से मुखादिम में 4:16 हो रहे हैं, बज़्म में नूर प्रोग्राम जा रहे हैं। आइए जुमा मस्जिद पोटली में आज जुमे के मुबारक मौके पर पढ़े गए बल्कि बयान किए गए तकरीर बयान की रिकॉर्डिंग हम आपको पेश कर रहे हैं। बेशक मुकर्रर है हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी दामत बरकतुहुम आलिया। और आज हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी दामत बरकतुहुम आलिया ने जिस उनवान का इंतखाब किया, बल्कि जो उनवान पिछले हफ्ते आपने इंतखाब किया था, अज़ाब क़ब्र से हिफाजत, और आज इसको मज़ीद जारी रखते हुए हज़रत क़िबला ने अज़ाब क़ब्र के असबाब द कॉज़ेस पर आपने ज़िक्र किया। समाप्त कीजिए।
2: जुम्मा मुबारक है मोमिनो, तुमको जुम्मा मुबारक।
3: नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मुहम्मद इफ्तिखार अल अंबिया व मुख्तार अल अंबिया وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر عذاب قبر the punishment of the grave

पिछले जुम्मत मुबारक को खिताब हुआ। इस जुम्मत मुबारक को अजाब कब्र के असबाब, द रीजंस ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द ग्रेव को इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सो अजाब कब्र के असबाब में से एक मेन सबब और मेन रीजन वो खलवत के गुनाह है, तन्हाई के गुनाह। इंसान की एक जलवत होती है जिसमें वो लोगों के सामने होता है, लोगों की निगाह में होता, उनके पास होता, उनके सामने होता। और एक जलवत है, जलवत के मुकाबल खलवत, तन्हाई, जिसमें वो तन्हा होता है, किसी के सामने नहीं होता, कोई उसको देखने वाला नहीं होता, वो अकेले होता है। मोमिन जिस तरह लोगों के सामने जलवत में गुनाहों से बचता है, तो वैसे वो खलवत में, तन्हाई में, जब अकेला हो तब भी गुनाहों से बचता है। इसलिए कि मोमिन का इस बात पर यकीन है कि अल्लाह पाक जिस तरह जलवत में देखता है, वैसे ही अल्लाह खलवत में देखता है। जब कोई देखने वाला ना हो तो अल्लाह देखता है। वो लोग जिनकी जलवत, जिनका जाहिर अच्छा हो, नेकियां हो, जलवत में लोगों के सामने जाहिर आए, वो नमाज पढ़ता हो, उम्रे पे जाता हो, हज करता हो, रोजे रखता हो, कुरान पढ़ता हो, जिक्र अस्कार की महाफिल में भी शरीक होता, अलगरज वो सारी नेकियां जो लोगों के सामने होती, जिनमें लोग उन्हें देखता देखते वो अंजाम देता है। लेकिन इसके बावजूद वो खलवत में, तन्हाई में गुनाह करता है। जब अकेले होता है तो फिर गुनाह होना होता। इसको अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें कि जलवत जाहिर कि इन नेकियों के बावजूद वो गुनाह जो उसने खलवत में किए उस पे आजाब होगा, वो गुनाह जो खलवत में हुए उन गुनाहों पर आजाब होगा। हमें इस गलत फहमी और खुश फहमी से निकलना चाहिए कि हम तो सुबह शाम नेकियों में होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर तन्हाई में कोई गुनाह हो भी गया तो क्या हो गया। आजकल यही हो रहा है कि गुनाह भी होता है लेकिन ये एहसास नहीं होता कि ये गुनाह, इस बात का एहसास नहीं होता कि गुनाह, बल्कि आजकल

तो लोग गुनाह के लिए भी दलील देते हैं, उसके लिए भी कोई रीजन, कोई सबब वो बताते हैं। स्पेशली नौजवान अच्छी तरह सुन लें कि नेकियां जैसे जलवत में हो वैसे खलवत में होनी चाहिए, गुनाह से जैसे आप जाहिर में बचते हैं, लोगों के सामने बचते हैं, तो वैसे आप तन्हाई में जब आप अकेले हो, जब अल्लाह के सिवा कोई देखने वाला ना हो, उस वक्त भी आप गुनाहों से बचना चाहिए, वरना उन गुनाहों पर अजाब होगा जो गुनाह आपने खलबत में किए, उन पे भी अजाब होगा। सो ऐसा ना हो कि आप कि वो खलबत के गुनाह, वो खलबत के गुनाह आपके कब्र के अजाब का सबब बने, और वो जलवत की नेकियां जो आपने जाहिर में की हैं वो आपको अजाब कब्र से बचा न सके। आला हजरत ने बहुत आसान नुस्खा अदा किया, वो ऐसा नुस्खा है और ऐसा अमल है जो इंसान को जलवत के गुनाहों से भी बचाता है और खलवत और तन्हाई के गुनाहों से भी बचाता है। इंसान जमात में हो तब भी वो गुनाहों से बचता है, और वो अकेला हो तब भी गुनाहों से बचता है, और वो है इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम नुस्खा। इसलिए कि इश्क मुस्तफा पाक है, ये इंसान को गंदा होने नहीं देती, गुनाह गंदगी है, इश्क मुस्तफा रोशनी है, ये इंसान को अंधेरे से बचाती है और गुनाह अंधेरा। आपने फरमाया कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और जाहिर है कि जिस कब्र में इश्क मुस्तफ़ी का चिराग होगा उस कब्र में अजाब नहीं हो सकता। इश्क मुस्तफ़ी का वो रोशन चिराग, हुब्बे मुस्तफ़ी का रोशन चिराग मोमिन को अजाब कब्र से बचाए जाए। अज़्ज़वाजिर अन इक्तिराफ़ कबायर में इस रिलेटेड एक स्टोरी लिखी गई है, टॉपिक से रिलेटेड, आप पूरी तवज्जो से फोकस होकर उसको सुने। قال ابراهيم التيمي كنت كثير التودد الى المقابر اذكر الموت والبلاء। سيدنا ابراهيم التيمي عليه رحمه القوي نے فرمایا کہ میں موت کو یاد کرنے کے لیے और कब्रिस्तान में जो बोसीदा हड्डियां होती हैं उन हड्डियों को याद करने के लिए कि एक दिन हमें भी मरना है और कब्रिस्तान आना है, जिस्म का फिर खल सड़ जाना है और हड्डियों का बोसीदा हो जाना है और खाक में मिल जाना है, इसको याद करने के लिए अक्सर कब्रिस्तान जाता। फरमाते हैं फबैनमा

अनाजात लई लतिन बिहा गलबत नी आईनाया। फरमाते हैं कि एक रात में कब्रिस्तान में था, मुझ पर नींद गालिब हो गई, फनुम तू वनी तुम्हें सो गया कब्रिस्तान में सो गया, फराई तो कब्रन कद इन शक्का तो मैंने ख्वाब में एक कब्र देखी जो फट गई खुल गई, वसमितु काइलन यकूल और मैंने एक सुनने वाले को ये कहते हुए सुना, खुदू हाज ही सिलसिला फसलुकूहा फीफी व अखरिजूहा मिन दुबुरहा। वो पुकारने वाला पुकार के कह रहा था कि ये जंजीर लो और इसके मुंह में डालो और मुंह में डालकर ये जंजीर इसकी शर्मगाह से निकालो, इतना सख्तरीन अज़ाब, इतना सख्तरीन अज़ाब। वइज़ल मय्यतु यकूल या रब अलम अकुन अक्रअुल कुरान। वो मय्यत पुकार पुकार के कह रहा था, या रब्बी अलम अकुन अक्रअुल कुरान, क्या मैं कुरान नहीं पढ़ता था, व अलम अहुज्ज बैतक अल हराम, या रब हे मेरे रब क्या मैंने बैतुल्लाह का हज न किया, वजअला यउद्द अफआल अल बिर्र शैअन बाद शैअन, और वो मुसलसल अपनी नेकियां गिनवा रहा था कि मेरे मौला क्या मेरे वो नेकी न की, क्या मैंने फलां नेकी न की, क्या मैंने वो अच्छा काम नहीं किया, वो अच्छा काम नहीं किया। इतनी नेकियों के बावजूद मुझे इतना सख्त अज़ाब दिया जा रहा है, मैं इतनी तकलीफ में हूं, अज़ाब में। इस क़ाइल यकूल कुंत तफ़अल ज़ालिक ज़ाहिर, हाँ ये हकीकत है कि तू ये सारी नेकियां करता था लेकिन जाहिर में जल्बत लोगों के सामने, लोगों की निगाहों के सामने। फ़ाइज़ा खलौता बारस्तनी बिल मासी वलम तुराक़िबनी, लेकिन जब तू तन्हा होता अकेला होता खलबत में जाता तो फिर गुनाहों के लिए मुझसे लड़ा करता जंग करता और तुझे मेरा डर डर होता, लोगों के सामने तेरा एक रुख था, तन्हाई में तेरा दूसरा रुख था, लोगों के सामने अलग चेहरा था, जब तू तन्हा होता तो फिर अलग चेहरा होता, इसलिए तूने गुनाह करके अपने रब से ऐलान जंग किया है, तू मुझसे खलबत में नहीं डरा, तन्हाई में नहीं डरा, तेरी खलबत अलग थी जलबत अलग थी, लोगों के सामने चेहरा अलग था, और लोगों से जब पोशीदा हो जाता ओझल हो जाता तो फिर चेहरा अलग था, इसलिए तुझे ये अजाब दिया जा रहा है कि जंजीर मुंह से निकालकर शर्मगाह

में मुंह में डालकर शर्मगाह की तरफ से निकाली जा रही है। इतना सख्तरीन आजाद। नौजवान सोशल मीडिया यूज करने वाले, फेसबुक यूज करने वाले अच्छी तरह इस मैसेज को जहन नशीन कर लें, जो पूरी रात गुनाहों में, पूरी रात गुनाहों में बसर करते हैं। और बाज नादान तो इतने नादान हैं, कभी शबे जुम्मा, जुम्मातुल मुबारक की मुबारक रात को भी गुनाह होना होते। वो रात जो इबादत की रात है, वो रात जिसमें अल्लाह के अनवार बारिश की तरह बरसते हैं, वो रात जिसमें अनवार इलाही बारिश की तरह चमा चम बरसते हैं, उन रातों में भी ये नादान गुनाह होना होता है। फजर तो फजर, बाजों को जुम्मा पढ़ना भी नसीब नहीं होता, इसलिए कि गुनाह में डूब गए, गुनाह ने घेर लिया, गुनाहों का अंधेरा उसके सामने भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। वो जिस सिम्त, जिस डायरेक्शन में जाता है, हर सुर गुनाह ही गुनाह, बदकारियां आ गई। इसलिए नौजवान होश में आ जा, तुझे हमेशा इस दुनिया में जीना नहीं है, हमेशा जीना। पूरी रात ख्वाब गफलत में सो जाना, फिर पूरा दिन अल्लाह से गाफिल, अल्लाह की याद से गाफिल, उसके हबीब से गाफिल, उसकी हबीब की याद। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया, खौफ खुदा शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह का डर न रहा, ताजदार कायनात से हया न रही, ये जवानी सूरज की तरह, जिस तरह सूरज ढल जाता इस तरह ये जवानी भी बहुत जल्द ढल जाएगी। लेकिन उन गुनाहों का क्या होगा जो आपने जवानी शबाब में किए, उन गुनाहों का क्या होगा जो आपसे जिंदगी में हुए। इसलिए लोगों, जलवत व खलवत को यकसा बना लो, यही विलायत, यही विलायत, यही ताजदार कायनात की तालीमात का खुलासा है, यही औलिया का तरीक, यही बैत का मकसद है। अगर बैत के बाद आप जलवत में भी गुनाहों से बचे, खलवत में भी गुनाहों से बचे, तो आप बैत के मकसद को पा गए। लेकिन बैत के बावजूद भी अगर आप गुनाहों से ना बचे, बेअत में ये कलिमात भी होते हैं कि गुनाहों से बचें, जब मुर्शिद बेअत करता है तो उस वक्त ये कलिमात पढ़ाता है। लेकिन अगर गुनाहों से न बचे तो इसका मतलब ये है कि वो सब बेकार है, बेअत का मकसद फौत। और ये दुआ हमेशा पढ़ाता है। पिछले जुम्मतुल मुबारक को मैंने बहुत डिटेल से बताया था इस दुआ के हवाले से, बड़ी आसान दुआ है अपने लिए, पूरी उम्मा के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका من عذاب القبر والله I seek your protection from the punishment of the grave. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر برحق ہے۔

0: फिर आपको मालूम है दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी है। गुनाह में अगर मजा आ भी गया तो वो चंद लम्हों का मजा है, चंद लम्हों की लज्जत है। लेकिन आपको नहीं मालूम फिर इस पे अजाब कितना होगा, तकलीफ कितनी होगी। अगर कब्रिस्तान वालों के हाल लोगों के सामने खुल जाए, कब्रिस्तान वालों के लोगों के अहवाल उन कब्रों में जहां तरह तरह का अजाब हो रहा है वो लोगों के लिए आयाम हो जाए, तो वो फिर उसे बर्दाश्त न कर सके, वो इस शिद्दत से वो भी दुनिया से चले जाए। इसलिए सुबह शाम नमाज में भी दुआ पढ़े और वैसे भी ये दुआ पढ़ो, इसलिए कि गुनाहों से बचना ये फकत अल्लाह की तौफीक से हो सकता है, अल्लाह ही की तौफीक से होता है। इसलिए आप पढ़ते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसका मतलब ये कि नेकियों की तौफीक और गुनाहों से बचने की तौफीक ये फकत अल्लाह ही अता फरमाता है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया करें, रोया करें और फकत नेकियों को न देखें कि आपने इतनी नेकियां की हैं, इतने हज किए, इतने उमरे किए, तहज्जुद पढ़ी, कुरान इतने खत्म किए, इतने खैरात किए, इतने नेक लोगों की खिदमत की। फकत इसको न देखें, ये पहलू भी देखें कि आप किस किस गुनाह से बचे और किस किस गुनाह में मुब्तला है। इसलिए जुम्मतुल मुबारक के बाद दो रकात सलातु तौबा पढ़े, इस नियत से कि मौला हम पिछले गुनाहों से तौबा करते हैं, उन सब गुनाहों से स्पेशली जिनसे कब्र का अजाब होता है, जिनसे दोजख का अजाब होता है, और वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा गुनाहों से बचेंगे। अल्लाह पाक अपने हबीब अलैहिस्सलाम के तुफैल हमें सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, नेकियों की तौफीक दे, बदियों से बचाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना हमें रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद व मा अलैना इल्ला।
1: सामीन, जुमे के मुबारक मौके पर हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी दामत बरकत उमालिया ने जिस उन्वान पर ख़िताब फरमाया वो रहा अजाब कब्र से, अजाब कब्र के असबाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद ऐलानात समाप्त कीजिए। हज़रत अशरफ़ मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ़ुल जीलानी दामत बरकतों माला अगले 30 जुलाई को अलक्सा मस्जिद में होंगे, जहां पर हलक़े ज़िक्र और वाज़ का अहतमाम है, और उसी और उसके अगले दिन जुम्मा 31 जुलाई को सलातुल ईशा के बाद मस्जिद तैबा पॉम्प्लेमस में होंगे, जहां पर रूहानी महफिल में आपकी शिरकत होगी। और फिर याद रहे कि अगले 5 अगस्त को हुजूर साहिब सज्जादा क़ायद मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद शाह महमूद अशरफ़ुल जीलानी सज्जादा नशीं मॉरिशस आ रहे हैं 28 सालों के बाद, और आप मॉरिशस पहुंच रहे हैं 1:15 बजे। इंशाल्लाह इनके जो तमाम प्रोग्राम है हम आपको बताते रहेंगे, और ये तमाम प्रोग्राम द सुन्नी सेंटर एंड महबूबुल उलमा अकादमी की जानिब से इनकाद पज़ीर होगा। आज नूर ईमान में आप देख सकेंगे आरएम गार्डन थियानों में, जिस अलक्सा सुन्नी सेंटर की जानिब से जिस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया था रहमतुल्लिल आलमीन, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकेंगे नूर ईमान में आज तकरीबन 8:30 बजे MBC 9 पर, और उसके फौरन बाद हाइलैंड्स में मुनाकिदा ज़िक्र औलिया की वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकेंगे। ये रहे चंद ऐलानात, आइए मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़े गए

बिलयकीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होगा कब्र में, मगर एक हकीकत ये भी है कि हम कब्र में इस तरह जाएं कि हमारे आमाल भी अच्छे हों। मौत इंसान को ये याद दिलाती है कि एक दिन अपने रब के हुजूर हाजिर होकर अपने आमाल को, अपने आमाल का, अपने एक्शंस का हिसाब देना है। लिहाजा हर एक बंदे मोमिन को चाहिए कि वह हर वक्त तौबा, तकवा और नेकी के रास्ते पर कायम रहे ताकि उसका खातिमा ईमान पर हो और वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का मुस्तहिक बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम का फरमान आलिशान है, अक्सर मौत को याद किया करो क्योंकि ये लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली है।

बस दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हमारा खातिमा बिलखैर हो, हुस्ने खातिमा हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को संभालें और अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान के साथ खातिमा बिलखैर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगली मुलाकात तक अनुर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आप तमाम सामीन को ये शाम मुबारक। आप साथ दे रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहर पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हसीन प्रोग्राम। जी हाँ अज़ीज़ सामीन, गीत और गज़ल का ये हसीन प्रोग्राम जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं आपका खुशामदीद है। तो चलिए ये पहला तराना आपके नाम करते हैं।

आज की ये शाम है मोहब्बतें भरी यारों के नाम, जहां हर नख्मा एक कहानी सुनाएगा, हर गज़ल दिल के तारों को छेड़ेगी ज़रूर, और मौसीकी के हसीन रंग आपके दिलों को सुकून अता करेंगे। कहते हैं कि कुछ धुनें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और भी हसीन हो जाती हैं। निगाहें वो ज़बान हैं जो खामोश रह कर भी दिल का हाल कह देती हैं। नज़र से नज़र का जो पैगाम होता है, वही मोहब्बत का पहला सलाम होता है। लता मंगेशकर।

वैसे है दोस्त, ज़िंदगी के सफ़र में अगर कोई सच्चा हम सफ़र साथ चलने का वादा कर ले तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, परवीज़ा का साथ है गीत और गज़लों के इस हसीन सफ़र में। किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं बल्कि किसी के साथ निभाने, हौसला देने और वफा करने का नाम है। लेकिन गैरों से क्या गिला करें, ज़ख्म तो अपनों ने दिए, जिनसे वफा की आस थी वही दिल को रुला गई।

महफिल गीत और गज़ल में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं, जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं। मज़ीद सामीन, ज़िंदगी के सफ़र में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और मज़बूत हो जाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनकी तब्दीली हमें हैरान कर देती हैं। रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, टूटने की आवाज़ तो आती है मगर बिखरने का दर्द सिर्फ दिल महसूस करता है। अनजान साहब का कलाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में समाप्त फरमाइए।

दिल भी अजब चीज़ है ना, उसे मोहब्बतें मिले तो फूल की तरह खिल उठता है, और अगर ठोकर लग जाए तो शीशे की तरह बिखर जाता है। इसीलिए दोस्त, बोलने से पहले सोच लिया करें, क्योंकि टूटा हुआ शीशा तो शायद बदला जा सकता है, मगर टूटा हुआ दिल आसानी से नहीं जुड़ता। वैसे तो मोहब्बतें का सफ़र अल्फाज से आगे निकल जाए तो हर आह भी गज़ल और हर खामोशी भी नख़मे बन जाती हैं। पेश खिदमत है फ़ारसी और ब्रिज भाषा का हसीन इम्तिजाज, दिल को छू लेने वाली शायरी और ऐसी धुन जो बरसों से हम सब के दिलों पर राज कर रही है। मुलायजा फरमाइए।

महफिले गीत और गज़ल का ये दिलावे सफ़र अपनी तमाम तरल लताफत के साथ जारी हैं। मज़ीज़ामीन, गज़लों की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि दिल के अंदर उतर जाती हैं। उनमें एक नाम जगजीत सिंह साहब का भी है, जिनकी आवाज़ में दर्द भी था, वकार भी और दिल को सुकून देने वाली एक अजीब सी मिठास भी। कहते हैं ना, आँखों की ज़बान समझने वाले कम ही मिलते हैं, वरना खामोश निगाहें भी हज़ारों बातें कह जाती हैं। पेश खिदमत है एक ऐसी लाजवाब गज़ल जो अपने गहरे एहसासात, दिलकश शायरी और जगजीत सिंह की पुरसोज आवाज़ की वजह से हर दौर में पसंद की जाती रही है। समाम फरमा।

बेशक जिंदगी में कामिल खुशियां या कामिल रास्ते शाज़ व नादिर ही मिलते हैं, मगर हर लम्हा हमें सुकून, मोहब्बत और उम्मीद के छोटे छोटे लम्हे ज़रूर देते हैं। लेकिन ऐ दोस्त, याद रखें कि ज़िंदगी का हुस्न उसमें है कि हम छोटे लम्हों की कदर करें और हर तजुर्बे से कुछ सीखें। हमारी आज की आखिरी पेशकश अजीम गुलकार भूपिंदर सिंह की सदा में। गर जिंदगी में खुशी और गम के लम्हे आते हैं तो जुदाई के लम्हे भी आते हैं, और ऐसे लम्हात दिल में बस जाते हैं, यादें और एहसासात बनकर। लेकिन हमारा मानना है कि जिंदगी में जुदाई लम्हाती होती हैं और मिलने की उम्मीद हमेशा दिल को तस्कीन देती हैं। और यूँ इख्तिताम पजीर होता है आज का हमारा गीत और गज़ल का ये प्रोग्राम, मगर यादें और मौसीकी हमेशा आपके दिल में ज़िंदा रहेंगी। हमें यकीन है कि हर गीत और हर गज़ल ने उम्मीद, मोहब्बत और जज्बात की खुशबू बिखेर दी है आपकी ज़िंदगी में। परवीज़ और अंजू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: शुक्रवार 24 जुलाई 2026 के सायंकालीन समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस में जल संकट की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बारिश की कमी के कारण जलाशयों का स्तर सामान्य औसत से काफी नीचे पहुंच गया है और आने वाले दिनों में और पाबंदियां लागू की जा सकती हैं। अमरीका को निर्यात किए जाने वाले मॉरिशस के उत्पादों पर अब कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा। अमरीकी प्रशासन के इस फैसले से मॉरिशस के निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की उम्मीद है। मॉरिशस में कथित टेलीफोन निगरानी उपकरण खरीद मामले की जांच जारी है। पूर्व आईएसटी मंत्री दीपक बालगुबीन से आज सीसीआईडी ने गवाह के रूप में पूछताछ की। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच जेगोगोशिया एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। ईरान पर अमरीकी हमलों, हूती विद्रोहियों के दावों और ईरानी संसद की टिप्पणी ने क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक बाजारों और मॉरिशस पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में बात करें तो स्कॉटलैंड ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। पहले ही दिन मॉरिशस के मुक्केबाज जिगी अगाथ ने शानदार जीत दर्ज कर अपने अभियान की सफल शुरुआत की। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मॉरिशस में जल आपूर्ति की स्थिति पर अब भी दबाव बना हुआ है। मॉरिशस की कमी बारिश की कमी के कारण देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य औसत से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल पानी की कटौती मुख्य रूप से केंद्रीय पठारी क्षेत्रों यानी के सेंट्रल पेनविलियम्स तक सीमित है। हालांकि यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो जल संरक्षण के लिए अन्य प्रतिबंधात्मक उपाय भी लागू किए जा सकते हैं। अमरीकी प्रशासन द्वारा आज जारी की गई नई शुल्क सूची के अनुसार अमरीका को निर्यात किए जाने वाले मॉरिशस के उत्पादों पर अब 0% आयात शुल्क लागू होगा। नई शुल्क व्यवस्था 60 देशों पर लागू की गई है जिनमें चीन, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और भारत शामिल हैं। हालांकि पहले 10% शुल्क के दायरे में रहा मॉरिशस अब इस सूची से बाहर कर दिया गया है। इस निर्णय को मॉरिशस के निर्यातकों और उद्योग जगत के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मॉरिशस के उत्पादों को अन्य देशों की तुलना में अमरीकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। इस पर हम हमारे अन्य बुलेटिनों के दौरान फिर से वापस आएंगे। मॉरिशस के पूर्व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी मंत्री दीपक बालगुबीन से आज सीसीआईडी ने गवाह के रूप में पूछताछ की। जांच के दौरान उनसे उनके मंत्री कार्यकाल में संसद से पारित एक कानून के संबंध में जानकारी मांगी गई। ये पूछताछ कथित टेलीफोन निगरानी उपकरणों की खरीद से जुड़े मामले में चल रही पुलिस जाँच के तहत की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: दीपक बालगोविंद के साथ सेंट्रल सीआईडी में एक घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। उनके साथ उनके वकील रवि यगादू और सुदेश कालीचंद मौजूद थे। पूर्व आईसीटी मंत्री से वायर टेपिंग घोटाले के मामले में पूछताछ की जा रही है। उनके वकील के अनुसार दीपक बालगोविंद से 2021 में पारित किए गए एक कानून साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम एक्ट

2021 के बारे में जानकारियां मांगी गई। रवि यगीगादू कहते हैं, एक जांच चल रही है जिस पर हम अभी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। अभी के लिए हम बस इतना कहेंगे, जब दीपक बाल गोविंद मंत्री थे तो उन्होंने सभी अन्य मंत्रियों की तरह संसद में कुछ विधेयक प्रस्तुत किए थे। इस मामले का संबंध इसी तरह के एक बिल के साथ है जो उन्होंने राज्यसभा में

0: अच्छी तरह से बीती, मेरे मुवक्किल ने अपना पूरा सहयोग दिया। सेंट्रल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने तथाकथित मुस्तस्लीक मामले की जांच शुरू की है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वायर टेपिंग उपकरण खरीदने की मंजूरी किसने दी थी और क्या इसके इस्तेमाल के दौरान सही प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। ये बात उल्लेखनीय है कि इस मामले में काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख ACP लीलराम दियाल को गिरफ्तार किया गया था।
1: मॉरिशस का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आम जनता के साथ अपने संपर्क को और मजबूत बनाने तथा अपनी सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नई पहल कर रहा है। हर वर्ष सैकड़ों मॉरिशन अपने अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने या विभिन्न विवादों के समाधान के लिए आयोग से संपर्क करते हैं। आयोग की कार्यप्रणाली को समझने के लिए एबन हाइट्स में उसके मुख्यालय में एक शिकायत की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया गया, जिसमें शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके विस्तारण तक की कार्यवाही को प्रस्तुत किया गया। दो वर्षों तक चले नवीनीकरण कार्य के बाद पोर्टलुइस के जीतू अस्पताल का शवगृह दोबारा संचालित होने लगा है। इस अवसर पर देश के 8 सार्वजनिक शवगृहों की कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला गया। इन शवगृहों में पार्थिव शरीरों के सुरक्षित संरक्षण, विभिन्न अस्पतालों के बीच उनके स्थानांतरण तथा लावारिस शवों के रख रखाव और अंतिम व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि ये सेवा सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके कार्यप्रणाली आम लोगों की नज़रों से प्रायः दूर रहती है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि ग्रेट ब्रिटेन जेगो गौशा को खो सकता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब तेहरान, वॉशिंगटन और लंदन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इस टिप्पणी के बाद हिंद महासागर स्थित जेगो गौशा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। जेगो गौशा और शागोस द्वीप समूह का हिस्सा है, लंबे समय से मॉरिशस की संप्रभुता और क्षेत्रीय दावों से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक संबंधों और मॉरिशस के हितों पर इसके क्या संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं। मध्य पूर्व का संकट, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर बढ़ते हैं। मध्य पूर्व का संकट अब एक नए चरण में पहुंच गया है। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों के लगातार 13वें दिन यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर में, यानी कि रेड सी में, सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के इस दावे के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। इस बढ़ते संकट का असर पहले ही वैश्विक बाजारों पर दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है और तेल का एक बैरल अब 100 अमरीकी डॉलर से अधिक पर पहुंच गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी तथा अन्य जानकारी इस रिपोर्ट में।
0: भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भीषण गर्मी की लहर के कारण यूरोप भर में आपातकालीन सेवाएं जंगल की आग से लगातार मुकाबला कर रही हैं। गुरुवार को इटली, फ्रांस और स्पेन में हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में भीषण जंगल की आग अभी भी सुलग रही थी। दक्षिण पूर्वी स्पेन में खतरनाक रेड हीट की चेतावनी जारी की गई है, जहाँ गुरुवार को वाल डेल अल्मांजोरा और अल्मेरिया में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की उम्मीद है। मध्य स्पेन के ग्वाडालाजारा में 32 भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भीषण गर्मी की लहर के कारण यूरोप भर में आपातकालीन सेवाएं जंगल की आग से लगातार मुकाबला कर रही हैं। गुरुवार को इटली, फ्रांस और स्पेन में हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में भीषण जंगल की आग अभी भी सुलग रही थी। दक्षिण पूर्वी स्पेन में खतरनाक रेड हीट की चेतावनी जारी की गई है, जहाँ गुरुवार को वाल डेल अल्मांजोरा और अल्मेरिया में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की उम्मीद है। मध्य स्पेन के ग्वाडालाजारा में 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जल चुकी है। 34 गांवों से लोगों को निकाला गया और स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि पानी गिराने वाले विमानों ने घरों को जलने से बचाने में कामयाबी हासिल की है। गुरुवार को फ्रांस के

0: अटलांटिक तट के साथ स्थित कस्बों और हॉलीडे रिजॉर्ट्स से लगभग 20,000 लोगों को निकाला गया क्योंकि जंगल की आग की श्रृंखला में ताजा आग भड़क उठी और इस आग से निपटने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मियों को तैनात किया गया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बोदो के दक्षिण पश्चिम में लैश कापफेरे शहर के पास एक जंगल में लगी आग 31 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैल गई थी। पेरिस क्षेत्र से भेजे गए दमकल कर्मियों सहित लगभग 700 दमकल कर्मियों को तैनात किया गया था। जंगल के किनारे रहने वाले 1,000 से अधिक निवासियों के साथ साथ हॉलीडे कैंप और कैंप साइट्स में ठहरे पर्यटकों सहित 10,000 से अधिक लोगों को रात भर में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर सिसिली में दमकल कर्मियों ने शनिवार से 1,000 से अधिक बार जंगल की आग बुझाने के अभियान चलाए हैं और आग से मुकाबला करने के लिए डबल शिफ्ट में काम किया है। पालमो में तापमान के 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने और शाम को भी 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे न गिरने के कारण आपातकालीन सेवाओं पर भी भारी दबाव आ गया है। हवा ने आग की लपटों को और भड़का दिया है जिससे जमीन राख में बदल रही है और घरों तथा व्यवसायों को खतरा पैदा हो गया है।
1: और जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि ग्रेट ब्रिटेन जेगु गौशा को खो सकता है। इस पर ज्यादा विस्तार से इस रिपोर्ट में।
2: ये मुमकिन है कि ग्रेट ब्रिटेन अपनी दूसरी कॉलोनियों की तरह जेगु गौशा पर भी अपना नियंत्रण खो दे। यूनाइटेड किंगडम के लिए बेहतर होगा कि वो अपनी सीमाओं की कमजोरी को असलियत के नजरिए से देखे और समझे कि इस्लामिक रिपब्लिक की ताकत मात्र उसकी सैन्य ताकत तक ही सीमित नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये धमकी इब्राहिम अजीजी की तरफ से आई है। ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के चेयरपर्सन और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर ने 23 जुलाई को एक्स पर यह संदेश पोस्ट किया। ये बयान सीधे यूनाइटेड किंगडम को निशाना बनाता है। तेहरान का आरोप है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए जेगु गौशा मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। वहीं बरतानी सरकार का कहना है कि वो 2400 घंटे और 7 दिन अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हैं।
3: Now the big question is, did Iran fire long-range missiles at Diego Garcia base?
2: ये पहली बार नहीं है जब इस संदर्भ में जेगु गौशा का जिक्र हुआ है। पिछले साल मार्च महीने में जब तनाव चरम पर था तो लंदन ने बताया था कि सैन्य अड्डे की तरफ दो मिसाइलें दागी गई हैं। बरतानी और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक मिसाइल अपने निशाने तक पहुंचने से पहले ही समंदर में गिर गई जबकि दूसरी को रोक दिया गया था। हालांकि ईरान ने किसी भी तरह की जिम्मेदारी से इनकार किया था। जेगु गौशा ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। हालांकि ईरान की जानी मानी बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे शहाब 3 या खुर्रम शहर जरूरी नहीं कि सीधे हमले को मुमकिन बनाती हों, लेकिन तेहरान के पास दूसरी क्षमताएं भी हैं जिनमें लंबी दूरी के ड्रोन और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं जो उसकी ऑपरेशनल पहुंच को बढ़ा सकती हैं।
1: मॉरिशस में ग्रैंड थॉर्नटन ने अपने कारोबारी विस्तार के तहत नई पहचान और विस्तृत सेवाओं की घोषणा की है। इस संबंध में गुरुवार 23 जुलाई को पोर्टली स्थित लुलाबोद ने होटल में आयोजित कार्यक्रम में समूह के वरिष्ठ अधिकारियों ने कंपनी की नई रणनीति की जानकारी दी। पिछले 16 वर्षों से मॉरिशस में कार्यरत GPU लिमिटेड अब ग्रैंड थॉर्नटन मॉरिशस लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। कंपनी के अनुसार ये बदलाव केवल नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं है बल्कि इसके साथ सेवाओं के दायरे का भी विस्तार किया गया है। अब कंपनी 4 प्रमुख क्षेत्रों ऑडिट परामर्श यानी कंसल्टिंग टैक्सेशन और आउटसोर्सिंग सेवाओं में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी का उद्देश्य मॉरिशस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी स्थिति को और मजबूत बनाना है। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्थित ओवो हाइड्रो अरेना में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ खेलों का आधिकारिक उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों की रंगारंग मार्च पोस्ट रही। 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले इन खेलों में इस बार 74 देश और क्षेत्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में लगभग 3000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जिनमें मॉरिशस के करीब 40 खिलाड़ी भी शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में ब्रिटेन

0: की राजा चौल्स तृतीय और रानी कैमेलिया भी उपस्थित रहे।
1: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ओवो हाइड्रो अरेना में पारंपरिक खिलाड़ियों की परेड से पहले की ये गूंज खेलों को आगाज देती है।
2: Mauritius.
3: Boxer Fabrice Valerie and swimmer Anisha Tilok lead out Mauritius, who had a record-breaking Birmingham 2022 with 5 medals won. The Mauritian flag is one of only 2 in the world with 4 horizontal lines. Red represents the struggle for freedom, blue is its Indian Ocean home, yellow the shining light of independence, and green the year-round colour of its beautiful landscape. A fitting flag for this Commonwealth garden.
1: मॉरिशस के डेलीगेशन में मुख्य रूप से वहां पर बॉक्सिंग और स्विमिंग के खिलाड़ी मौजूद थे, जिनका प्रतिनिधित्व फैब्रिस वालिया ने किया। प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख रिशा पापी और मिशन के प्रमुख फैसल बंधन हैं। उनके साथ इन खेलों में भाग लेने वाले 74 देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इन खेलों में लगभग 3,000 खिलाड़ी 10 खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

0: स्टेडियम में मौजूद 13,000 दर्शकों और दुनिया भर में करोड़ों टीवी दर्शकों ने स्कॉटलैंड की संस्कृति और परंपरा से भरपूर एक शानदार उद्घाटन समारोह का आनंद लिया। संगीत कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार टॉम वॉकर, केटी टर्नस्टॉल, कलम बियाती और नीना नेस्बिट मंच पर उतरी। राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कमिला भी समारोह का हिस्सा बने, जिसके बाद औपचारिक कार्यक्रम हुआ। किंग चार्ल्स तृतीय ने 23वें कॉमनवेल्थ खेलों की औपचारिक लॉन्चिंग की। अब सभी की निगाहें प्रतियोगिताओं पर हैं, जो 2 अगस्त तक चलेंगी।
1: विवरण अभी याचना मिश्रा का रहा। राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस के 24 वर्षीय मुक्केबाज जिगी आगात ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। 65 किलोग्राम से कम भार वर्ग में जिगी आगात का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के जिमेसी सिमामकेले से हुआ। मुकाबले के दूसरे राउंड में रेफरी ने प्रतिद्वंदी की स्थिति को देखते हुए मुकाबला रोक दिया और जिगी आगात को विजेता घोषित कर दिया। समाचार बुलेटिन के अंत में हमारे पूर्व सहयोगी धनराज बुलक को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनका आज 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। धनराज बुलक ने वर्ष 1988 में मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में हैंडी वॉकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। वर्षों की समर्पित सेवा के दौरान उन्होंने कई जिम्मेदारियाँ निभाईं और अंततः ऑडियो विजुअल असिस्टेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। MBC परिवार की ओर से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस कठिन समय में उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं मौसम की हाल की ओर याचना मिश्रा के साथ।
0: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा। कल दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरा सकते हैं। अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 12 से 14, अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:43 पर, शाम को सूर्यास्त 5:50 पर होगा।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग मिला है और कंसल पर हमारे सहयोगी लुदविक का भी, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर।

0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Choxon Chassonier, Rivière Baptiste Road, La Laura Saint-Pierre, Rivière Baptiste Road, La Laura Saint-Pierre, 61 साल की, 61 years old की श्रीमती विमला गंगा बिसुन, श्रीमती विमला गंगा बिसुन पैदाश नाम बिफन और जिन्हें स्वतिका के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर ला लोरा सैंपियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय ब्लांश की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 1 PM। ला मेरे उकुलेमें 67 साल के, 67 years old के श्री धनराज बुलक जिन्हें दान के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती नीता बुलक के घर उकुली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। मॉस्को रोड रोजबेल में 95 साल की, 95 years old की श्रीमती पुष्मावती भरत पैदाश्रम रामजावन और जिन्हें इंद्रावती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे ससिराज भरत के घर रॉसबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मैगजानी रॉसबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड पुचिराफे में 58 साल के, 58 years old के श्री महावीर दिहोल जिन्हें जॉ के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके भाई विशाल दिहोल के घर पुचिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। 75 साल के, 75 years old के श्री वेंकटाचार्य लिंगालू जिन्हें किसना के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे साज अस्पताल के मोचुअरी हाउस से निकालकर अंतिम संस्कार के लिए सैकड़ों सौ सैपिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2:30 PM। रेलवे रोड रिविया जो पोस्ट में 67 साल की, 67 years old की श्रीमती ललिता बिया सिंह पैदाश नाम गणपत और जिन्हें बिमला के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे गिरीश बिया सिंह के घर रिविया जुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौराबू रिविया जुपस की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। शनिवार 25 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक हाईलैंड्स में और आसपास के इलाकों में ओवाडाली लेन, मौसलमा, रहमिया, PHCE मार्केटिंग और आसपास के इलाकों में, और शनिवार 25 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 2:30 बजे तक कैथबोन और आसपास के इलाकों में एवेन्यू डिकाओ और रॉयल रोड, बेलरोज और चाइनीज एम्बेसी के आसपास के इलाकों में भी। शनिवार 25 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक आल्बियों और आसपास के इलाकों में आल्बियों फॉर, गामा आल्बियों, बीसेस ऑफ पंपिंग, पुल्ट्री सैराली और मौसलमा बेलव्यू में भी। और शनिवार 25 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 2:30 बजे तक सैंक्वा और आसपास के इलाकों में रू मारियामे

Temple, Desbouchés, Latanier, La Prairie, Canal Bathurst, Higginson, en Panthère à l'épée à Laval, और उदिन लेन में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और रविवार 26 जुलाई को सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वाक्वा और आसपास के इलाकों में जैसे कि होली रोड नंबर 1 और रूट 15 कैंटों नंबर 2, रूट दे वर्गुह और रूट लामारी, रूट बेग, रूट बनफिन, शमें रिजर्वोर, डूडी लेन, शमें लासोस, मुटू लेन और आसपास के इलाकों में भी। और रविवार 26 जुलाई को सुबह के 10 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक सेजियम मिल फॉरेस्ट साइड में और आसपास के इलाकों में मौसम दुमा में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। रविवार 26 जुलाई को सुबह के 8 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक सेजियम मिल फॉरेस्ट साइड और आसपास के इलाकों में जैसे मौसम दुमा और मार्जी रोड, रॉयल रोड, सेजियम मिल फॉरेस्ट साइड और रूल और आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और रविवार 26 जुलाई को कौशालो, शमें ग्रेनी और रिविया दे जोंगी में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपनी ग्राहकों से क्षमा चाहते और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: रॉयल रोड नुवेल फ्रांस के श्री अमरनाथ मंदिर द्वारा शुक्रवार 24 से रविवार 26 जुलाई तक सूर्य नारायण देव की मूर्ति स्थापन के संदर्भ में अनेक धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। शनिवार 25 को शाम 6 बजे हल्दी विधि का आयोजन किया गया है। रविवार 26 को प्राण प्रतिष्ठा और पूर्णाहुति किया जाएगा सुबह 8:30 बजे। कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शनिवार 25 जुलाई को पायोत के सेंटर दे फॉर्मेशन आर्टिस्टिक द्वारा इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में दिन के 9:45 से 12:30 बजे तक एक ओपन डे का आयोजन कर रहा है। रोजबेल के यूथ सेंटर में शनिवार 25 जुलाई को दिन के 9 से 3 बजे तक फैमिली हेल्थ डे का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत अनेक स्वास्थ्य चिकित्सा की जाएगी।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Welcome to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodhanandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर
9: बजले प्रभु का नाम। श्रोताओं, जब प्रभु का नाम भजते हैं ना तो अहंकार पिघलता है। क्यों?

पता चलता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अन्यथा व्यक्ति के भीतर यह अहंकार इतना बड़ा होने लगता है कि एक दिन मन कंस या रावण की तरह हो जाता है कि मेरे सामने दूसरा व्यक्ति है ही क्या। और जिस दिन अहंकार आ जाता है तब आदमी कानों में घंटियां पहन लेता है कि प्रभु का नाम सुनाई भी ना दे। तो श्रोताओं, बहुत जरूरी है प्रभु का नाम सुनना, प्रभु का नाम भजना, उनको याद करना। तो आइए इस भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, प्रभु का नाम जिसने भी लिया उसका जीवन सफल हो गया। वह चाहे बालक ध्रुव था, प्रहलाद था, हनुमान थे या शबरी या सुदामा, सभी ने जो प्रभु के प्रति पूरी तरह से श्रद्धामय होकर जी रहे थे, मानो उन्होंने जीवन को सफल कर लिया। तो सबसे पहले नाम स्मरण और नाम स्मरण के साथ मन में श्रद्धा। श्रद्धा से भक्ति पैदा होती है और भक्ति से हम दूसरों की सेवा की ओर बढ़ते हैं। आइए सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, भजने का मतलब है बार बार याद करना। जैसे छोटे बच्चे को आप जिस समय कुछ सिखाते हैं, टेबल या कुछ फॉर्मूलेज, तो हम क्या कहते हैं?

हैं, बार बार इसे पढ़ो, बार बार याद करो, क्योंकि यह फिर प्रैक्टिकल तुम्हारे काम आएंगे। ठीक ऐसे ही जब हम प्रभु का भजन बार बार करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो जीवन के युद्ध में वह नाम स्मरण हमें शक्ति देता है और हम बड़ी से बड़ी कठिनाई को मुस्कुराते हुए पार कर जाते हैं। आइए सुनते हैं इस भजन को।

0: श्रोताओं, हमें तो पता भी नहीं चलता प्रभु आकर कैसे हमारी मदद कर जाते हैं। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, तो कभी किसी वस्तु के रूप में, कभी समय के रूप में, तो कभी साथी के रूप में, और हमारे काम को आसान करते हैं, हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे मन को मजबूत करते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, बस समस्या वहीं पर शुरू होती है। चाहे दुख हो सुख हो, यदि पूरा विश्वास हो प्रभु पर, तो वे प्रभु साथ ही रहते हैं। तो श्रोताओं, उनका भजन करना, नाम स्मरण करना, यह ताकत है। तो आइए उन्हीं का एक भजन सुनते हैं। बस उसी के साथ अलका धनपत और शिव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: भगवान राम की वो अवस्था है, वो आयु है कि अभी चलना सीख रहे हैं। ठुमक ठुमक कर चलते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। देखे ये भाव गाकर किस प्रकार दिखाया जा सकता है।

की तुलना किसी वस्तु से करना चाहते हैं। अन्य कोई कवि होता तो कह देता भगवान राम के मुख जैसा कमल है या चंद्रमा है या सूर्य है, किसी भी तेज वस्तु से या सुंदर वस्तु से तुलना कर देता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई ऐसी वस्तु नजर ही नहीं आ रही जिससे वो भगवान राम के मुख की तुलना करें। बहुत सोचा और अंत में हार कर यही कह दिया कि भगवान राम के मुख जैसा केवल भगवान राम का ही मुख है और कुछ नहीं।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मीडियम वेव 819 किलो हर्ट्ज पर ये रेडियो मॉरिशस है। परवीज आपसे मुखातिब है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी रहमत शफाए मशर मालिक दो जहां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप तमाम सामीन खैर आफियत से हैं। जहां से भी आप हमारे साथ निभा रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। तो आइए मज़ीद सामीन, उर्दू नशरियात बनाम महफिल शब का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत हमद कलाम के साथ, जो हमारे दिलों को रूहानियत और सुकून से भर दे।

वही है अव्वल, वही है आखिर, वही हकीकत, वही है जाहिर। मुझे रास्तों से मत डराओ ऐ दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब्बे करीम है। इस्लाम महज इबादात का मजमुआ नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को अपने अल्लाह, अपने दीन, अपने वादों और अपने किरदार के साथ वफादार रहने की तालीम देता है। मज़ीद सामीन, इस्लाम की नज़र में वफा ईमान की इलामत है और हक पर साबित कदमी मोमिन की पहचान है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिनों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ अपना अहद सच्चा कर दिया।

ये रेडियो मॉरिशस है, परवीज़ा के साथ हैं रात के 9 बजे तक उर्दू नशरियात महफिल शब में। मज़ीद सामीन, साबित कदम रहना ये हुक्म सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक रहनुमाए उसूल है कि दीन पर इस्तिकामत इख्तियार की जाए, ख्वा हालात मुवाफिक हो या मुखालिफ। अल्लाह पर ईमान लाया फिर उस पर साबित कदम रहा। मज़ीद सामीन, ये मुख्तसर हदीस इस्लाम का पूरा रास्ता बयान करती है। ईमान लाना आगाज़ है लेकिन उस ईमान पर ज़िंदगी भर कायम रहना असल कामयाबी है। शामिल मोहतरम, वफा सिर्फ इंसानों के साथ नहीं सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ होनी चाहिए। नमाज की पाबंदी, क़ुरान से ताल्लुक़, हलाल व हराम की तमीज़, सच्चाई, अमानत दारी।

और हुस्न अखलाक, ये सब अल्लाह से वफा की अलामत हैं। या अल्लाह, हर हाल में हक पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा, हमारे ईमान को मजबूत फरमा, हमारे दिलों को इखलास से भर दे, हमें दुनिया व आखिरत में कामयाब अता फरमा, आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तकनीकी मदद अंजू की रही है, शुक्रगुजार हैं हम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: भोजपुरी तड़का तड़का।
1: नमस्ते के सब श्रोतालो के जहाँ हो बजा, खुश खुश रहिया जा, हंसते रहिया जा, मुस्कुराते रहिए।

थे जाए ही दुआ करे थे जाए और उम्मीद करे थे जाए कि आज सुख के दिन तो खातिर बहुत लाजवाब रहल और रात तो अभी लाजवाब रहे करी भोजपुरी के गाना तो लोग के सुनवाओ अब जा तनी कमट वमट कर ले अब जा अभी हमने के भोजपुरी तड़का तोहर नाम करे थे जा हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में भाग ले बजा तो 5251700 पर सक बजा हमने के मिसाज भेजे और जे टेलीफोने करे खोज बजा तो 4028085 पर सक बजा टेलीफोने करे और अपन पसंद के गाना के फरमाइश सक बजा करे भोजपुरी के वो गीत जन तो लोग बोल बजा उ तो लोग के सुनवाओ अब जा अभी देखा जाना ललिता चाची हमने से बोले हमन की सुनियन साजन के साड़ी गाना चला सुनीता ननकुज के गावली गाना हमने सुनी जा और ललिता चाची बगल से उनकर बहिन सुदेवी देवीना और ज्ञानी खातिर छोटी जी प्रभावती जी हरीश जी और आत्माराम जी खातिर बजवाओ अब जा और शुक्लाल मौसी खातिर और उषा लोकाना जी खातिर बजवाओ अब जा

चले अब बढ़ी जा हमने कोइरिन बगल कोइरिन धान रोपेला किसनवा कोइरिन हरदी रोपेला किसनवा धान रोपेला तलीलो माथुर जी बोलियन के कौनची रोपेलन और ये गाना हमने लीलो माथुर जी के आवाज़ में सुन अब जा अमृता जी के पसीन भर पीतों से अमृता जी गाना मंगल वन सोनिया और परी खातिर बेटा विशान और पतो मीनाक्षी खातिर और बेटी पूनम खातिर

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: कितना मजा आएगा ना माइक के इस पार बैठना। आप जरूर इस प्रोग्राम में, इस शो में भाग लीजिएगा और अपने एप्लीकेशंस भेजिएगा। इस समय 9:24 हुए हैं और ये हमने भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में क्या नहीं जाते हर खातिर भोजपुरी में जुन गाना अब रिकुद तो लोग सुन बजाई हम मीरा मोहन जी के गावल गीत और ये बड़े प्यार से गायत्री जी मंगले हवनी गाना। गायत्री जी पीछे वैसे सैम्पिया से गाना मंगले हवन अपन भौजी मीरा खातिर, उनकर बेटी गिरिशा और मेधा खातिर, अपन बहन अमृता खातिर, उनकर बेटी नेहा, क्षिति और दिव्या खातिर, बेटा सुधीर और कमलेश खातिर, बहू सुधा खातिर और हमने के सब श्रोतालु खातिर।

जहाँ छुपी रानी मोरी, किशोर कुमार रमेश सर जी के गावल गाना, और ये गाना हमने बजवावत है जा देव जी के फरमाइश पर, काहे देव जी मंगले हवनी गाना, उनकर पत्नी के नाम रानी है, तो उनकर पत्नी रानी के नाम करत हवनी गाना देव जी मोहदार बेसे।

चल, माता पिता के बतिया माने के बहुत जरूरी है, माता पिता के आदर करे के बहुत जरूरी है। ये हमनी के जीवन के एगो हिस्सा चाहना रहे कि हमनी के जीवन में हमनी के जीवन के हिस्सा माता पिता हमेशा से रहलन जा, और उनकर बुढ़ापा के समय में हमनी उनकर जीवन के हिस्सा बन जाब जा, तो जीवन ऐसने बड़ी खुशहाली से चलती रही। सुखी जीवन खातिर चाहे हमनी के गत जनरेशन और आवत जनरेशन सबके देखभाल करके बीतल जमाना और आवे होला जमाना दोनों के संभाल के रखबा, तो आज के जमाना बहुत शांतिमय रही। चला सुनी जा हमने मोहित दवा सिंह जी के गावल गाना, और हमने ये गाना बजवाओत है जा रेणुका जी के पसंद पर। रेणुका जी ये गाना मंगले हवन विजेश खातिर, उनकर बेटा हवन विजेश और उनकर बेटी सुनीता के नाम। तो चला सुनी जा ये गीत, हमने माता पिता के सेवा करे, माता पिता के आदर कर, माता पिता के गंती रखा।

जीवन में तनी दुख मिलेला तनी सुख मिलेला और जौन दुख ओकरा कैसो करके हमनी के ढाले के पड़ेला सुख बनाए के पड़ेला। चल अभी हमनी गरम गरम दाल कच्चू के बारे में सुनब जा, कुच्चा पीमा के अचार सब बाँटत हुआ जा, और जौन मेन्यू बा संतोष महादेव जी बाँटत हुआ। चल संतोष महादेव जी के गावली गाना हमनी सुनी जा, और ई गाना हमनी से मंगले हवन सुदेवी जी वाकवा से। सुदेवी जी मंगले हवन गीत अपन पूरा परिवार खातिर, दीदी ललिता जी खातिर और तयोले के कुशल परिवार खातिर, और संगे संगे ई गाना सुदेवी जी मंगले हवन आत्माराम भैया खातिर, दीदी सुनीता शोभा देवी ना खातिर, मालिका के राम रतन परिवार खातिर और हमनी के सब श्रोता लोग

संतोष महादेव जी के गावल गाना के बाद संतोष महादेव जी के गावल ही गाना उनका साथी कलाकार के साथ साथ ये गाना हमने से मंगले हवन फ्लिक ऑन फ्लाक के अनीता जी और ये अनीता जी गाना मंगले हवन अपन संगत यालो खातिर और अपन पूरा परिवार खातिर।

अभी हमने गाना सुनवा बब जाता है लोग अभी दानंद बीजन जी के गावल और ये गाना हमने बजाओ थे जा घोगुप के सुनीता जी के पसंद पर सुनीता जी मंगले होनी गाना कुंगुमा के अपन बहिन विमाला के नाम।

चटनी के तेगो लंबा सन लालिस दे देलन हमने क्या विदानंद बीजन जी चाह बढ़ी जाओ ब्रिकुत हमने बड़का मामा के बारे में सुनी जा बड़का मामा कौन ची करेला चला सुनी जा हमने सुदेश बोईजू जी से और इकाना सुने खुजा थवन मीरा बाई जी मौदाल बे ऐसे चला मीरा बाई जी बगल से गाना हमने बजवाए लजा पादिया परिवार खातिर दमिया परिवार खातिर उनकर बेटी और उनकर दामाद खातिर।

हमके बीतल दिन अभिमन्यु हरिपोल जी के गावल गाना ये गाना हमने बजावत है जा तेहूर से राधा जी के पसंद पर। राधा जी मंगले हुआ ये गाना अपन बहन विद्या के नाम।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
2: तो चलो भोजपुरी तड़का में तो हर स्वागत करत है जा, कहा कैसे जनबा अभी अभी तो लोग राजो दल्ले हो बजा तो बता देगा तो लोग कि अभी भोजपुरी तड़का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जा। हम से रेखा तो हर साथ देवत हैं और ही संगे संगे तो हर का तीर तो हर पसंद के गाना प्रस्तुत करत हैं। चलो सुनी जा हमने के अगला गाना, दादा दादी के कहानी, हम के पूर्वज के कहानी। हमने के पूर्वज लोग आ रलन जा तो तनी पीड़ा में रलन जा, काफ़ी पीड़ा में रलन जा, बहुत पीड़ा में रलन जा, बहुत दर्द से गुजरल हवन जा, बहुत दुख से गुजरल हवन जा। चला उन्हीं लोगन के कहानी सुनी जा हम निगासन सिंगारों जी के गावल और ये गीत हमने बजवावत है जानू अल्फोंस के गायत्री जी के पसंद पर। गायत्री जी मंगले हमारा पर बेटा अजय खातिर गाना, मेबक के अपन मामी कल्याणी मोहन जी खातिर और ये लॉन्ग माउंटेन के अपन भौजी शकुंतला जी खातिर, नुवेल फ्रांस के सखी गीता बाई खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: ये गाना हमने बजावत है जाहरी पारिस कहानाग जी के गावल रविंद्र जी गाना मंगले हवन गाँवे से अपन बेटा राहुल और अपन पत्तो स्नेहा के खातिर खास कर अपन बहू स्नेहा खातिर।

0: सब कोई के पतों के नाम करत हैं जा ही गाना और सब पतों लोग प्यार से रहियन यही उम्मीद करत हैं जा। भोजपुरी तड़का में तोहर पसंद के गाना चलावत हैं जा और भोजपुरी तड़का में तोहर पसंद के गाना तोहरा खुश कर दे यही उम्मीद करत हैं जा।
1: भोजपुरी तड़का
0: चलो मुर्गा मुर्गी के प्रेम कहानी सुनी जाए। प्रेम कहानी सुने खोजत हुआ महेन जी पालमा से। महेन भैया गाना मंगले हवन दीदी मान खातिर। चलो सुनी जाए गाना हमने मुर्गा मुर्गी के कहानी मुर्गा मुर्गी के लाजवाब प्रेम कहानी।

मुर्गा मुर्गी के प्रेम कहानी तो सुदेश बोईजू के आवाज में सुन ला जा। अब चलाई गो प्रेम कहानी हमने सुनी जा जयप्रकाश दुखित जी के गावल और प्रकाश दुखित जी के गावली गाना चला हमने सुनी जा रघु जी के पास इन पर रघु जी गाना मंगले हवन पिछित से ये गाना अपन पत्नी यादवी जी खातिर मंगले हवन।

जयहरलाल जी के गावली गाना हमने सुनी जा मच्छी मरवा। मच्छी मरवा के या फिर एगो कोनो मेहनत करे हो लालू के, कितना मेहनत करे के परेला, चलो सुनी जा जयहरलाल से। और ये गीत हमने बजवा दे जा बिंदिया जी खातिर। बिंदिया जी गाँव में रहलन और मच्छी मरवा लोग के खूबे देखेलन, उनकर जीवन खूब देखेलन। तब बिंदिया जी गाना सब मच्छी मरवा के नाम कर ले हवन।

जब हमने समुंदर के बात करीला जा, तो हमने अपन पर्यावरण के भी बात करीला जा। पर्यावरण पर जो गाना अभी हम सुनब जा, यह ईश्वरदत्त जीनिया जी के गावल, और ये गाना हमने बजावत है जा कातोबोन से मानती जी के फरमाइश पर। मानती जी गाना अपन तीन अपन चार गुसंगतिया खातिर मंगले हवन, सुचित्रा, हंसा, वीना और मेधा खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: और भोजपुरी तड़का में कुणाल हीरीलाल की आवाज़ गूंजे होला बात चला सुने जाओ नी। कुणाल हीरीलाल के गावल गाना और गीता जी गाना मंगले हो वन अपन तीन गो बेटा खातिर, अक्षय, माधव और शैलेश खातिर। तो चला सुनी जा हमने कुणाल हीरीलाल की आवाज़।

पुरखन की कहानियाँ, चला सुनी जा हमने ये गाना। और पुरखन के कितना याद आवेला, पुरखन के कितना हला धन्यवाद देवे के मन करेला। ये किशोर खिमिया हमने के सुनाई हन और ये गाना हमने बजावा थे जा रवि जी के पसंद पर। रवि जी गाना अपन भाई निवेद के नाम और बहिन सुदेवी के नाम करत हवन।

0: पुरखन के याद सच में बड़ा आवेला उनका देवला हमने के जो आजादी बा जो हमने के प्रगति बा सब हमने के पुरखन के देवला
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी के स्वाद संगीत के खुशबू सुरेखा संगीत भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का
0: तड़का बिकित लगाए जा हमने राधा के गाना संगे कृष्ण उखज जी गैले हवनी गाना और ये गाना हम इसे श्याम जी मंगलवन मोताय ब्लाउंस से अपन माता जी शकुन खातिर बहिन ज्ञानती और भाई आत्मा खातिर

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के समय है जहाँ पर पूरा हुआ था। अभी 55 मिनट हो बाद दस बज के पचपन मिनट के पर एगो अंतिम गाना तोल के सुनवावत है जहाँ हमने लाली लाली कान ब्लाते लागो लुई इफ्रीमान के गावल तफ्रीमान लागो के गावल गाना सुनते सुनते हमने के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का समाप्त हो जाए। बहुत धन्यवाद देवा हमने के सब श्रोता लोग के जे हमने के टेलीफोनी कर लन जा हमें सास भेजलन जा और ये कार्यक्रम के बहुत दिलचस्प बनाई लन जा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमने के श्रोता लोगन और हमने के कार्यक्रम के बाद सुनिए जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम पुराना पुराना गीत के बहुत मज़ेदार कार्यक्रम लेके गिनीशा आए हन आवत ला फिर मिलब जा। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Very good evening to all of you. नमस्कार जी, और गणेशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और शुरू हो चुका है आपका सुनहरे पल। तो आइए लौट चलते हैं उन खूबसूरत दिनों में जब बॉलीवुड के गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल में बसा लिए जाते थे। अगले कुछ घंटों तक साथ रहिए और महसूस कीजिए पुरानी यादों का जादू सिर्फ सुनहरे पल में।

हर गीत एक कहानी है, हर सुर एक याद है। दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वो अमर बॉलीवुड गीत जो आज भी दिल को छू जाते हैं। तो चलिए मिलकर यादों के इस सफर का आनंद लेते हैं। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

दोस्तों, अगर आप घर पर आराम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो या हो सकते हैं सफर पर हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए पुराने बॉलीवुड संगीत का खजाना। ये है सुनहरे पल, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, अगला नगमा खासकर आपके नाम।

कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बसी होती हैं हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत यादें। तो तैयार हो जाइए सुनहरे पल के साथ, जहां हर नगमा दिल को सुकून देता है और पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं।

याद कीजिए उन दिनों को। वाकई में वो दौर अलग था, वो गीत अलग थे और उन गीतों की बात ही कुछ और थी दोस्त। और रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में आज भी सजेगी यादों की महफिल, तो साथ बनाए रखे और बस हर एक गाने को आप दिल से महसूस कीजिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. बिल्कुल, इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय. आपको विश करना चाहेंगे टू हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम अहेड, लेकिन बस यूं ही साथ देते रहना ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल. फिर से लौट आएंगे एक और खूबसूरत से शो के साथ. तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

0: कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: हाय हाय,
1: एक बात बताऊं दोस्त?
2: बता बता, जल्दी बता।
1: एक बार वो मुझे मिलने आई।
2: अच्छा?
1: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
0: फिर क्या हुआ?
1: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: अरे भाई एक दिन उसका टेलीफोन आया। हाँ, कहने लगी हेलो
1: हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग।
1: हाँ
0: फिर क्या बोली? बोली मेरे घर में पार्टी है आओ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवा कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था, वो थी, मैं था।